आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: नई स्टाइल गया है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले समाचारों की और साथ ही कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 6 बजे मुख्य समाचारों के साथ प्रोग्राम सुप्रभात लेकर आपके साथ होंगी नूपुर। 7 बजे का समय मुख्य समाचारों के साथ नेहा आपके साथ रहेंगी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में। 8 बजे का समय रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का और प्रोग्राम लेकर आपके साथ होंगी नूपुर।

मुख्य समाचार लेकर 9 बजे आपके साथ रहेंगी नेहा बेनीवाल, प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने प्रोग्राम के साथ। 10 बजे अंग्रेजी में न्यूज हेडलाइंस के साथ और प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक में आपके साथ रहेंगी पूजा आनंद। 11 बजे का समय रहेगा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स का, निशा रहेंगी प्रोग्राम लेकर आपके।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। और खेलों में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये थे AIR FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। और आकाशवाणी रेनबो पर अब वक्त है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सत्य वचन का।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेस द लॉर्ड। दोस्तों, कई बार हम मनुष्य बहुत जल्दी ही निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं और नाना प्रकार के नकारात्मक विचारों की वजह से हमारे दिल में सब कुछ खत्म हो गया जैसी फीलिंग्स आने लगती है। लेकिन दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि ऐसे वक्त में तुम परेशान होने के बजाय एकांत में जाकर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से ये प्रार्थना मांगना कि हे प्रभु, मुझ पर तरस खा, अपनी करुणा मुझ पर दिखा, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में होने पाए। दोस्तों, जब ऐसी प्रार्थना हम करेंगे तो आप अपने जीवन में तुरंत एक परिवर्तन महसूस करेंगे और आपका मन और दिल दोनों शांति से भरने लगेंगे। आपको ऐसा फील होने लगेगा जैसे स्वयं प्रभु आपके पास हैं और वो आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी निराश मत हो, मैं

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ साथ चलता है, कठिन राहों पर हमारी मदद भी करता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारे परमेश्वर ने अपनी हथेली पर हमारा अक्ष बना रखा है ताकि हम सदा उसकी नजरों के सम्मुख रहें। वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमारी आंखों के आंसुओं को पोंछकर हमारे दिलों में खुशियां और आनंद भर देता है।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हम सब उस परमेश्वर की रचना है जिसने हम सबको अपनी समानता में अपने हाथों से रचा है, ताकि हम हरदम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करते रहें। जी हाँ, जब हम उसकी आराधना हर पल और हर परिस्थिति में करते हैं तो हमारा जीवन प्रफुल्लित रहता है और प्रभु की आत्मा हमें चिंता मुक्त रखती है। इसीलिए हमेशा उसकी आराधना करते रहें और उसका नाम जपते रहें।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ और साथ ही साथ शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम सुप्रभात की। और सुप्रभात आप सभी को इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किसी ने क्या खूब कहा है, लिखा गया है कि वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटना होना तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, लोगों से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। और आप अपने आप में इतने पर्याप्त हो कि आप अपने सभी घाव स्वयं भर सकते हैं, तो फिर फिक्र की क्या बात है। ये जीवन आनंद के लिए है, आनंदित होकर हम क्यों नहीं जीते, यही तो बड़ा सवाल है। सारी बातें सब कुछ जानते समझते हैं, लेकिन जीना खुश होकर मुस्कुराकर भूल जाते हैं। तो बिल्कुल मत भूलिए, हम आपको समय समय पर पल पल पर याद दिलाने आ जाते हैं कि ये जीवन बहुत सुंदर है। और इस सुंदर जीवन की और आज के दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जुड़ रही हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सुन रहे हैं सुप्रभात।
1: डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक डम डम डमक डुम डुम डुमक

और आनंद में रहना है तो चुनाव आपको करना है कि आपको कौन सा वाले व्यक्तित्व चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो हर परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं और दूसरे वो जो अपनी सोच से पूरी परिस्थिति को बदल देते हैं। तो फर्क सिर्फ सोच का है, दिमाग का है कि आप कितने स्ट्रांग हैं दिमाग से, है ना। कुछ लोग छोटी सी बात से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार हारने के बाद भी मुस्कुराते हुए सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? जवाब बहुत ही आसान है और आप भी जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो मैं बिल्कुल बता देती हूँ, आप वही सोच रहे हैं ना, क्योंकि

इसलिए ऐसा है कि शक्तिशाली लोग अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं, उनको जो है उनके विचार कंट्रोल नहीं करते। और यही तो सबसे बड़ी लड़ाई है कि मन हमें अपने काबू में करता है और हम मन को काबू में नहीं कर पाते। तो जो जानते हैं ना दिमाग पे कंट्रोल करना, वो जानते हैं कि कैसे दिमाग के साथ खेलना है। दिमाग एक खेल की तरह है और जैसे जैसे आप बॉल डालेंगे और कहाँ कहाँ क्या जाना है, तो यही आपको तय करना है कि कहाँ तक जानी है वो बॉल। या फिर हम इसको एक और तरीके से समझें कि एक गार्डन है या खेत है, एक खेत की तरह है दिमाग, और उसमें हम जो बोएंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम इस दिमाग में डर को बोएंगे तो चिंता ही होगी, और अगर आप उसमें साहस को बोएंगे कि साहस है आपने वही डाला है, तो फिर आत्मविश्वास पैदा होगा। तो इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या डोज अपने दिमाग को दे रहे हैं, ये आपको तय करना है। और यहाँ पर कौन सा गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ ये मैं तय कर चुकी हूँ, और बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सोचिए कि आप हर दिन हर पल अपने दिमाग को किस तरह की डोज दे रहे हैं।

अपनी पसंद का गाना सुनना इसमें भी आनंद है, तो आनंद ही आनंद है अगर आप थोड़ा सा बस ध्यान दें कि आप किन बातों को, किन चीज़ों को एंटरटेन कर रहे हैं, है ना? क्योंकि दिमाग की जो पावर है उसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर आप जीत जाएंगे, किसी और से नहीं बल्कि खुद से, खुद के विचारों से। तो प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, क्या समस्या हो जाती है? वो ये कि दिमाग हमेशा उसी चीज़ को मजबूत करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। तो अगर आप अपने आप को कहेंगे कि आप कमज़ोर हैं तो फिर आपका दिमाग उसी पर विश्वास करने लगता है। आप सोचेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आप करने से पहले ही हार मान देंगे, है ना? तो इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप हर मुश्किल में खुद से ये कहते हैं कि नहीं, मैं इससे बड़ा हूँ, इससे आगे मुझे निकलना है, तो वाकई धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। और जानते हैं ना, जितने भी महान योद्धा हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, सफल लोग, आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं कि एक चीज़ जो सब में थी, जो कॉमन है, वो ये कि बाहरी दुनिया पर जीत पाने से पहले हमें अपने मन पर जीत पाना जरूरी है। और क्यों जरूरी है, यही तो बात हम कर रहे हैं। और भी बातें करेंगे लेकिन आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के बाद मैं आपके साथ जुड़ूंगी इसी सफर में जिसका नाम है सुप्रभात, और मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात हर रोज।

जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ नुपुरकुल श्रेष्ठ। और सुबह उठकर भी अगर विचारों की जो लड़ाई है वो चल रही है तो थोड़ा सा शांत कीजिए, क्योंकि सफल लोग वही हो पाते हैं, वही लोग सफल हो पाते हैं और वही सफल कहलाते हैं जो अपने विचारों पर, जी हाँ, सोच समझ के अपने दिमाग में विचारों को आने देते हैं। तय करना है कि आप किस तरह के विचारों को अपने दिलो दिमाग में छाने देते हैं, ये सकारात्मक है और आपको आगे बहुत ही सही राह पर, सही दिशा में ले जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और आप भी जानते हैं, समझते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि जो भी महान योद्धा हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, सफल लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग को अनुशासन, एकांत, गहरी और सही सोच से ट्रेन किया, है ना। और अगर हम भी ये कर लें तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, आसान भी हो जाएगा। अब खुद को अनुशासन में लाना और ये सब अभ्यास करना, वो भी तो आपके लिए इतना टास्क बन जाता है, लेकिन शुरुआत की जा सकती है और ये शुरुआत कभी भी की जा सकती है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की। तो कोशिश आप भी कर सकते हैं और कोशिशें रंग लाती हैं, बिल्कुल। और ये रंग इतने सुंदर फिर लगते हैं ना, इन रंगों की जो खुशियां है ना, वो फिर आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती है, दिखती है। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त निकालें और जो भी सोचें अपने लिए बेहतर सोचें, अपने लिए सबसे अच्छा सोचें, है ना, ये ज़रूरी है, क्योंकि सोच ही हमारी ज़िंदगी बनाती है। और ये जितना भी कुछ चल रहा है ना, ये सब कुछ अंदर है, भीतरी है। बात करते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी सफर में जिसका नाम है सुप्रभात।

आकाशवाणी रेनबो के सफर में मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ और आप सुन रहे हैं सुप्रभात। और दिमाग ये जो है ना आपका बहुत चलता है ना, तो इसको सही जगह पर चलाइए और सही जगह पर लगाइए, ठीक है। दौड़ रहा है ना तो दौड़ने दीजिए, लेकिन सही दिशा में दौड़ने दीजिए। ऐसा कर लेंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। और ये जो सारी लड़ाई है ना, ये बाहर नहीं है, ये खुद से है, अंदर से है। तो इन जो अंदर चल रहा है उसको रोकना है, उस लड़ाई को रोकना है। और हर दिन कितनी आवाज़ें हैं जो आपके दिमाग को नियंत्रित करती हैं। मोबाइल स्क्रीन है, सोशल मीडिया है, लोगों की राय है, डर है, कंपैरिजन है, सफलता असफलता। लेकिन अगर आप सावधान रहें, क्लैरिटी है आपकी, जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो आप खुद को संभाल लेंगे। इन सब के बीच में आप अपनी असली सोच को नहीं खो देंगे, बल्कि भीड़ के शोर से आप अपनी अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनना सीख जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अनुशासन से, ध्यान से, वो जो उनके भीतर की आवाज़ है उसको सुनते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें जाना है, पहुंचना है। और यही लोग जो है ना इतिहास बदलते हैं, इतिहास बनाते हैं। तो आप अपने लिए कुछ बेहतर चुनाव करें, और कुछ ही क्यों, बस सबसे अच्छा सोचें, सबसे अच्छा करें और दिमाग को कंट्रोल करना सीखें, उसके मालिक बने, किसी और के मालिक ना बने, सिर्फ अपने दिमाग के मालिक बने। और फिर देखिए ये जो सफ़र है जिस पे हम और आप निकले हुए हैं, वो कितना सुहावना हो जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मज़ा केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, अगर सफ़र सुहावना होगा तो मंजिल तक पहुंचने का मज़ा बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा।

आकाशवाणी रेनबो का ये सफर बिल्कुल जारी है। सुप्रभात में बस इतना ही, लेकिन इस सफर में कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनेंगे बिल्कुल आपको बता देते हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और इसमें आपके साथ जुड़ेंगी नेहा बेनीवाल। उसके दूसरे सेगमेंट में एक बार फिर मैं आपसे जुड़ूंगी, आपसे होगी मुलाकात। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। उसके बाद समय रहेगा प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने का, इसमें भी आपके साथ होंगी नेहा बेनीवाल। वेस्टर्न मैचलेस म्यूजिक आर आप सुनेंगे पूजा आनंद के साथ 10:02 से लेकर 11 बजे तक। उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगी निशा तंवर, और उसके बाद एक बार फिर आपके साथ प्लेट कूल में होंगी पूजा आनंद, और मेरा वाला सॉन्ग आप सुनेंगे 1:02 से लेकर 2 बजे तक। निशा तंवर ही होंगी इस कार्यक्रम में भी आपके साथ, और उसके बाद आशियाना के सफर में आपके साथ जुड़ेंगे रंजन अरनेजा, और उसके बाद आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम। और आज का विषय रहेगा रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में स्लीप डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। अल्फा जैन में आपके साथ एक बार फिर शामिल होंगे रंजन अरनेजा। सिटी की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे निखिल वर्मा, और उसके बाद समय रहेगा प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स का, इसमें आपके साथ होंगी सुनीता शाहबादी, और लिपिका दास होंगी एक बार आपके साथ कार्यक्रम फ्राइडे फीस्टा में, और उसके बाद सुनीता शाहबादी ही आपके साथ रहेंगी म्यूजिक मस्ती में, और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:02 से लेकर 9 बजे तक। आपकी याद आती रही इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी रेखा चौधरी, और उसके बाद आप वेस्टर्न म्यूजिक का एक और कार्यक्रम सुनेंगे लिपिका दास के साथ ही, और फिर आप सुनेंगे रंगे महफिल रेखा चौधरी के साथ। तो ये कार्यक्रम की जो फेरिस्त थी वो बिल्कुल मैंने आपको बता दी है कि आज कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनेंगे। अभी बस इतना ही, मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी मिलते हैं।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का

उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां आधुनिक प्रगति सभ्यता से जुड़ी विरासत पर आधारित हो। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी दे दी है। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा में 8 क्षेत्रों के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। और अंत में खेलों में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो ये थे FM रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुबह के 7 बजते ही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर हम हाजिर हो जाते हैं दिल्ली एनसीआर की ताजा तरीन खबरों को लेकर, जहां बातचीत होती है कि भाई क्या खास और नया हो रहा है हमारे इस शहर में और हमारे आसपास, और साथ ही देश दुनिया का भी जायजा करते हैं क्या खबरें हैं, और बहुत कुछ खास होता है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के इस पहले घंटे में बिटवीन 7 to 8 AM एवरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान, मेरा नाम है नेहा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हो रहा है हमारे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। और जैसा कि नाम है कार्यक्रम का, वैसा ही काम यहां होता है। हम जानेंगे कि आज की तारीख यानी कि 7 अगस्त इतिहास के पन्नों में किस तरह से दर्ज है। इसके अलावा उन तमाम सभी लोगों को याद रखेंगे जिनकी आज जयंती है या बर्थडे है, साथ ही जो लोग आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे उन्हें भी याद करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज देश और दुनिया में कौन से खास दिवस मनाए जा रहे हैं उन पर भी रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे, ताकि आपकी जानकारी में कोई कमी ना रह जाए। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की खास खबरें आपके साथ साझा करेंगे, और इसके अलावा बहुत कुछ लाइंड अप है आज के शो में, एंड डेफिनेटली बहुत अमेजिंग म्यूजिक भी आपके लिए हमेशा हर घंटे हर कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं। तो चलिए भाई, देखिए शिव भक्ति में हम सभी लीन है, सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारा मन में विश्वास है प्रभु के प्रति, हमारा जो भाव है उसको साथ लेते हुए आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज में केदारनाथ के बहुत ही प्यारे से शिव भक्ति में लीन इस गाने के साथ। आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। गुड मॉर्निंग

ये गाना नहीं, मुझे तो एक भजन से कम नहीं लगता। जब भी ये गाना सुनती हूँ बहुत मन में विश्वास पैदा हो जाता है। भगवान शिव के प्रति जो हमारी आस्था है वो कई गुना बढ़ जाती है। और हम आकाशवाणी दिल्ली पर बातें करते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के पहले घंटे में कि जो आज तारीख है उसमें क्या खास हुआ था। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो भाई आज है 7 तारीख, अगस्त का महीना चल रहा है, वर्ष है 2026 और आज के दिन 1996 में एक बहुत ही कमाल की चीज हुई थी। अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 13,000 वर्ष पूर्व, जी हाँ 1996 में, जब 13,000 पहले की वर्ष पूर्व की बात हो रही है, पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरा था जिसके अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों के होने की संभावना का पता चला था। भाई पता है क्या होता है, जब भी कोई खगोलीय घटना होती है, जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की कोई बात करते हैं या एस्ट्रोनॉमी की कोई बात करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील होता है। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी टेरिटरी है जिसके बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा बढ़ती ही रहती है और बहुत मजेदार लगता है कभी भी आसमान की

और देखो तो बड़ा मैं असमंजस में पड़ जाती हूँ कि कैसे, ऑल्दो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और बहुत सी बातें हमें मालूम है, साइंटिफिकली बहुत सी चीज़ें प्रूवन है, लेकिन स्टिल मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि भाई कितनी ऐसी अजीब चीज़ें हैं ना जो अपने आप होती हैं, कैसे ये यूनिवर्स बन रहा है, किस तरीके से यहाँ क्या क्या हो रहा है, और हमारे अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में और कौन से जीव हैं, कितना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। तो ऐसी ही बातें देखिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। और इसके अलावा हम और भी बहुत सी बातें आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर करते हैं। हम देखिए अगस्त के महीने में हैं और ये महीना भारत के देश के लोगों के लिए बेहद बेहद खास होता है। और जब हम अपने देश को याद करते हैं, देश के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? हमारे देश की इतनी खास बातें हैं, ऐसी धरोहर हमारे देश के पास है जो मुझे नहीं लगता कि विश्व में कहीं और किसी देश के पास है। तो हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश की इस पवित्र भूमि में जन्मे हैं। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना हम सुनते हैं, देश की बात हो रही है तो देश के नाम, ये प्यारा सा गाना AR रहमान, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। और इस गाने के साथ एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारतीय हैं।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

श्रोताओं, आज है 7 अगस्त और आज के दिन हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। इसी ऐतिहासिक अवसर की स्मृति में भारत सरकार ने वर्ष 2015 से हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हथकरघा केवल वस्त्र बनाने की कला नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारे कुशल बुनकरों की मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हर हाथ से बुना हुआ वस्त्र अपने आप में परंपरा, कौशल और एक परिवार की आजीविका की कहानी लेकर आता है। तो आइए इस अवसर पर हम भी संकल्प लें कि जब भी अवसर मिलेगा हथकरघा उत्पादों को अपनाकर अपने बुनकरों का सम्मान करेंगे और वोकल फॉर लोकल की भावना को हम सशक्त बनाएंगे।

इट्स 7:24 बाय द रेनबो क्लॉक। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है नेहा। और आज ये जो तारीख है ये बहुत खास है, क्योंकि बहुत सी चीजें देश के साथ साथ विश्व भर में भी हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता होना आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी बात है। और मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष 1 तारीख से 7 अगस्त तक, यानी 1 और 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान की शुरुआत और जीवन के पहले 6 महीने तक केवल मां का दूध शिशु के संपूर्ण पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वस्थ विकास के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। ये बात मुझे लगता है कि हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं विश्व भर में जहां पर माताओं को स्तनपान का महत्व नहीं पता होता, शिशुओं के लिए वो कितना आवश्यक है। और सिर्फ शिशु के लिए नहीं, ये माँ के लिए भी उतना ही लाभकारी है। और हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्तनपान कितना आवश्यक है बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए, हमें इस अवसर पर माताओं को आवश्यक सहयोग और मान देने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि हर शिशु को जीवन की स्वस्थ और सुरक्षित शुरुआत मिल सके।

सुबह के 7:31 और लीजिए 12 सेकंड हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का फर्स्ट आवर। मेरे साथ मेरा नाम है नेहा और अब कुछ एड ब्रेक्स के बाद हम बातें करेंगे कि आज किन लोगों को हम याद कर रहे हैं जिनका बर्थडे है या बर्थ एनिवर्सरी है। तो

0: उन लोगों को याद करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात होगी, तो आप कहीं ना जाएं। और हाँ, आपका बर्थडे है तो मैं आपको भी विश करने के लिए जरूर आऊंगी, तो आप कहीं ना जाएं, सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली पर FM रेनबो चैनल।
1: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

इट्स 7:33 बाय द रेनबो क्लॉक और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरे साथ मेरा नाम है नेहा। साथियों, आज है 7 अगस्त और हम कुछ ऐसे महान हस्तियों को उनके जन्मदिन पर या जयंती पर याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और भारत देश का नाम हमेशा रोशन किया, और हमें भी उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। अलग अलग फिगर्स हैं जिनके बारे में आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आज हम याद कर रहे हैं प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को उनकी जयंती के मौके पर। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उनके प्रयासों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज आकाशवाणी की ओर से MS स्वामीनाथन को उनकी जयंती पर हम शत शत नमन करते हैं। साथियों, अब हम रुख करते हैं फिल्म जगत की ओर और आज हिंदी सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता कैस्टो मुखर्जी की भी जयंती है। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें हमने कैस्टो मुखर्जी को देखा और इतना मनोरंजन उन्होंने हमारा किया कि क्या बताएं। कुछ फिल्मों के नाम लेना चाहूंगी, जैसे कि पड़ोसन, चुपके चुपके, गोलमाल और खट्टा मीठा। इतनी प्यारी फिल्में हैं, उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग और सहज अभिनय से उन्होंने हमेशा दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाकर रखी। तो आज कैस्टो मुखर्जी को उनकी जयंती पर हम याद कर रहे हैं और साथ ही शत शत नमन कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उनके बारे में जिनका है आज हैप्पी बर्थडे। फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करूंगी। सुरेश वाडेकर जाने माने सिंगर हैं, बहुत बेहतरीन गीत उन्होंने गाए हैं एज अ प्लेबैक सिंगर इन बॉलीवुड और बहुत लंबे समय से गा रहे हैं। सुरेश वाडेकर जी का आज बर्थडे है और अपनी मधुर आवाज से उन्होंने इतने प्यारे प्यारे गीत गाए हैं, जैसे कि सीने में जलन और ए जिंदगी गले लगा ले, या फिर वो गाना याद कीजिए चांदनी फिल्म का, लगी आज सावन की वो झड़ी है। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे गाने हैं जो दिल को छू जाते हैं, और बहुत से गाने तो मैं समझती हूँ ऐसे हैं सुरेश वाडेकर जी ने जो गाए हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज सुरेश वाडेकर जी को उनके बर्थडे पर आकाशवाणी दिल्ली बहुत सारी शुभकामनाएं देता है और बहुत सारी शुभकामनाएं इस बात की भी देता है कि आप आगे भी बहुत बेहतरीन संगीत हम सभी के लिए लेकर आते रहें। माई डियर लिसनर्स, अगर आज आपका भी बर्थडे है तो आकाशवाणी की ओर से आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आइए अब सुरेश जी की आवाज में गाया हुआ आशा भोसले के साथ उनका एक बहुत प्यारा सा गाना है, बहुत ही मजेदार ये गाना, आइए एंजॉय करते हैं FM रेनबो दिल्ली।

साथियों, आज 7 अगस्त के दिन हम उस महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिनकी लेखनी ने भारत को दुनिया भर में नई पहचान दिलाई। महान कवि, साहित्यकार और चिंतक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज पुण्यतिथि है। आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। उनका जन्म 7 मई को 1861 में कोलकाता में हुआ और निधन आज ही के दिन 1941 में हुआ। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय बने और पहले एशियाई साहित्यकार बने। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना भी उन्होंने की और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि उन्होंने लौटा दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, उनकी रचनाएं और उनका शिक्षा दर्शन आज भी हमें संवेदनशील, रचनात्मक और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। उनकी पुण्यतिथि पर आइए उन्हें साथ मिलकर शत शत नमन करें।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर।

0: इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बिल्कुल सही बात है। आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं, मेरे साथ मेरा नाम है नेहा और प्रोग्राम तो आपको पता ही है ना, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का फर्स्ट आवर आप और हम साथ मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सी बातें हमने कार्यक्रम में की, उन लोगों को याद किया जिनकी आज बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है या फिर आज ही के दिन वो इस दुनिया को विदा कर गए थे, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हमने बातचीत की। और कितनी सारी बातें होती हैं जो हमें पता चलती हैं जब हम इस तरह के प्रोग्राम सुनते हैं, हमारी जानकारी में डेफिनेटली इजाफा होता है। और अब मुझे लगता है कि एक गाना वाना सुन लेना चाहिए, बढ़िया सा। वैसे तो सारे ही गाने बहुत बेहतरीन थे, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो हार्ट के बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं और उन्हें साथ गुनगुनाने में बहुत मजा आता है। तो ऐसा ही गाना बस मेरी प्लेलिस्ट से निकल चुका है, धीरे धीरे आपको भी इसकी आवाज आ जाएगी। लेकिन एक वादा कीजिए कि मेरी तरह आप भी इस गाने को जरा बिल्कुल ऐसे गाएंगे कि वाह, बस आप ही शाहरुख खान है और आप ही सोनू निगम है जिनकी आवाज में ये गाना है, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान लवर्स के लिए मेरी तरफ से ये गाना, ये दिल क्या बात है। लेट्स एंजॉय दिस वन टुगेदर ऑन द शो गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

मैंने इतनी जोर जोर से गाना भी गाया ना कि मेरा गला बैठ गया, मुझे जोर जोर से खांसी आने लगी, लेकिन बस गाना खत्म होते होते कैसे मैंने अपनी आवाज को भाई ठीक किया और सोचा कि आपसे तो बात करनी है, सोचा क्या मतलब करनी ही है, तो अपने आप को तो ठीक करना ही पड़ेगा। आवाज के माध्यम से हम और आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं। तो चलिए अब जब समय हो गया है सुबह के 7:54, तो आपको बता दें कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप फोन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रसारण होता है आकाशवाणी दिल्ली का, दोपहर 3 से 4 के बीच में रेडियो डॉक्टर का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे, जिसमें आज का विषय आप नोट कर लीजिए, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद आने में समस्या का जो सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में किस तरीके से आप अपना सोल्यूशन पा सकते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट्स रहेंगे डॉक्टर दीपक शर्मा और डॉक्टर नीरज गुप्ता, इनके साथ बातचीत होगी। निखिल वर्मा कार्यक्रम में रहेंगे, तो आप ये कार्यक्रम दोपहर 3 से 4 के बीच में जरूर सुनिएगा। और इसी तरीके से हर घंटे आकाशवाणी दिल्ली पर कार्यक्रमों का सिलसिला बिल्कुल चलता रहता है। अगले घंटे ठीक सुबह 8 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा घंटा। नुपुर कुलश्रेष्ठ इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी, और मैं नेहा 9 बजे आपसे मिलूंगी समाचारों और पुराने और नए जमाने के बहुत ही प्यारे प्यारे से गानों के साथ। तब तक आप कीजिएगा अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और हाँ इंतजार मेरा जरूर कीजिएगा। चलते चलते एक प्यारा सा गाना बिल्कुल मेरी प्लेलिस्ट से निकल चुका है, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, गोविंदा और करिश्मा कपूर स्क्रीन पर हैं, क्या नाचते हैं भाई साहब ये दोनों, क्या थिरकते हैं, मजा ही आ जाता है। मिलती हूँ आपसे 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार मेरी जान।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचार का। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां आधुनिक प्रगति सभ्यता से जुड़ी विरासत पर आधारित हो। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच

चार लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। भारत और सिंगापुर ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूपरेखा में 8 क्षेत्रों के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। और खेलों में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये थे AIR FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

में से किसी को भी नहीं है, बस अपने सफर पे यूं ही आनंद लेते हुए बढ़ते जाना है जैसे हम और आप बढ़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। तो कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट, और जरूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स और हमारी स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहें, बस यही दुआ रहती है। और इसी दुआ के साथ मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ स्वागत कर रही हूँ आप सभी का इसी सफर में जो है, जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो बहुत कुछ है खास इस सफर में आपके लिए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ।

बेसिकली योर्स आकाशवाणी रेनबो पर आपका स्वागत है और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत अगस्त महीने को एक बार फिर से चलिए हम सब मिलकर यादगार बनाते हैं, देश के हर कोने में हर घर में गर्व का झंडा लहराते हैं, हम सब मिलकर तिरंगे को हर दिल में बसाते हैं। स्वतंत्रता का ये अमृत पर्व है, इसको हम सब मिलकर मनाते हैं, देशभक्ति की भावना से हर घर को तिरंगे से सजाते हैं, हर घर तिरंगा लहराए, देशभक्ति का उत्सव मनाए। 1947 में मिली आजादी की लड़ाई और स्वतंत्रता संग्राम की महान गाथाओं को याद कर युवाओं में देशभक्ति की भावना एक बार फिर जागृत कर जाए। जी हाँ, हर घर तिरंगा ये अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत करने, राष्ट्रप्रेम का जज्बा बढ़ाने और हर नागरिक को अपने देश के प्रति गर्व महसूस कराने का एक प्रयास है। तो लक्ष्य यही है कि हर घर में तिरंगा पहुंचे, जिससे देश का हर नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ जाए और आप भी देश के प्रति अपनी ये जो भागीदारी है उसको जरूर निभाएं। गौरवशाली ये पर्व है और बिल्कुल इसमें आप भी अपना कुछ योगदान जरूर दे जाएं और देश के प्रति जो योगदान है वो दिया जा सकता है देश के प्रति वफादार रहकर, जो सही है उसके साथ रहकर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आप जुड़े रहिए बिल्कुल हमारे साथ, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

बिल्कुल, अपने आप को रंग दीजिए हर उस रंग में जिसमें आप रंगना चाहते हैं। ये खुशी के रंग, ये खुशियों के रंग बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और खुशियों का ये जो मौका है ना, जो भी मिले, अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान बन जाए या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात हो, और फिर क्यों ना एक शाम कुछ ऐसी बिताई जाए कि जो आपको पसंद है वो किया जाए, वो देखा जाए और निकला जाए इन शहरों की गलियों में और इनका आनंद लिया जाए। और आनंद बिल्कुल आप लेंगे और वो और भी अच्छा हो जाएगा जब पता होगा आपको कि कैसा रहेगा घर से बाहर निकल कर, ये जो मौसम का हाल है और उसके मुताबिक आप अपना पूरा जो प्लान है उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। तो बिल्कुल अधिकतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और बिल्कुल जो बारिश है वो होने की पूरी पूरी संभावना है, तो बादल छाए रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान जो है वो आप अपना ज़रूर ज़रूर रखिएगा, और थोड़ा ही क्यों, पूरा ध्यान रखिए। वायरल हो रखा है और बुखार है, सर्दी है, खांसी है, ज़ुकाम है, तो फिर ऐसे में अपना ध्यान तो पूरा रखना चाहिए, क्योंकि हाँ बारिश की जो चेतावनी भी है और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, तेज़ तूफान भी आ सकता है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बिल्कुल स्थिति बनी रहेगी। तो आप पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकलें और अपना पूरा ख्याल रखें, मास्क लगाइए, किसी भी तरह के वायरस से बचे रहिए, और ये जो काढ़ा है वो अपने हिसाब से लीजिए, डॉक्टर से बात करके लीजिए। ये नहीं कि कुछ भी किसी दोस्त ने ये किया तो मैं भी ये कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप अलग हैं, वो अलग है, तो अलग अलग जब होते हैं तो अलग अलग मेडिसिंस भी दी जाती हैं, है ना। उपचार भी वैसा ही होता है, इलाज भी वैसा ही होता है, हर किसी का इलाज एक जैसे नहीं होता है। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए और झमाझम बरसात के बीच में अम्ब्रेला लेना बिल्कुल भी मत ले जाइएगा, रेनकोट भी लेके जाइएगा। वो मुझे तो स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब रेनकोट पहन के ऐसे जाते थे और निकलते थे, और क्या मज़ा आता था वो झपाक करने में, है ना। वो सारा जो पानी है वो दोस्तों के ऊपर चला जाता था, और फिर उसके बाद जो होता था वो तो आपको भी पता है, बिल्कुल पता है ना। बस आप यूँ ही जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफ़र में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
5: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
4: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
5: हैं इतनी जल्दी?
4: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
7: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
8: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

ये दिल हिंदुस्तानी है और वाकई तभी तो आप कहीं भी जाएं, अपने गांव से दूर शहर में चले जाएं, लेकिन फिर भी गांव की याद आती है। कहीं और चले जाएं विदेश में तो देश याद आता है, देश की मिट्टी वो खुशबू याद आती है, परंपराएं याद आती हैं, सारे त्यौहार याद आते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा भारतीय ब्रांड्स की जो जड़ें हैं 1905 के आज ही के दिन से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, 7 अगस्त को भारत ने आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सामान के बजाय मेड इन इंडिया को चुनने का संकल्प लिया था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, भारतीय उद्योगों को मजबूत बनाना, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना। और आज भी हम इसका जो प्रभाव है उसको देख सकते हैं, इसके महत्व को हम समझ सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन का जो महत्व है, विशेषकर स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने और विदेशी वस्तुओं से दूरी बनाने के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और उस का जो महत्व है वो इस तरह से भी देख सकते हैं कि आज बार बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, और ये दिन देश के हथकरघा बुनकरों के काम का सम्मान करता है।

और इसी आंदोलन की याद में साल 2015 से हर साल 7 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है और यह 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में इसकी शुरुआत की गई थी और उद्देश्य बिल्कुल हम समझ गए हैं क्या है। तो क्यों ना आप भी स्वदेशी, जी हाँ, जो हमारे कारीगर हैं उनका सम्मान करें और आप भी वही चीज़ें, वस्तुएं खरीदें और उनको प्रोत्साहित करें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और ये एक अच्छी बात है। और अच्छी बात तो ये भी है कि सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो नए जो डिज़ाइंस हैं वो हर जगह पहुँच रहे हैं, विश्व में पहुँच रहे हैं, तो ये जो कला है इसको वैश्विक बाज़ार भी मिल रहा है। तो आप भी जुड़ें और अपने देश का नाम रोशन करें, हिस्सा बने इस हथकरघा दिवस का, चीज़ों को खरीदें, इन वस्तुओं को ज़रूर खरीदें। जुड़े रहें हमारे साथ इसी सफ़र में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ नुपुर। और साथ ही साथ वीकेंड है और आप किस तरह से अपनी शाम को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, या आपके सैटरडे संडे ऐसे कौन सी इवेंट्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं और कुछ नया आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आप लोक कथा से जुड़ना चाहते हैं, उस परंपरा को जीना चाहते हैं, उस कला को देखना चाहते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा मौका आपके पास है। जी हाँ, IHC लोक संगीत सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। ये 2 दिन का सम्मेलन है, तो जो पहले दिन है उस दिन तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इस दिन में जो उनकी शिष्या हैं, जी हाँ, इस अवसर पर स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन की शिष्या प्रभा यादव छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कथा गायन परंपरा पंडवानी की वेदमती शैली में अपनी प्रस्तुति देंगी। और महाभारत के का जो बहुत ही मार्मिक प्रसंग रहा है द्रौपदी चीरहरण, उसको सशक्त गायन, भावपूर्ण अभिनय और एकतारा की मधुर ध्वनि के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये जो सजीव प्रसारण होगा उसका आप बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपरा और पंडवानी की अद्भुत कला के आप साक्षी बन सकते हैं। तो ये कब होने वाला है आपको बिल्कुल बता दें कि ये 8 अगस्त को है और 7 बजे से इसकी शुरुआत की जाएगी शाम।

7 बजे से स्टाइन ऑडिटोरियम में आप पहुंच सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरे दिन भी इसका आयोजन किया जाएगा। जैसे कि कहा, ये 8 और 9 अगस्त को इसकी जो इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, इसको मनाया जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, 8 अगस्त यानी कि कल शनिवार है, और 9 अगस्त, तो कल जो भी मैंने आपको जानकारी दी, जो आप तेजन भाई जी पर आधारित जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका आयोजन कल किया जाएगा 8 अगस्त को। और 9 अगस्त के बारे में अगर हम बात करें, तो केरला से जुड़े जो रिचुअल्स हैं, पुलुवन पट्टू, उस पर आधारित आप सारा जो लोक संगीत है और जो कला है, उससे आप परिचित होंगे। तो बिल्कुल आनंद लीजिएगा 8 और 9 अगस्त। समय वही रहेगा, शाम 7 बजे।

और बिल्कुल यादगार रहने वाला है आपका ये जो 2 दिवस का सम्मेलन है। और जैसे कि कहा आपको, मैंने आपको बताया और ये जानकारी दी कि संगीत सम्मेलन, लोक संगीत सम्मेलन ISC के बारे में आपको बताया 2026, जो कि कल और संडे को मनाया जाएगा। और साथ ही साथ पहले दिन तो आप वाकई जो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कथा गायन परंपरा है उसका आनंद लेंगे, लेकिन दूसरे दिन मैं बिल्कुल आपको बताना चाहती हूँ कि केरल के प्राचीन अनुष्ठान पुलुवन पाटू को लेकर आप बिल्कुल जानकारी हासिल करेंगे और इसका नेतृत्व करेंगे सत्यनारायण पी। और पुलुवन वीणा, मिट्टी के घड़े और इला थलम, मंजीरा की थाप से संचालित, जो मंजीरा होता है उसकी थाप से संचालित ये प्रस्तुति आप तक पहुंचेगी, जो कि सांपों की पौराणिक कथा के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें कच्ची, लयबद्ध और बेहद गूंजती हुई जो धुनें हैं उनको बताया जाता है। तो बिल्कुल आप इसका हिस्सा बनिएगा, शामिल होइएगा। और बिल्कुल अब मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हुई इजाज़त, और इतनी सारी बातें कहने के लिए आपके पास होती हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, उसमें बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के सफ़र में, क्योंकि कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगी नेहा बेनीवाल और आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। उसके बाद समय होगा मैचलेस म्यूजिक आर का, इसमें आपके साथ जुड़ेंगी पूजा आनंद। और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स, बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे निशा धवर। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में बस इतना ही। मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।

नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। महाराष्ट्र सरकार ने दही हंडी उत्सव को देखते हुए लगभग 1,60,000 गोविंदाओं के लिए एक व्यापक बीमा योजना की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और अंत में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। तो ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: बिल्कुल सही बात, आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर शुरू हो चुका है दिल के तराने, गाने नए पुराने। सुबह के 9 बजते हैं, 9 से 10 के बीच में हर रोज आप ये कार्यक्रम सुनते हैं, जिसमें जैसा नाम वैसा काम, नए और पुराने जमाने के गानों का एक बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ सुनने को मिलता है। तो चलिए बिल्कुल समय जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं नए जमाने के कुछ गानों से, और बीच बीच में आपको मिलेंगे गोल्डन एरा के ऐसे प्यारे गाने जिन्हें हम कभी भी सुनना, ऐसा नहीं हो सकता कि ना सुनना चाहे। तो आइए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं इन बेहतरीन गीतों को, और अपना जो सफर है ऑफिस तक या फिर जहां भी जा रहे हैं उस सफर को और भी ज्यादा मजेदार बनाएं।

अब ये तो एक यूनिवर्सल सी प्रॉब्लम है कि मन क्या चाहे ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, आकाशवाणी दिल्ली की एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर। और अब वक्त हो गया है नए जमाने के गाने सुनने के बाद पुराने जमाने की गलियों में एक बार फिर से चले।

हम और सुने कि आज कौन सा प्यारा सा गाना हमारी प्लेलिस्ट में शामिल है। तो सत्ते पे सत्ता है फिल्म का नाम, आवाज है किशोर कुमार की, और ये प्यारा सा गाना, मस्ती भरा गाना सिर्फ आप सभी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हैं मेरे साथ FM रेनबो दिल्ली के साथ।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

सुबह के 9:30 आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा नाम चाहे किसी को याद रहे ना रहे, वो गुम हो सकता है, लेकिन जो आवाज़ें होती हैं वो हमेशा गूंजती रहती हैं, सदियों तक वो इस ब्रह्मांड में रहती हैं। अगला गाना लता मंगेशकर और भूपेंद्र की मधुर आवाज़ों में, नाम गुम जाएगा, फ्रॉम द फिल्म

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इन गानों की जो मिठास है, इन गानों की जो धुन है, वो तुम तक पहुंच जाए। कौन है आप? आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के बहुत प्यारे प्यारे श्रोता और मैं हूँ यहाँ पर आपके लिए दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर आई हूँ। और अब सुनते हैं पुराने ज़माने का एक ऐसा गाना जिसकी आवाज़ है सुरेश वाडकर ने इस गाने को सजाया है अपनी आवाज़ से, साथ हैं आशा भोसले। और आज सुरेश वाडकर जी का बर्थडे भी है, तो हमारी ओर से ये गाना हम उनको और उनके सभी लिसनर्स को डेडिकेट करते हैं। बहुत प्यारा गाना है, आइए साथ मिलकर सुने।

कुछ गाने ऐसे होते हैं जितनी बार सुने भाई कभी भी पुराने नहीं लगते। कहने को ये गाने पुराने जमाने के हैं, लेकिन ये जो गाना है परिंदा फिल्म का, ऐसा लगा तुमसे मिलके भाई, सच में बहुत अच्छा लगता है। और पूजा भी आ गई है स्टूडियो में, उन्हें भी ये गाना बेहद बेहद पसंद आया। तो चलिए अब वाइंड अप करें अपना शो, क्योंकि जाने का वक्त नजदीक आ गया है। शो का आखिरी गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, भूल भुलैया फिल्म से। ये गाना भाई क्या जुगलबंदी, इस गाने में हमें सुनने और देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को भी मिलती है। जब गाना देखते हैं तो पता चलता है क्या डांस यहां पर विद्या बालन और बाकी साथियों ने मिलकर किया है। तो आइए लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग, मेरे ढोलना। दिल के तराने, गाने नए पुराने का सफर यहीं संपन्न होता है। आप सभी जुड़े रहें आकाशवाणी दिल्ली के साथ। कुछ ही देर में होंगे समाचार और उसके बाद होगा जो भी कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं। हर कार्यक्रम बहुत खास होता है। और इसी के साथ नेहा को दे अनुमति, नमस्कार।

0: gorgeous track from the movie Prem Pujari.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े।

0: लिए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
0: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर अब मुख्य समाचार। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां आधुनिक प्रगति सभ्यता से जुड़ी विरासत पर आधारित हो। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि गुरुदेव ने अपने लेखन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना का संचार किया। दही हांडी उत्सव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1.60 लाख गोविंदाओं यानी उत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए एक व्यापक बीमा योजना की घोषणा की है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला मामलों की संख्या 4000 का आंकड़ा पार कर गई है। चीन में जातीय एकता कानून लागू किए जाने के विरोध में तिब्बती युवा कांग्रेस द्वारा धर्मशाला में शुरू की गई भूख हड़ताल आज 20वें दिन के प्रवेश कर गई है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आज प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। और बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चाहिला ने आज आसन में आयोजित कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल्स में प्रवेश किया। ये थी एफएम रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर ये वाणी है मेरी और मेरा नाम है निशा। लेकर आई हूँ आपके लिए बॉलीवुड ट्रेल्स, वही इंडस्ट्री जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा तैयार रहती है और हम कितनी आसानी से मतलब उनके फैन होने के नाते कह ले या फिर नॉर्मल व्यूअर होने के नाते भी बड़ी इजीली कमियां निकाल देते हैं।

ना, किसी के भी काम में, किसी की भी मेहनत में। एक पेंटर की कहानी आपने कभी सुनी है, जो डिस्प्ले में अपनी एक पेंटिंग को लगाता है एक रोड साइड पर, और सभी लोगों से कहता है कि अगर इसमें कोई कमी आपको लगे तो आप उस पर एक क्रॉस बना दें। और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि ऐसा एक भी क्रॉस उसको रिसीव नहीं होगा, लेकिन जब शाम को आता है तो देखता है कि पूरी पेंटिंग जो है वो क्रॉसेस से भरी होती है। बड़ा डिसअपॉइंट होता है, उसको लगता है कि शायद मैं अपने आप में ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं बहुत ही अच्छा पेंटर हूँ। लेकिन उसके एक फ्रेंड ने उसे एडवाइस की, ऐसा करो तुम इसी पेंटिंग को दोबारा से बनाओ और इस बार वील ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। तो फिर उसने वो पेंटिंग दोबारा बनाई, वहीं डिस्प्ले पर रखी गई, बस नीचे जो कैप्शन लिखी थी उसको चेंज कर दिया। उसमें लिखा कि कोई भी कमी अगर किसी को नजर आए तो आप साथ में रखे पेंट और ब्रश से उस कमी को ठीक कर दें। जब शाम को वो अपनी पेंटिंग को वापस देखने आते हैं तो पता है क्या रिजल्ट मिलता है? नॉट इवन अ सिंगल चेंज इन द पेंटिंग। कोई ब्रश स्ट्रोक नहीं, कोई पेंटिंग, कोई कलर, कोई कुछ नहीं होता है। वो पेंटिंग एज इट इज होती है। तो बस यही समझ आता है इससे कि हम लोग ना बड़ी आसानी से कहीं पर भी किसी भी जगह पर कमियाँ निकाल देते हैं, नो मैटर हम उस मामले के एक्सपर्ट हों भी या नहीं भी। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो कि एक्चुअल में उन्हें अपनी जो कमी निकाल रहे हैं उसे ठीक करना उन्हें आता है। तो अगर हम ठीक कर सकें तभी हम कमियां निकालें। इस स्टोरी से तो मैंने यही सीखा। तो बस लेट्स अप्रिशिएट आज हमारे हिंदी सिनेमा में कौन कौन सी नई चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, कितनी मेहनत के बाद आती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बने रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स में, मैं निशा हूँ आपके साथ।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम बॉलीवुड ट्रेल्स चल रहा है। मैं निशा हूँ आपके साथ में। और बॉक्स ऑफिस पर ऐसी ही एक तबाही मचा चुकी है फिल्म जिसका नाम मैं वापस आऊंगा। काफी लोगों ने पसंद किया, मतलब इट वाज अ सरप्राइज बॉक्स ऑफिस हिट। एक्चुअली इम्तियाज अली की रोमांटिक ड्रामा को लोगों ने सिनेमा स्क्रीन्स पर तो पसंद किया, लेकिन आज 7 अगस्त का दिन है, फ्राइडे मॉर्निंग है और ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी रिलीज होने वाली है आज के दिन से ही। तो अगर आप इस फिल्म को जो बंटवारे के बाद की कहानी कहता है और इट इज अ लव स्टोरी तो देखना चाहते हैं तो आज से देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक और फिल्म है जो OTT पर आज रिलीज हो रही है, दैट इज ऑपरेशन सफेद सागर द हाईएस्ट एयरफोर्स मिशन। ये फिल्म 1999 कारगिल वॉर ऑपरेशन जो सफेद सागर हुआ था उस पर बेस्ड है और उसी में हमारे सोल्जर्स किस तरह इस डेंजरस मिशन का हिस्सा बनते हैं और एक्सट्रीम कंडीशंस में दुश्मनों के खिलाफ फाइट करते हैं। ऐसी ही कहानी कहती है उनकी करेज और उनकी पर्सनल सैक्रिफाइस की कहानी ये फिल्म लेकर आती है जो आज OTT पर रिलीज होने वाली है।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

102.6 FM रेनबो बॉलीवुड ट्रेल्स है ये. आज 7 अगस्त का दिन है एंड द होल बॉलीवुड इज पेइंग ट्रिब्यूट टू द वेटरन एक्टर प्रदीप रावत. सब जानते हैं बहुत ही फेमस विलन के रूप में बॉलीवुड में इनकी एक पहचान थी और गजनी फिल्म का जो मेन विलन था उसको नहीं लोग भूल सकते हैं. 4 अगस्त के दिन इनका देहांत हुआ और अब लोग इन्हें याद कर रहे हैं. और गजनी फिल्म जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, पहले आर मुरुगदास की ये जो तमिल फिल्म थी तमिल में आई जिसमें जो मुख्य विलन थे वो भी इन्होंने ही इसका रोल निभाया था. और 2008 में जब इसका रीमेक हुआ हिंदी में तब भी गजनी में उसी खूंखार विलन की भूमिका को इन्होंने दोहराया था. तो ये फेमस खलनायक बेशक अलविदा कह गया हो इस दुनिया से, लेकिन इनके काम के माध्यम से हम इन्हें ज़रूर याद रखेंगे. और ऑल्सो ये आज का जो बॉलीवुड सरताज का सवाल होगा वो इन्हीं के करियर से पूछा जाएगा. तो बस आप थोड़ी सी जानकारी या थोड़े से अपनी पुरानी यादों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाइए. ये है बॉलीवुड ट्रेल्स. मैं निशा.

0: आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम बॉलीवुड ट्रेल्स में। अब अगर आप बॉलीवुड सरताज बनना चाहते हैं तो सवाल पूछ ही लेती हूँ। बहुत आसान सा सवाल है, प्रदीप रावत जी के बारे में बात की जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये जो फियरलेस डेडिकेटेड परफॉर्मर एक्टर था, ये अब इस दुनिया में बेशक नहीं रहा हो, तो इन्हीं को समर्पित है हमारा आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल। और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया, आमिर खान के साथ तो इन्होंने 3 फिल्मों में काम किया था, सलमान खान के भी बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। और एक इंटरव्यू में ही कल मैंने पढ़ा कि काफ़ी टाइम तक सलमान खान के साथ उनके घर पर रहे और एक बिल्कुल भाई की तरह दे स्टेट टुगेदर, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये उनके करियर पर असर डाल रहा था, क्योंकि जहां उन्हें स्ट्रगल करना चाहिए था वहां पर इतनी प्रिविलेज के साथ में, इतने प्यार के साथ में वो रह रहे थे किसी के घर में, इतने बड़े एक्टर के घर में, तब वहाँ से वो मूव ऑन कर गए आफ्टर सम टाइम। खैर, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज अब उनके देहांत के बाद जो है वो लगातार बाहर आ रही हैं। अब आपको उन्हीं से जुड़ी एक स्टोरी में से एक सवाल मैं लेकर आई हूँ। देखिए, इन्होंने बीआर चोपड़ा की जो मशहूर टीवी सीरियल था ना महाभारत, उसमें काम किया था और एक किरदार निभाया था। आपको मुझे उसी कैरेक्टर का नाम बताना है जो प्रदीप रावत जी ने भारत में प्ले किया था। वेरी इजी हाँ, 11:28 हो गए, और अगर आपको सवाल का जवाब देने में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो तब उसके बाद मैं आपको क्लू दूंगी, ठीक है? तो बने रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स में, टाइम फॉर द शॉर्ट ब्रेक।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता

11:37 बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप। बॉलीवुड सरताज का क्वेश्चन पूछ रहे, बहुत सारे जवाब मुझे लगातार आने लगे हैं। अब बस इन्हीं में से ही कंप्यूटर भाई साहब सिलेक्ट करेंगे किसी एक को जिसे हम कॉल मिलाएंगे। लेकिन अब आपको तो पता ही, आज फ्राइडे है और बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं फ्राइडे कौन सी मूवी रिलीजेज होंगी और हम जा पाएंगे अपना वीकेंड को एक अर्ली स्टार्ट दे पाएंगे, है ना। तो आज 7 अगस्त है और आज के दिन सिनेमाज में बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं। ओ माई डॉग, इस पर बहुत दिनों से नजर थी और ये फिल्म, पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में लीड रोल में है। फिल्म की कहानी बहुत अलग है, डॉग पर फोकस किया गया है फिल्म में और अमित राय ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। आज ये फिल्म जो है सिनेमाज में रिलीज हो रही है। ट्रेलर तो ऑलरेडी लोगों को काफी पसंद आ गया था और ऐसे ही एक और फिल्म जिसका ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा था, आर्यभट्ट का 0, ये फिल्म भी आज सिनेमाज में आ रही है। और हर एक इंसान की ज़िंदगी बिना एक वक्त ऐसा होता है जब लोग उससे पहले हार मान लेते हैं और फिर वो खुद भी अपने आप पर भरोसा खोने लगता है। आर्यभट्ट का 0 एक ऐसी आम लड़के की कहानी है जिसके मतलब दुनिया में बार बार नाकामी साबित होती रहती है उसकी, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। तो अगर कुछ इंस्पिरेशन का डोज लेना है तो आप पहुँच जाइए इन सिनेमाज। द ग्रेट पंजाब रॉबरी, ये फिल्म भी आज थिएटर में रिलीज हो रही है। शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस फिल्म में लीड रोल में है और पायल राजपूत फीमेल लीड है फिल्म में और सौरभ वर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और वही इस फिल्म के राइटर भी है। अच्छी फिल्म है, जोर शोर से इसका प्रमोशन काफी दिनों से चल रहा था, फाइनली इन सिनेमाज। और उसके अलावा आर माधवन पीछे नहीं है, इसकी भी काफी प्रमोशन देखी पिछले दिनों। GDN करके ये फिल्म जिसमें लीड रोल में आर माधवन है, ये रिलीज हो रही है। ये GD नायडू की भूमिका निभा रहे हैं, GD नायडू साहब जिन्हें भारत का एडिसन कहा जाता था। आज के दिन ये फिल्म सिनेमाज में आ रही है और देखते हैं कि इन फिल्मों को कितना प्यार मिलने वाला है आपके द्वारा। बने रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स में, 102.6 FM है ये और मैं निशा।

0: अरे अंजलि, अब क्या तुम मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आकाशवाणी रेनबो दिल्ली में हो रही तेज बारिश के बीच में इस तरह के गानों का कॉम्बिनेशन सुनने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है ना। एआर रहमान की आवाज में हाईवे फिल्म से गाना ओनली ऑन 102.6 एफएम रेनबो। मैं निशा हूं आपके साथ में और बॉलीवुड सरताज बनने के लिए सवाल आपसे पूछा था कि प्रदीप रावत जी ने महाभारत सीरियल में कौन सा कैरेक्टर प्ले किया था, और इसका सही जवाब देने के लिए आई होप कि सही जवाब देंगी बिल्कुल। और हमारे साथ है पूनम फोन लाइन पर। हेलो, हाय पूनम।
1: हेलो मैम।
0: नमस्ते जी। तो सबसे पहले तो आप हमारे प्रश्न का सही जवाब बताइए, क्या है, कौन सा कैरेक्टर प्ले किया था प्रदीप रावत जी ने?
1: मैम, महाभारत में प्रदीप जी ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जी का रोल प्ले किया।
0: अरे वाह, क्या बात है, मतलब डिटेल के साथ आए हो आप, बिल्कुल पूनम अच्छी नॉलेज है। प्रदीप रावत जी एज एन एक्टर पसंद थे आपको?
1: हाँ जी मैम।
0: और ऐसा कौन सा और इसके अलावा मेमोरेबल कैरेक्टर है जो आपको किसी और फिल्म में इनकी एक्टिंग पसंद आई हो?
1: मैम फिल्में तो इनकी कम देखी है, पर अश्वत्थामा जी का रोल बहुत अच्छा लगा था मैम।
0: हाँ, और थोड़ी देर पहले फोन पर आप मुझे कह रही थी आपने गजनी में भी इनकी एक्टिंग देखी है।
1: गजनी में तो सुपर रोल है।
0: हाँ, मतलब ऐसा कौन है जिसने गजनी में इनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट नहीं किया, वो सच में यार डरा दिया था इन्होंने, है ना।
1: सही मैम, अच्छे जो एक्टर होते हैं ना मैम, जो मतलब अच्छे वाले एक्टर होते हैं, वे तो रोल प्ले, अच्छे रोल प्ले करना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है ना मैम, उनको प्ले करना एक अचीवमेंट होती है।
0: सच में, सच पूनम। और इसीलिए पूरा बॉलीवुड जो है प्रदीप रावत जी को ट्रिब्यूट दे रहा है सोशल मीडिया पर। कर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जहां पर इनके परिवार जन जो भी हैं बहुत भावुक हो गए थे, बॉलीवुड के लोग बड़े बड़े जो वहां पर पहुंचे वो भी भावुक नजर आए। तो चलिए, एक बड़ा एक्टर नहीं रहा लेकिन उनके बारे में आज हमने बात की तो अच्छा लगा। थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की बॉलीवुड सरताज पूनम जी इस गाने के साथ में।

0: साइकिल।
1: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बातों के लिए तो इसी तरह हमारा भी देखो यहाँ पर आना जाना लगता ही रहता है, कभी गाने के पहले कभी गाने के बाद में हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और बॉलीवुड ट्रेल्स में ही बस इतना ही भाई आज के लिए, मेरा फिनिश होने वाला है कोटा पूरा। लेकिन हाँ, जाते जाते बता दूं, 1942 और लव स्टोरी, ये फिल्म को री रिलीज किया जा रहा है एक रेस्टोरेशन के बाद। इस फिल्म में कोशिश की गई है टू एनहांस द फिल्म विजुअल रिचनेस, और बट इसकी जो ओरिजिनैलिटी थी ना उसको संभाल के रखा गया है, डरिएगा नहीं। बस हाँ, ये जो साउंड वाउंड होता है ना उसका थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया गया है। 1994 में ओरिजिनली ये फिल्म रिलीज हुई थी, 1942 अ लव स्टोरी, हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड रोमांटिक ड्रामास में से एक है ये फिल्म, जिसे सिर्फ इसकी परफॉर्मेंसेस के लिए नहीं याद किया जाता है बल्कि वो प्यारा, वो एंड्योरिंग मेलोडीज कंपोज बाय आरडी बर्मन। आहा, जब भी ये धुन कानों में पड़ती है ना कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना, और दिल्ली के मौसम को पूरा सूट कर रहा है ये गाना और ये मेलेडी और हमारे प्यारे कुमार सानू की आवाज़। मैं मिलती हूँ आपको 1 बजे के बाद, बने रहिए FM Rainbow 102.6 पर।

0: tuned.
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
6: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
7: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: साथ 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: If you're enjoying the songs, loving the music, then do come back after this short break. You tuned in live to the Play It Cool show on Akashvani FM Rainbow. 102.6 Musically Yours. With me, Pooja Anand. At the moment, let's take that break we were talking about. Don't go anywhere, because this is a show which is all about your messaging. And do keep messaging us on our number 9868107070.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: Heart by heart, sometimes you just need someone to talk to you, to listen to you, to just be there. And that friend, well, if they meet up on a weekend, that's amazing. It's raining outside, it's pouring, you have your drinks in hand and you're sitting and chit-chatting heart to heart. What else do you need to make that your perfect weekend? That's exactly what I plan to do. Don't know about you, tell us more. 9868107070 is our WhatsApp number. Pick up that phone and tell us all about it on our WhatsApp and we'll play the number you want your request for. Right now, let's take that short break. Stay close, stay tuned.
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं? इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
8: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
7: अल्फा जेन,
8: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार।

0: और FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम और अब मुख्य समाचार। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा

हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। देशवासियों से हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले एक प्रमुख संगठन ने पाकिस्तान से विदेशी मीडिया सुविधा दिशा निर्देश 2026 वापस लेने की मांग की है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की और इस पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा को देखते हुए 4 अतिरिक्त डॉपलर मौसम रडार DWR स्थापित करके मौसम चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है और अमेरिका के यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में आज भारत के मोहम्मद अशफाक ने अंडर 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये थी FM रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही? रोज तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
1: नमस्कार, ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं हूं नीति कानूनगो, एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर और इंडियन कैंसर सोसाइटी यानी कि ICS की एक वॉलंटियर।

आईसीएस पिछले 7 दशकों से कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने, समय पर जांच को बढ़ावा देने, कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को भावनात्मक सहयोग देने तथा पुनर्वास जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मुझे भी आईसीएस के साथ एक वॉलंटियर के रूप में जुड़ने का सौभाग्य मिला है। आज की सच्चाई यही है कि कैंसर लगभग हर परिवार को छू रहा है। ये केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जिसे कैंसर हुआ है, पूरा परिवार इस सफर का हिस्सा बन जाता है। इलाज लंबा है, मुश्किल है और बहुत महंगा है, और केवल मेडिकल ट्रीटमेंट ही पर्याप्त नहीं, उतनी ही जरूरत होती है मानसिक शक्ति, विश्वास और उम्मीद की। इसलिए आज मैं आपसे अपनी कैंसर यात्रा साझा करने आई हूँ, जिसने मुझे कुछ जरूरी सबक सिखाए और हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ जीना सिखाया। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमारी पूरी लाइफ बदल देता है। मेरी जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आया अगस्त 2022 की एक रात। मैंने अपने लेफ्ट ब्रेस्ट यानी कि 22 स्तन में एक छोटी सी गांठ महसूस की, बिल्कुल जैसे एक मटर का दाना। टीवी पर, इश्तहारों में, ऑफिस में मैंने देखा और सुना था कि ऐसी गांठ को डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मैंने इस गांठ को नजरअंदाज नहीं किया, अपने पति से बात की। वो उस समय आर्मी में एक ऑफिसर थे और उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। मैंने समय ना गवाते हुए अकेले ही हॉस्पिटल जाने का निश्चय लिया और एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गई। डॉक्टर ने शारीरिक जांच की। वो हैरान थे कि मैंने कुछ ही घंटों में इस गांठ को रिपोर्ट किया। उन्होंने मुझसे कहा, ज्यादातर महिलाएं इन बातों को छुपाती हैं और बहुत देर से डॉक्टर के पास जाती हैं, तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है और इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर ने मेरे कई टेस्ट करवाए, जैसे कि मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी। 4-5 दिन बाद रिपोर्ट आई। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे अचानक जिंदगी रुक सी गई है। कैंसर सिर्फ शब्द ही सुनते ही अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, और मरीज का सोचिए क्या हाल होता होगा। मेरे मन में भी सैकड़ों सवाल उठे। अब क्या होगा, इलाज कैसे होगा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी। बहुत तरह की भावनाएं, डर और गुस्सा, सब तरह की भावनाएं मन में उठती थी। क्या ट्रीटमेंट पेनफुल होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या कीमोथेरेपी के बाद मेरे बाल झड़ जाएंगे, क्या मैं पहले जैसे दिखूंगी, क्या लोग मुझे घूर घूर कर देखेंगे, क्या वो मुझे देखकर हंसेंगे। घबराहट होती थी कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा, घर कैसे चलेगा, इलाज में कितना खर्चा होगा, बस मेरी लाइफ में क्या कुछ बदल जाएगा, मेरा जॉब क्या मेरे साथ रहेगा, पहले जैसे जिंदगी हो पाएगी। सच में कैंसर केवल शरीर की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि मन को भी झंझोड़ देता है। इसके बाद शुरू हुआ लगभग 8 महीने का लंबा इलाज, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। हर दिन एक नया चैलेंज सामने आता था, हजारों टेस्ट और हॉस्पिटल के चक्कर। डॉक्टरों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपको कुछ बैठकर लंबे समय तक समझाएं। ऊपर से कुछ रिश्तेदारों ने ताने कसे, कुछ दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। बहुत दुख होता था, मैं हताश हो जाती थी और गुस्सा भी आता था। इसी दौर में मुझे एक बड़ी सीख मिली। हॉस्पिटल की काउंसलर ने मुझसे कहा, देखो इलाज तो डॉक्टर करेंगे, लेकिन इलाज में आपका मन भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाता है। पहले तो मुझे ये बात अजीब लगी। मैं सोच रही थी कि बीमारी तो शरीर को हुई है, फिर इससे मन का क्या संबंध। लेकिन धीरे धीरे मैं इस बात की गहराई को समझने लगी। जैसा मन के

0: भाव, वैसे ही विचार और वैसा ही शरीर में इलाज का असर। इस बात को समझकर मैंने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स को मैं रोकने लगी। मैं अपने आप को कहती थी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा डॉक्टर अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है, मुझे सही इलाज मिल रहा है, मुझे अपने शरीर पर, अपने डॉक्टर पर और ईश्वर की योजना पर विश्वास है। मेरे पति और बेटे ने भी बहुत साथ दिया। वो कहते थे, हम अच्छी बातें करेंगे, पुरानी अच्छी बातें यादें ताज़ा करेंगे, भविष्य की योजना बनाएंगे, कभी किसी मज़ेदार घटना की बात करके हंसेंगे और कभी किसी नई जगह घूमने का प्लान बनाएंगे। जब मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई तो बहुत डर लगा। इतनी स्ट्रांग मेडिसिन से पूरी बॉडी जैसे हिल जाती है, वॉमिटिंग होना, वजन घटना, कमजोरी और मुंह का स्वाद तो पूरी तरह खराब हो जाता है। ये सब साइड इफेक्ट्स थे। बाहर का खाना बिल्कुल छूना भी मना था, तो मैंने पौष्टिक आहार पर जोर दिया, जैसा कि डाइटिशियन ने बताया, अनार, पालक, गाजर, रागी की रोटी और प्रोटीन के लिए दही, पनीर और अंडा। जब बाल झड़े तो मैंने रोना धोना नहीं किया, बस सर पे एक कैप पहनी और अपने काम में लगी रही। लोगों के घूरने से अपने आप को कोई असर नहीं होने देती थी, बस कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाती और कोई घूरता तो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देती। कीमोथेरेपी वार्ड में कई लोगों के चेहरे पे डर दिखता था। छोटे छोटे बच्चों को कीमोथेरेपी लेते देखकर आंखें भर आती थी। उस समय मन में बस एक ही प्रार्थना निकलती थी, हे भगवान, सबको स्वस्थ कर दीजिए, किसी को भी इतना दर्द, इतना कष्ट और कठिन परीक्षा मत दीजिए। शायद वही पल थे जब मैंने अपना डर धीरे धीरे हिम्मत में बदलना शुरू कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, इस लड़ाई में लाखों लोग मेरे साथ चल रहे हैं। आज सोचती हूँ, शायद वही छोटी छोटी बातें मेरे मन को संभाल कर रखती थी और मैं अपनी इस सकारात्मक सोच से मुस्कुरा सकती हूँ। मैं सच में भाग्यशाली हूँ कि मेरे पति, मेरे बेटे ने हर मुश्किल की घड़ी में चट्टान की तरह साथ खड़े रहकर मेरा साथ दिया। मेरे कुछ सच्चे दोस्तों का प्यार और परिवार का विश्वास, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि कैंसर ने मुझसे बेशक बहुत कुछ लिया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे सिखाया। तो आज ऐसे ही जीवन के दो पाठ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला पाठ, लिसन टू योर इनर वॉइस, यानी कि अपनी अंतर आत्मा की बात सुने। हमारा शरीर हमसे लगातार बात करता है, वह छोटी छोटी सिग्नल्स देता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम अपनी बिजी लाइफ में उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। सोचिए, अगर उस रात मैंने उस छोटी सी गांठ को नज़रअंदाज किया होता तो आज मेरी कहानी कुछ और होती। मेरे लिए हमारी इनर वॉइस, अंतरात्मा, एक जीपीएस की तरह है, गूगल मैप की तरह। वह हमें सही दिशा दिखाती है, बस ज़रूरत इतनी है कि हम उसकी बात सुने और उसको फॉलो करने की हिम्मत रखें। दूसरा पार्ट जो मैंने सीखा वो है कि आवर डिसीजंस शेप आवर लाइफ, यानी कि जिंदगी के हालात नहीं बल्कि हमारे निर्णय हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। स्टीवन कोफी कहते हैं कि हमारे हालात हमारी डिसीजन की तरह पावरफुल नहीं होते। हम किस स्थिति में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उस बात का कैसे सामना करते हैं, उससे हमारी जिंदगी सामने एक नई दिशा लेती है। हर दिन हर पल हम छोटे छोटे चॉइसेस लेते हैं, डर चुनना है कि हो, हार माननी है कि हिम्मत दिखानी है, शिकायत करनी है या शुक्राना। बस यही चीजें हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं, ना कि हालात। अंत में मैं अपने सभी श्रोताओं से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश बांटना चाहती हूँ। कैंसर से डरिए मत, उसे समय रहते पहचानिए। याद रखिए, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स, यानी कि जल्द ही कैंसर का पकड़ा जाना आपकी जिंदगी बचा सकता है। अगर आपको अपने शरीर में कोई भी असामान्य बदलाव महसूस हो, कोई गांठ, कोई लगातार रहने वाली तकलीफ या कोई ऐसा सिम्टम जो सामान्य ना लगे, तो कृपया संकोच मत करिए, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलिए। यदि आपको किसी भी तरह का संदेह हो या स्क्रीनिंग करवानी हो, तो दिल्ली में इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक सेंटर उपलब्ध है। यह केंद्र बंगाली मार्केट के पास 42 लोधी इस्टेट रोड पर स्थित है। यहाँ सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जांच की सुविधा उपलब्ध है। जांच के लिए पहले फोन करें और अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है। संपर्क नंबर है 011-237-16941। यदि आपको कैंसर से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी, मार्गदर्शन या भावनात्मक सहयोग चाहिए, तो आप इंडियन कैंसर सोसाइटी की हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर है 99-105-16562। याद रखिए, सही समय पर की गई जांच जीवन बचा सकती है। संकोच ना करें, जानकारी लें और जरूरत पड़ने पर समय पर कदम उठाएं। अगर मेरी कहानी आज किसी एक भी श्रोता को समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित कर दे, अगर कोई भी परिवार डर की जगह उम्मीद चुने, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी इस यात्रा का और इस रेडियो टॉक का उद्देश्य पूरा हुआ। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो है ये सभी का स्वागत करती हूँ मैं। मेरा वाला सॉन्ग लेकर पहुंच गई हूँ जी और आप भी आ गए हैं ना। पता है ना आपको क्या करना है, अपना फेवरेट सॉन्ग रिक्वेस्ट करना है। यस दिस इज योर फेवरेट सॉन्ग रिक्वेस्ट शो। मेरा वाला सॉन्ग मैं निशा हूँ आज आपके साथ में। तो जो भी गाना आज आप सुनना चाहते हैं वो आप बस मुझे मैसेज कर दीजिए 9868107070 इज द नंबर, अपने नाम के साथ में और अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए बस एक मैसेज मैं वेट कर रही हूँ आपका। ठीक है, तो ये है आपका अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट शो मेरे वाला सॉन्ग।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं, ये है मेरा वाला सॉन्ग और आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट्स लगातार मुझे मिल रही हैं। अभी ये गाना इज रिक्वेस्टेड बाय अनुराधा शर्मा फ्रॉम धर्मशाला और लग रहा है कि भारतवर्ष के पूरे सभी इलाकों में बहुत बारिश हो रही है। सावन का महीना तो चल ही रहा है और हर एक रिक्वेस्ट में मुझे एक ना एक सावन का गीत ज़रूर नज़र आ रहा है। तो फिलहाल जो गाना मैं लेकर आई हूँ, बरसों रे उत्तम नगर से हमारे एक खास लिसनर ने ये गाना रिक्वेस्ट किया है और इंजॉय कीजिए इस गाने को। और ज़रूरी नहीं है कि आप सावन के ही गीत मुझे भेजें, जो भी गाना आप सुनना चाहते हैं यू कैन टेक्स्ट मी द नेम ऑफ द सॉन्ग, उसकी फिल्म का नाम अपने नाम के साथ अपनी जगह के नाम के साथ भेज दीजिए 9868107070 पर।

आकाशवाणी रेनबो के इन खूबसूरत गानों के साथ में इसी तरह आप पूरे भारतवर्ष में बारिश का मौसम जहां कर भी लोग इंजॉय कर रहे हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। और हमें सौरभ अनेजा लिख रहे हैं कि मेरी कोई चॉइस नहीं है लेकिन हर एक गाने को मैं इंजॉय कर रहा हूँ, शो को इंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सौरभ। और उसके साथ ही हितेंद्र दास की चॉइस फिलहाल प्ले होने जा रही है, मिट्टी फ्रॉम द फाइटर। कीप राइटिंग अस, जो भी गाना आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का मैसेज कीजिए 9868107 पर।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM प्रोग्राम चल रहा है मेरे वाला सॉन्ग. लगातार आपकी रिक्वेस्ट्स मुझे मिल रही हैं. कीप सेंडिंग इन मैसेजेस. 9868107070 इज द नंबर. ये गाना रिक्वेस्ट किया है अनूप साहू ने उत्तर प्रदेश से.

वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर. अब मैं बताई देती हूँ, सुनीधि चौहान की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गाना प्ले करने वाली हूँ एंड दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय विकास पाठक जी.

बाहर लगातार बारिश होने की वजह से जब ट्रैफिक मिलता है, पानी भर जाता है, तब ऐसे ही लगता है कि कहाँ जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, कोई ही तो रास्ता मिले जहाँ से हम अपनी गाड़ी आगे निकाल पाएं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गानों की गाड़ी तो लगातार आगे चल रही है। थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमें मैसेज कर रहे हैं और सॉन्ग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल ये गाना इज़ रिक्वेस्टेड बाय पुनीत फ्रॉम ऋषिकेश।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम पर प्रोग्राम चल रहा है मेरे वाला सॉन्ग। बहुत सारे लोग सावन के महीने में सावन के गीतों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए वंस अगेन दीपा फ्रॉम बिजनौर, महेंद्र प्रताप सिंह औरंगाबाद बिहार से और पंकज अमरावती से इस गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM है ये। सावन की झड़ी तो आज बाहर लगी ही रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे हफ्ते दिल्ली में कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश आती रहेगी। आप फिलहाल दिल्ली के वेदर के साथ साथ FM रेनबो इंडिया एंजॉय करते रहिए। आप जल्दी सुनेंगे आशियाना प्रोग्राम रंजन के साथ। आई एम निशा साइनिंग ऑफ।

दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए पेश है आकाशवाणी पर FM रेनबो मुख्य समाचार। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। देशवासियों से हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से

मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि गंभीर रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 में 135 से घटकर 2026-27 में केवल 2 रह गई है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री यान बैंक योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले एक प्रमुख संगठन ने पाकिस्तान से विदेशी मीडिया सुविधा दिशा निर्देश 2026 वापस लेने की मांग की है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की और इस पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा को देखते हुए 4 अतिरिक्त डॉपलर मौसम रडार DWR स्थापित करके मौसम चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिस का खिताब जीत लिया है और अमेरिका के यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में आज भारत के मोहम्मद अशफाक ने अंडर 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये थे आकाशवाणी FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। दोपहर के 2 बज चुके हैं और आज है फ्राइडे और आज के दिन हम आपको कहीं देश भर में किसी अच्छी जगह का दर्शन कराते हैं, घुमाने ले जाते हैं, सैर सपाटा कराते हैं, कोई ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहां पर अगर आप पहले नहीं गए हैं तो हमारे कहने से हो सकता है आपका मन लग जाए, आपका दिल कराए। और आज भी हम आपको खास ऐसी ही जगह पर लेके जाएंगे और बस थोड़ी ही देर में बताएंगे कहां लेके जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रेनबो, मैं हूं आपके साथ रंजन।

जी हाँ, ये इतना प्यारा गीत आप सुन रहे हैं केदारनाथ मूवी से। तो कुछ कुछ आपको अंदाज हो गया होगा। हम आपको ले चल रहे हैं गंगा के करीब, दिल्ली से लगभग 220 से 240 किलोमीटर दूर गंगा मैया की आंचल में हरिद्वार, धार्मिक नगरी हरिद्वार में। और अभी की जो समय चल रहा है ये मानसून है, साथ साथ सावन में हम जैसे कहते हैं कांवड़ यात्रा भी हो रही है, तो दिल्ली के बहुत करीब है। इस जगह का बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। 4 से 6 घंटे में आप चाहें तो कश्मीरी गेट ISBT से बस लेके पहुंच सकते हैं, या फिर ट्रेन से भी आप पहुंच सकते हैं हरिद्वार। उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता, अमूमन इतना ही समय लगता है। और अगर आप एरोप्लेन से जाना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जो देहरादून आपको उतारेगा, और उसके बाद वहां से टैक्सी या बस की सुविधा से आप हरिद्वार पहुँच सकते हैं। और भारत में तो सभी लोग मानते हैं गंगा के, जिसको कि अगर साइंस की नज़र से भी देखा जाए तो जो गंगा का जल है वो बहुत पवित्र है, और इसके ऊपर स्टडीज़ भी हुई हैं जहाँ ये पता चलता है कि ये बाकी नदियों से अलग है। लेकिन हमारी जो मान्यता कहती है, हमारी जो कल्चर कहता है, वो उससे बहुत अलग है। यानी कहने को तो एक बड़ा प्यारा इस पे भजन है जो कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। खैर, और ढेर सारी आपसे बातें करनी है आज। आपको हरिद्वार में कौन सी प्यारी जगह है जहाँ आप जाके खुद को पा सकते हैं। कई दफ़ा भीड़ में अकेले अगर आप बैठें गंगा किनारे या हर की पौड़ी पे, तो उस भीड़ में अगर खुद को पाना है तो क्या तरीका हो सकता है। ये सारी बातें होंगी, ढेर सारी बातें होंगी। आज ये कार्यक्रम 2:30 बजे तक है, तो जितना हम चाहें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्क्वीज़ इन करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आज है 7 अगस्त और थोड़े दिन बाद हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त। और ये पूरा मंथ रहता है, जब हमारा जोश खरोश और बढ़ जाता है, वैसे तो साल भर ही रहता है, तो हमारे देश के सैनिकों के लिए, हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, नौसेना है, सभी को सलाम करते हुए ये गाना आपके लिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, मैं हूं आपके साथ रंजन। और आज हम आपको ले चल रहे हैं सैर सपाटे पे, जो हम हमेशा शुक्रवार के दिन आपको लेके जाते हैं आशियाना प्रोग्राम के माध्यम से। बहुत से लोग हैं जो हरिद्वार कभी नहीं गए, तो हो सकता है आज उनका भी मन कर जाए हमारी बातें सुन के। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं हर की पौड़ी पर, जो बहुत रिलीजियस है, बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर ना सिर्फ इंसान अपने मन को शांति के लिए जा सकता है, लेकिन शाम की दिव्य आरती के जो दृश्य है वो आपको एकदम से मंत्रमुग्ध कर देगा। घंटियों की मधुर ध्वनि, दीपों से जगमगाती माँ गंगा, ऐसा अनुभव जो अगर एक बार आपने किया तो आप जीवन भर याद रखेंगे। और अगर आप पहुंचते हैं, देखिए आजकल क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है और कुछ रूट डाइवर्जन हैं, तो बस एक बार ये ख़त्म हो जाए फिर जाइएगा, फिर मुझे मत कहिएगा कि आपने। और अगर ऐसे आपको भीड़ भाड़ में बहुत अच्छा लगता है, या आप खुद कांवड़ लेके जा रहे हैं, या फिर आप कभी गए हैं, तो इट्स दिस यू मोस्ट वेलकम, आप इस समय भी वहाँ जाइए। और सावन का महीना है, और क्या आज मैं जब स्टूडियो में इस समय आपसे बात कर रहा हूँ तो पीछे मुड़ के खिड़की से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दोपहर में आया था, लेकिन यहाँ तो शाम का आलम है। इतने घने बादल हैं, खूब बारिश हो रही है दिल्ली में, और ऐसा ही हम समझते हैं दिल्ली आसपास या हरिद्वार तक भी होगी। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं, आपका ही मजा आएगा। यूं ही सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो दिल्ली।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
4: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
3: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026

0: 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: मंगल भवन मंगलहारी
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, कार्यक्रम है आशियाना और आज हम आपको सैर करा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं रादर आउट से हरिद्वार के, हमारी पावन नगरी हरिद्वार। और बहुत से लोगों ने गेस किया, एक मैसेज देखे मैंने, ऑनलाइन तो नहीं खोली फिर भी एक आध नज़र में आ रहे हैं मैसेज। तो नरेंद्र सोनी लिख रहे हैं कि आपने 2 लाइन छेड़ी तो ये आप गाना सुनवा ही दीजिए। गीत मुझे मिला नहीं, मैं सीरियसली मैं ढूंढ रहा था, बट क्या करूं, आपकी चॉइस भी मेरी जैसी अच्छी है। खैर, तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए कांवड़ का समय है, इस समय भोले जा रहे हैं, पूरे रूट्स डाइवर्ट हैं, जहां बम बम भोले के नाद के साथ, उस नारे के साथ, उस आवाज़ के साथ अपने शरीर के दर्द को, जख्मों को भूलते हुए नंगे पैर दौड़े जा रहे हैं और गंगा माँ के आंचल में जाके वहां से बस एक एक लोटा, एक बॉटल में एक गड़वी जिसे कहते हैं, इफ आई एम सेइंग इट राइट, वो वहां से पावन जल लेके वापस अपने अपने स्थान पे जाते हैं और मंदिर में उसको चढ़ाते हैं। तो ये बड़ा मान्यता, और पिछले 20 से 25 सालों से लगातार ये त्यौहार जो है इसे, इसमें काफ़ी बढ़ावा मिला है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है, लोग बहुत संख्या में इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर साल कांवड़ में शामिल होते हैं, जाते हैं और कांवड़ लेके आते हैं। इसमें एक दिलचस्प चीज है जो मुझे भी बाद में पता चली, वो सब बताऊंगा, और बताऊंगा एक कांवड़ होती है और एक डाक कांवड़ होती है, क्या है ये। दिस एंड लॉट्स मोर, सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

0: जी हाँ, बगड़ बम बम लहरी के नाद के साथ पूरी जन समूह इस समय सड़कों पे है। एक मेला सा लगा है, उनके लिए खास प्रबंध किए हैं और जितने भी भोले इसके अंदर, इनफैक्ट अब लड़कियां भी जाती हैं तो उन्हें प्यार से श्रद्धा पूर्वक भोली कहा जाता है। और इस तरह से लोग, लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, जितने भी हमारे समाज के हर उम्र के लोग कांवड़ लेने जाते हैं और लेके जाते हैं और गंगा जल लेके वापस आते हैं। तो इसमें एक डाक कांवड़ है, उसे आप एक तरह से रिले रेस समझ लीजिए जो नॉन स्टॉप लेके आया जाता है। इसमें बहुत से युवा मिल के चलते हैं, उनके पास बाकायदा मोटरसाइकिलें होती हैं और जिसमें जो थक जाता है जैसे कुछ मीटर 100-200 मीटर दौड़ के, और ये दौड़ के लाना होता है जल्दी से जल्दी, एक तरह से कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश में इतनी ऊर्जा है और यही ऊर्जा हम इस तरह के धार्मिक कार्यों में तो इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना स्पोर्ट्स में भी इसी के साथ, इसी दमखम के साथ अगर ये युवा पार्टिसिपेट करें तो हमारे मेडल टैली और भी बढ़ सकती है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं, क्योंकि मैंने कहा कमी आज है, कमी तो सिर्फ थोड़ी समय की है, लेकिन और भी बहुत सारी बातें आपके साथ।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

जी आप सुन रहे हैं आशियाना। आज हम आपको लेके चल रहे हैं, आपको दर्शन कराने ले जा रहे हैं हरिद्वार नगरी की, जो धार्मिक नगरी है। और आजकल तो बहुत जनसमूह उस तरफ दौड़ा जा रहा है क्योंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है। और हरिद्वार की अपनी मान्यता है, यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, जब आप कभी वहाँ जाएँ तो उनके वहाँ रह सकते हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। मैंने पहले बताया हर की पौड़ी बहुत मान्यता है इसकी, वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा। मनसा देवी का मंदिर है, वहाँ जा सकते हैं। और सप्तऋषि आश्रम, गंगा घाट, अगर इन सब से आप फ्री हो जाते हैं उसके बाद वापसी के तौर आप राजा जी नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। और अगर हम हरिद्वार की बात करें तो उसकी अपनी एक मान्यता है, और ये हरि का द्वार है इसीलिए इसका नाम पड़ा हरिद्वार। और यहाँ ये भारत के 7 पवित्र नगरों यानी सप्तपुरी में से एक माना जाता है। यहीं से गंगा हिमालय से निकलकर पहली बार उत्तर भारत के विशाल मैदानों में प्रवेश करती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। अगला गीत किशोर कुमार साहब की आवाज में आपके लिए, गंगा मैया के बारे में बात करते हुए। सुनते रहिए 102.6 मेगाहर्ट्ज़।

देखिए गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं, हिंदू मान्यता के अनुसार ये हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन और मरण तक का हमारा साथ है। और किशोर कुमार की आवाज में गंगा की धारा लहरों को संगीत के सुरों से मिलाते हुए ये बड़ा ही प्यारा गीत आपने सुना। मैं आपको ये मूवी का नाम भी इसमें बता सकता हूँ, कौन सी मूवी से है, गीत गंगा मूवी से है। फिलहाल यहाँ पर मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि 2:30 बजे से हम आपके लिए कार्यक्रम लाएंगे जो है NCERT का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, आशियाना में सफर। आज इतना ही, इस कार्यक्रम से रंजन को दीजिए इजाजत। 3 बजे से आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर, मैं 4 बजे पुनः आपसे मिलूंगा अल्फा जन में। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपने गंगा की लहरों को करीब से नहीं देखा है तो जरूर जाइएगा हरिद्वार। टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय, हर हर गंगे।

0: ही सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा।

0: और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी, तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी, तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से, तो हमारा आज का प्रश्न है, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800044055 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं।

0: लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है?
1: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
2: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
3: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
5: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
5: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
5: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
5: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
5: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
5: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
5: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
5: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्ववेत्ता है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए, आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
4: नाना जी, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं?
3: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
6: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
4: अच्छा,
6: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
4: मामा जी।
0: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है
3: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था। मामा जी, भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
0: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
0: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
3: अच्छा, भूर्ज वृक्ष?
0: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
4: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है?
0: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
4: अच्छा,
0: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
3: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
4: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
4: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
4: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
4: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
4: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
4: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
7: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion, Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के तमाम श्रोताओं को के यानी कमल किशोर का नमस्कार। उम्मीद है दोस्तों आप सब बिल्कुल भले चंगे होंगे और सुख चैन की नींद सो रहे होंगे। और अगर चैन की नींद नहीं ले पाते हैं तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग से हमारे नींद में खलल पड़ती रहती है। जी हाँ, आप सभी बखूबी परिचित हैं, जानते हैं इसमें या तो नींद आती नहीं है या फिर नींद कम आती है या कई बार होता है कि नींद बहुत ज्यादा आती है, यानी कि नींद संबंधी विकार हैं, स्लिप डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि हमने सदा की भांति आपकी समस्याओं के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट्स को आमंत्रित कर लिया है। जी

और वो भी एक नहीं, दो दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ यानी कि होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, आज होम्योपैथी विषय को लेकर के, होम्योपैथी पर इसके क्या इलाज है इस विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। नींद संबंधी विकारों यानी स्लीप डिसऑर्डर के लिए होम्योपैथी में क्या क्या इलाज है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं जो कि आप सारी जानकारियां ले सकते हैं और सवाल पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपने एक्सपर्ट से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, और आप प्रिंसिपल

0: होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं। हम आप दोनों का इस विशेष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं आपका।
1: नमस्कार नमस्कार
2: नमस्कार सर।
0: तो डॉक्टर साहब, ये जो नींद ना आने की बीमारी है, इसमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसे कि स्लिप डिसऑर्डर्स कहते हैं, नींद संबंधी विकार कहते हैं, तो वास्तव में ये है क्या, इसमें क्या लक्षण होते हैं?
1: देखिए, जो नींद ना आना यानी कि स्लीप डिसफंक्शन या स्लीप डिसऑर्डर जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में इंसोमनिया बोलते हैं, स्लीपलेसनेस, तो ये बहुत सारे कारण इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि बहुत सारे रीजंस हम फाइंड आउट करते हैं, जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल यानी हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं, कुछ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके डिसफंक्शन डिसरेगुलेशन से हो सकते हैं। तो जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली किसी भी कारण, जो भी कारण हो, फिजिकल फैक्टर्स में जैसे सबसे मोस्ट कॉमनली देखा जाता है पेन
0: जी।
1: अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्रॉनिक इलनेस है और उसकी वजह से वो पेन से सफर कर रहा है
0: जी,
1: चाहे वो माइग्रेनस पेन है, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज का अर्थराइटिस का पेन है, चाहे वो कुछ पेशेंट्स जो कैंसर से ग्रसित होते हैं तो कैंसर का पेन भी बड़ा लिमिटलेस होता है
0: जी।
1: तो किसी भी तरह का पेन अगर है किसी भी व्यक्ति को, तो सबसे बड़ा पहला कारण वो बनता है नींद ना आने का। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे कुछ पेशेंट्स अस्थमेटिक होते हैं, सांस की नली में सूजन आने के कारण से ब्रेथलेसनेस होती है और रात को ये चीजें बढ़ती हैं, तो वो भी कारण बनता है नींद के डिसरप्शन में
0: जी।
1: तीसरा कारण आता है एनवायरमेंटल, यानी आसपास होने वाली कुछ चीजें, जैसे बहुत सारा शोर शराबा है
0: जी,
1: वो भी हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, अगर हम अपने बॉडी को होम्योस्टेसिस यानी अपना वातावरण अनुकूल नहीं बना पाएंगे बॉडी का, तो उसके कारण से भी नींद में डिस्ट्रप्शन हो सकती है
0: जी।
1: कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, अब जैसे

0: के कारण से भी नींद नहीं आ रही है, तो क्या इसे हम बीमारी कह सकते हैं?
1: जी देखिए, शुरू में तो ये एक लक्षण के रूप में उभर के आता है, लेकिन कुछ लेटर ऑन स्टेजेस में ये एक बीमारी का रूप धारण कर सकता है।
0: अच्छा।
1: जैसे हम देखते हैं हमारे जो इसकी टाइप्स होती हैं, नार्कोलेप्सी, कैटालेप्सी, और हमारा होता है एक रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है, तो कुछ एक फिजियोलॉजिकली, बेसिकली स्लीप जो है एक फिजियोलॉजिकल पैटर्न है जो हमारे कॉग्निटिव यानी हमारे माइंड के फंक्शंस को नॉर्मल रखती है, हमारी मेमोरी को, हमारे बॉडी के पूरी फंक्शन को एक नॉर्मल रखती है, इम्यूनिटी भी इससे हमारी
0: बनती है, कंट्रोल सिस्टम
1: है। 7 से 9 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए जरूरी है।
0: 7 से 9 घंटे
1: जी, एक अगर अच्छी नींद किसी की है तो ये सारे फैक्टर्स, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उसका माइंड अच्छा चलेगा, उसके कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे चलेंगे। अगर किसी भी वजह से वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एक पैथोलॉजी में डेवलप हो जाए या चेंज हो जाता है तो वो एक ऐसा कारण बनता है जो कि जिसको हम स्लीपलेसनेस या इंसोमनिया कैटेगरी में एक बीमारी का रूप हम दे सकते हैं।
0: जी डॉक्टर,
1: जो आपने क्वेश्चन किया।
0: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीपक जी, जहां नींद की जब बात होती है तो बच्चों की नींद की भी बात होती है, जवानों की नींद की भी बात होती है, और बुढ़ापे में यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनकी नींद की, सब तो सबकी अलग अलग नींद की एक प्रक्रिया है कहनी चाहिए, और किसी को नींद ज्यादा आती है। खासकर ये देखा जाता है कि जब बुजुर्ग होते हैं उनमें नींद कम आती है, और खासकर रात की बात होती है, लेकिन बच्चे, अगर हम शिशु की बात करें तो शिशु तो हमेशा सोते रहता है, अगर जवानों की बात करें तो जवान भी कहते हैं कि जवानी में खूब नींद आती है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए सर ने ऑलमोस्ट सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया है, लेकिन स्लीप डिसऑर्डर में जिनको स्लीप ज्यादा आती है वो भी डिसऑर्डर में है, तो
0: अच्छा।
2: आज हमारे साथ ऐसा ना हो कि सिर्फ हम लोग उनसे बात कर पाए जिनको नींद कम आ रही है। जिनको नींद 9 घंटे से ज्यादा आ रही है वो भी स्लीप डिसऑर्डर के अंडर में चीजें आती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब क्या हर किसी को 9 घंटे की नींद आनी जरूरी है या उससे कम भी हो सकती है?
2: एवरेजन जो नींद है वो 6 से 8 घंटे की।
0: 6 से 8 घंटे जी हाँ।
2: आपने सही कहा कि बच्चों में थोड़ा नींद ज्यादा आती है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है नींद कम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग का जो प्रोसेसर है वो भी तो बहुत ज्यादा चलता है ना
0: जी।
2: तो जो नींद आना है वो अपना एक पैटर्न है, 6 से 8 घंटे की एवरेजन जो नींद है वो बहुत अच्छी नींद मानी जाती है
0: जी।
2: और जो नींद है वो लगातार, मतलब अगर हम कई वर्षों का एक आंकड़ा देखें तो हम लगभग 5000 साल पहले से अगर अनुमान लगाएं तो हमारी इस समय की स्लीप 1.5 घंटे ऑलरेडी कम हो गई है
0: जी
2: एवरेजन। तो लेकिन 6 से 8 घंटे की जो स्लीप है

0: बारे में आज हम ज्यादातर बात करेंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, ये डिसऑर्डर्स जो देखने को मिलते हैं, ये कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स कहते हैं? जैसे कि कई बार हम सुनते हैं कि इंसोम्निया है, या फिर और दूसरे प्रकार की जो स्लीप एपनिया है, ये सब जो है, तो इनमें कुछ फर्क है,
0: जी
1: कुछ अंतर है?
0: बिल्कुल। देखिए, जहां तक स्लीप एपनिया की बात आती है, स्लीप एपनिया एक डीप स्लीप के अंदर एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे कुछ समय के लिए सांस रुक जाती है, जिसमें पेशेंट को नहीं पता लगता। और ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, मतलब आपके नाक के अंदर का जो तंत्र होता है वो काम करना कुछ समय के, कुछ सेकंड के लिए बंद कर देता है। तो स्लीप एपनिया एक थोड़ी डेंजरस चीज है, तो इसके लिए तो आपको हमेशा ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। ज्यादातर ऐसा जो करते हैं उनके साथ पहले खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं, और इन सब की जो शिकायत है वो हमारे पास अटेंडेंट लेकर के आता है। जैसे वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड को ऐसा होता है कि 2-3 मिनट के लिए सांस नहीं आती, या एकदम से वो सांस लेना रोक देते हैं, तो ज्यादातर हमारे पास अटेंडेंट वो लेकर के आता है कि इनको ये तकलीफ है।
1: जी,
0: जहां तक बात है इंसोम्निया की,
1: जी,
0: तो इंसोम्निया ऑलरेडी एक क्रॉनिक डिजीज में आता है। इंसोम्निया का मतलब है कि आपको कई दिनों से बहुत लगातार एक सुकून की नींद नहीं मिल रही है। ज्यादातर पेशेंट आते हैं कि सर हमें नींद नहीं आ रही, लेकिन इंसोम्निया की एक कैटेगरी और है जहां पे आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको बहुत सारी एंजाइटी है जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है।
1: जी, डॉक्टर दीपक जी और डॉक्टर नीरज जी, हमारे कुछ लिसनर्स हमसे जुड़ गए हैं, पहले हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं कि उनको नींद कैसे आ रही है और उनका समाधान क्या है। जी हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: आप सभी को नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: और मेरा नाम सपना है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
1: जी सपना जी,
2: मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से कि मुझे बचपन से ही नींद का इशू रहता है, इन द सेंस कि रात में नींद आ जाती थी मगर दिन में कभी भी नहीं आती थी, और रात को भी 8 बजे के आसपास आती थी। अगर वो टाइम मिस हो गया तो फिर नींद आने में दिक्कत होती थी, और ये चीज आज तक कैरी ऑन हो रही है। मगर अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी, आई एम 53 नाउ, तो मुझे मतलब और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जैसे बॉडी एक होना, आर्थराइटिस भी हो गया है मुझे।
1: जी, जी, जी।
2: और तो ये चीजें मतलब क्या नींद से रिलेटेड है? और जैसे अभी भी मैं दिन में सोने की कोशिश करती हूँ तो एकदम डर कर उठती हूँ अगर नींद आ भी जाए, और नींद लाने के लिए भी मुझे आजकल रात को भी कुछ सुनना पड़ता है, वो सुनते सुनते, जैसे कोई टॉक शो होता है वो सुनते सुनते मैं तभी सो पाती हूँ। और रात में एक बार अगर मैं वॉशरूम के लिए गई तो फिर मुझे नींद आने में 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ऐसे लग जाते हैं।
1: तो डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है और ये क्या लक्षण है?
3: हाँ सपना जी, जैसे आपने बताया कि आपकी एज है 53 और आप लगभग पोस्ट मेनोपॉजल एज में चल रही हैं, ठीक है, और आपने कहा कि बचपन से आपकी ये समस्या है कि 8 बजे आप सो जाती थी और दिन में नींद नहीं आती थी। अगर आपका पैटर्न ऑफ स्लीप बचपन से ऐसा चलता रहा है कि 8 बजे सो करके आप 5-6 बजे उठ रही हैं, ये मॉर्निंग में जितने भी घंटे सो रहे हैं, तो आपका अगर 6-8 या 8-9 घंटे की नींद चलती रही है तो आई थिंक दिस इज नॉर्मल। और अब जैसे आपने कहा कि बॉडी एक आर्थराइटिस वगैरह हो गया है, तो जैसे मैं अपने पहले इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि कुछ कारण ऐसे होते हैं कि अगर आपको पेन है बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि पेन के कारण से भी नींद डिस्टर्ब रहती है। अगर आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस का पेन भी या तो मॉर्निंग में बढ़ता है या कई लोगों को रात को बढ़ता है, तो वो कारण भी हो सकता है। दूसरा, आपने कहा कि जैसे वॉशरूम जाने के बाद आपको नींद नहीं आती है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि काफी लोगों को ये समस्या होती है कि एक बार वॉशरूम गए और उसके बाद नींद टूट जाती है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप जरूर किसी भी चिकित्सक से, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, परामर्श करें। हमारे पास ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं जो कि आपका ये एरिया, जो ये इशू है कि वॉशरूम के बाद नींद नहीं आ रही है और माइंड में विचार चलते जाते हैं, क्या होता है कि मॉर्निंग में फिर आपको कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, तो उन थॉट्स के कारण से भी नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है। और डर के उठने वाली जो बात है, ये नाइट टेरर्स के नाम से हम लोग मानते हैं कि कई बार कई बच्चे होते हैं जो कोई सपना देखते हैं या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई डर बैठा हुआ है, वो डर किसी रूप में आ जाता है सामने और वो एकदम हड़बड़ाहट के साथ, डर के चीख के साथ उठते हैं। तो इसके लिए आई थिंक यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। आप अगर होम्योपैथी में आना चाहें तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे अच्छे इसके सुगम इलाज हैं, संभव है, और संभवतः आपका यह जो रोग है जड़ से ठीक हो सकता है।
1: सपना जी, जी और कुछ प्रश्न?
2: नहीं बस, थैंक यू सो मच।
1: जी थैंक यू सो मच, आपने कांटेक्ट किया। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे स्लीप एपनिया के विषय में, इंसोम्निया के विषय में। जी, स्लीप एपनिया में कई बार यह देखा जाता है कि सांसें रुक जाती हैं, तो वो आपने बताया कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे डॉक्टर साहब, मुझे भी कई बार ऐसे फील हुआ है, लगता है कि सांसें रुक जाएंगी और सांस नहीं ले पा रहा हूं, तो क्या ये क्रॉनिक डिजीज है? लेकिन ये काफी साल भर के बाद में, 6 महीने में ऐसे कुछ होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, तो क्या एक ये क्रॉनिक डिजीज है और इसका भी कोई इलाज है?
0: सर बिल्कुल इलाज है, लेकिन सबसे पहले उसका कारण जानना बहुत जरूरी है।

0: और जब भी कभी हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, जैसे आपने कहा कि कभी कभी होता है
1: जी,
0: तो जो कभी कभी होता है उसमें भी कैटेगरी होती है कि महीने में एक बार है या 3 महीने में एक बार है। अगर वो कई महीनों में एक बार है तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा वरी की जरूरत नहीं है। बस हम सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ी नेजल एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, उससे भी काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। असेसमेंट के लिए हमें एक एक्सरे और कभी कभी एक स्लीप स्टडी की जरूरत पड़ती है ताकि हम ये पता लगा पाए कि आखिर वो किस फेज में हो रहा है। दूसरा, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादातर अटेंडेंट से लेनी पड़ती है कि वो किस टाइम हो रहा है
1: जी।
0: अब होम्योपैथी पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी मेडिकल साइंस है जहां पे सिर्फ अगर 2 बजे प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी अलग दवाई है, रात को 3 बजे हो रही है तो उसकी एक अलग दवाई है। तो होम्योपैथी जो सिम्टम बेस्ड है, बहुत सारे आपने देखा होगा ना कि होम्योपैथी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वो दवाई का चयन करने के लिए बहुत सारे सिम्टम्स को लेना पड़ता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बताई और बड़ी नई बात बताई कि टाइमिंग के अनुसार आप उसे ट्रीट देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं।
0: ये पूरी दुनिया में सिर्फ होम्योपैथी के साथ है कि आपको हर एक टाइम स्पेसिफिक दवाई जो है वो सिर्फ होम्योपैथी में ही मिल सकती है।
2: मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इस बारे में कि होम्योपैथी ही एक ऐसी पद्धति है जो टेलर मेड एक पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जो शर्ट साइज है वो दूसरे को नहीं आ सकता, किसी का 40 साइज है, किसी का 42 है, किसी का 44 है, तो इसी तरीके से हर दवा एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हर एक के लक्षण अलग हैं, हर एक के जो स्लीप से जुड़े हुए संबंधी जो मोडेलिटीज हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 बजे का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, तो टाइम मोडेलिटीज के हिसाब से भी हमारी दवाइयां अलग होती हैं।
1: अच्छा,
2: सो मच सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबकी अलग अलग है, हमारे जो जीन्स हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को समझते हुए हम दवाई का चयन करते हैं। कोई भी एक दवाई सब मरीजों के लिए नहीं हो सकती
1: जी, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग
2: अलग टाइम के लिए अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग फैक्ट जो हमारे वेदर कंडीशंस हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि हमारे को प्रॉब्लम जो है सर्दियों में बढ़ती है, कुछ गर्मियों में कहते हैं बढ़ती है, तो इन सारे लक्षणों को मद्देनजर रखते हुए हम दवाई का चयन करते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी कि हम लक्षणों के डिटेल में जाकर के उसके साथ क्या जुड़ी हुई चीजें हैं, उसके साथ क्या मोडेलिटीज हैं, कब बढ़ता है, कब घटता है, क्या कारणों से बढ़ती है, क्या कारणों से घटती है, उनको मद्देनजर रखते हुए दवाई का चयन करते हैं और दैट इज 100% ट्रीटेबल एंड क्योरेबल।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले फिर दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं कि स्लीप एपनिया जो है, आपने एक बात कही बीच में, मैंने वो गौर कर रहा था कि इसके कारण पता करना पड़ेगा, तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं स्लीप एपनिया के?
0: सबसे पहला जो कारण है वो ओबेसिटी आता है।
1: ओबेसिटी,
0: हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वजन बढ़ाते चले जाते हैं। अब उनका वजन पेट पे तो दिखता है, थाइस पे तो दिखता है, लेकिन अंदर के जो कुछ ग्लैंड्स हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं, तो ओबेसिटी इसमें सबसे पहला कॉज आता है।
1: लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझे देख रहे हैं?
0: जी हाँ, नहीं मैं आपको तो देख लिया, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि कई महीनों में या कभी कभी ऐसा होता है।
1: अच्छा,
0: जो ओबेसिटी की तरफ, अगर जैसे आपका वजन भी अगर कुछ समय के लिए बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम आपको रिकरन हो सकती है। और कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, उसका पता हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करा करके पता लगता है। तो जब तक आपका डॉक्टर असेसमेंट ना कर ले तब तक आप अपने आप तो कोई दवाई बिल्कुल भी मत लीजिए होम्योपैथी में, तो खासकर।
1: अच्छा,
0: तो जो स्लीप एपनिया के कारण है वो बहुत सारे कारण है, और ऑब्स्ट्रक्टिव वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कभी कभी सांस रात को रुक जाती है। इसके मैनेजमेंट में हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी हम देते हैं, और सबसे मेन काम है उसके स्लीप पैटर्न का नोट करना, मतलब उसको किस तरफ ज्यादा आराम पड़ता है, लेफ्ट साइड वो ज्यादा सोता है, लेफ्ट साइड राइट साइड ज्यादा सोता है, और उसकी एक पोजीशन का पता लगाना, उसकी वजह से भी हम लोग दवाई का डिसीजन लेते हैं।
1: डॉक्टर साहब इस भी बात पे, क्योंकि आपने लेफ्ट राइट की बात की, डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीरज जी,
2: जी
1: किस ओर करवट लेकर के सोनी चाहिए, कैसे सोना चाहिए?
2: देखिए आइडियली तो हमें लेफ्ट साइड सोना चाहिए क्योंकि हमारे रात का जो स्लीप है, अगर हम लेफ्ट साइड सोते हैं तो डाइजेशन बड़ा इंप्रूव होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इंप्रूव होता है
1: जी।
2: राइट साइड में हमारा लीवर है, तो अगर हम राइट साइड सोएंगे तो लीवर पे दबाव पड़ने से जो उसकी सिक्रीशंस हैं वो प्रॉपरली नहीं जाती, तो लेफ्ट साइड अगर हम लेटते हैं तो दैट इज द एप्रोप्रिएट पोजीशन जिसमें हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है।
1: अच्छा।
2: और नींद का तो कोई इससे संबंध नहीं है हालांकि, लेकिन जिस पोजीशन में भी कोई भी व्यक्ति, उसका हैबिट होती है सोने की, तो नींद तो किसी भी करवट में अगर इंसान को हैबिट है कि भाई सीधा सो के भी नींद अच्छी आती है तो सो सकता है, लेकिन जिनको ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट साइड की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड में सोइए तो राइट साइड खुलता है, ये देखा जाता है। और अगर राइट ऑब्स्ट्रक्शन है तो मतलब लेफ्ट में लेटेंगे तो राइट साइड खुलेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेटने से वो नाक खुलता है।
1: अगर पीठ के बल सोए तो?
2: पेट के बल सोने में कोई नुकसान नहीं है, पीठ के बल सोने में कोई नुकसान नहीं है
1: जी।
2: उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है बढ़ती है, देखा जाता है।
1: अच्छा,
2: तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ सकती है अगर पीठ के बल यानी बैक पे लेटा जाए
1: जी।
2: तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो ओएसए हम मानते हैं टेक्निकली,

0: ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जैसे अभी डिस्कस हो ही रहा है। तो ये डायबिटीज के साथ भी जुड़ी हुई कंडीशन है। जो क्रॉनिक डायबिटिक्स हैं उनमें भी ये देखा जाता है, जो ओबीज हैं जिनका बीएमआई हमारा 28 या 30 से ज्यादा है, तो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है बॉडी वो अगर ज्यादा होने से ओबिसिटी है, ओवरवेट है, तो वो भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के शिकार होते हैं। तो डायबिटीज का भी लिंक इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। नेजल ब्लॉकेज होना, साइनस होना और नाक का बंद होना,
1: जी
0: ये तो कंडीशंस ही हैं। कुछ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम भी होते हैं जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके कारण से भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया।
1: डॉक्टर साहब, कई लोगों की आदत होती है कि पेट के बल भी सो लेते हैं, तो इसमें कुछ परेशानी हो सकती है आगे चल करके?
0: देखिए, कोई परेशानी सिर्फ डाइजेशन के हिसाब से हो सकती है, बाकी ये हैबिट की बात होती है। अगर पेट के बल कोई सोता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ओनली थिंग इट इज ए हैबिट, किसी को पेट के बल सोना अच्छा लगता है एंड ही कैन स्लीप वेरी नाइसली, और कोई राइट या कोई लेफ्ट में या कोई पीठ के बल सोता है, लेकिन अगर उसको तकलीफ बढ़ती है किसी भी स्लीप पोजीशन में लेटने से तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: जी, तो डॉक्टर साहब ये सारी बातें हैं, जब सोने की बात आती है तो रेस्ट की भी बात आती है। अगर आप रेस्ट अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि नींद आपको अच्छी है। तो डॉक्टर साहब अगर आप कहें तो थोड़ा सा हम भी रेस्ट ले लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं
0: बिल्कुल
1: एक गीत के जरिए, ताकि हमारे श्रोता भी खुश हो जाए और शायद आगे चल करके उनको अच्छी नींद भी आ जाए।
0: श्योर, वेरी नाइस।

0: तो डॉक्टर साहब, ये जो नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण, और जिसमें कि अभी आपने सुना, इस गाने में सुना कि मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए। देखिए, जब नींद नहीं आती है तो चैन तो खोता है, और जब चैन खो जाए तो समझ लीजिए कि बीमारियों का घर बन जाता है हमारा ये शरीर।
1: बिल्कुल, ये इंटर रिलेटेड है। चैन नहीं आता तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगा तो चैन नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ऑपोजिट।
0: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, स्लीप डिसऑर्डर होने से सबसे अधिक जो खतरा रहता है उसमें क्या क्या हो सकता है?
1: देखिए, सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो ये होता है कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होता है, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता है, हमारे हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है बॉडी के अंदर, जो बढ़ जाता है, और उसके कारण से अगले दिन चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, और अपना मूड जो है उदास रहना, चिड़चिड़ापन तो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सो मच सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बढ़ती हैं
0: जी,
1: हार्ट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जिनको नींद कम रहती है या नींद पूरी नहीं ले पाते उनका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है, तो हार्ट अटैक का आना संभाविक रूप से, आपने देखा होगा कि अर्ली आवर्स में हार्ट अटैक आता है, तो ये चीजें कुछ संबंधित है नींद के पैटर्न से।
0: जी, तो श्रोता मित्रों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज हम स्लीप डिसऑर्डर्स के विषय में बातचीत कर रहे हैं, और उसका होम्योपैथी इलाज क्या है इसके विषय में बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे दो एक्सपर्ट, प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, आप प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है नेहरू होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल नई दिल्ली में, और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं दीपक शर्मा जी, आप होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, जो कारण बता रहे थे जिसमें कि आपने बताया दीपक जी कि मोटापा, और उसके अलावा डॉक्टर साहब, और दिनचर्या पर भी जो नींद का जो असर होता है वो भी असर हो सकता है, और इसमें किस प्रकार की बीमारी निकल के सामने आ सकती है?
2: जी देखिए कमल जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ कि आपकी बॉडी ना थके और नींद ना आए तो एक अलग विषय है। मतलब आपकी बॉडी पूरी तरह से, फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैं मेंटल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी फिजिकल बॉडी थकी हुई हो, नींद ना आए, ऐसा कुछ ही बीमारियों में होता है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप कितना थक रहे हैं फिजिकल बॉडी से। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो ऐसा काम करते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं या शारीरिक काम करते हैं पूरे दिन, उनको नींद के लिए कोई अच्छे गद्दे की, कोई अच्छी जगह की जरूरत ही नहीं पड़ती,
0: उनको नींद बहुत अच्छी आती है
2: और सुबह बहुत जल्दी भी उठ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपके शरीर का थकना, आपके शरीर का एक रूटीन होना आपकी नींद के लिए सबसे जरूरी चीज है।
0: जी, जी।
2: आप ऐसा कभी मत सोचिए कि आपने कोई एक टॉफी खा ली या आपने कुछ कोई मेडिसिन ले ली, आपको उससे अच्छी नींद आएगी। नींद अच्छी तभी आएगी जब आपका मन शांत होगा और आप फिजिकली थोड़ा थके हुए होंगे। इसलिए कहते हैं कि आपको फिजिकली एक्सरसाइज भी और आपका डेली रूटीन होना, जैसे बहुत सारे मेरे साथ आकर के पोषण पूछते हैं नींद के बारे में कि सर सबसे अच्छा समय कौन सा है
0: जी,
2: तो मैं उनको कहता हूं कि जब नींद आ जाए शाम के बाद, वही अच्छा समय है। जैसे अभी एक कॉलर थी, उन्होंने कहा कि मेरे को बचपन से ऐसा है कि मुझे 8 बजे नींद आती है, तो मुझे लगता है भगवान का इससे बड़ा आशीर्वाद तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जिनको 8 बजे नींद आ जाती है और सुबह जल्दी उठ जाते हैं।
0: जी हाँ, जी हाँ।
2: तो उठने का समय हमारे जैसे पूर्वज भी आपने सुना होगा कि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो
0: अर्ली मॉर्निंग
2: में, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के

0: सुबह सुबह आपको जल्दी उठे मिलेंगे।
1: यानी कि नेचर तो, के साथ अगर हम चलें
0: जी, अब क्योंकि इंसान शायद चेंज होते जा रहे हैं, है ना, अगर हम तुलना करें तो हम ह्यूमन जो सेपियंस हैं वो हो सकता है अलग कोई स्पीसीज बन जाए। तो अभी तक जो भी अच्छे इंसानों की कैटेगरी में है वो सुबह जल्दी उठ रहे हैं
1: जी जी।
0: तो
1: जी।
0: ये एक सबसे मेन चीज है कि जब आप शाम के बाद, मतलब आपको एक शाम का जो मौसम होता है 6 बजे 7 बजे के बाद, उस वक्त जब भी नींद आ जाए आप सो जाओ, और जब आंख खुले उसके बाद 3 बजे 4 बजे, तो आप सबसे अच्छे व्यक्ति में हो, आपके ऊपर भगवान का एक आशीर्वाद है
1: जी। डॉक्टर नीरज जी, स्लिप एपनिया पर एक बार फिर से हम दोबारा आते हैं और बात करते हैं कि स्लिप एपनिया में जो खतरा है, जो रिस्क है, वो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है?
2: देखिए, स्लीप एपनिया से रिस्क फैक्टर सिर्फ ये है कि हमारा जो सांस रुकता है तो इससे हमारा जो सर्कुलेशन है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन है, वो उस पर प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है तो उससे हमारा हार्ट रेट पे इफेक्ट आता है। तो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज विच शुड बी टारगेटेड। तो इससे यहां तक देखा जाता है कि डेथ भी होने की संभावना होती है, खास करके उन मरीजों में जो COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से ग्रसित हैं या क्रॉनिक एस्थमेटिक्स हैं। तो इसको टारगेट करना बहुत जरूरी है। कई बार ये देखते हैं कि जिसके एडिनॉइड्स होते हैं बच्चों के अंदर, एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, उनके बढ़ने से भी ये स्लीप एपनिया होता है, उनको भी स्नोरिंग की शिकायत हो सकती है और स्लीप रुकती है उनके। और हमारे पास जो ऐसे मरीज आते हैं तो उनको हम बड़े अच्छे तरीके से होम्योपैथिक से टारगेट कर सकते हैं
1: जी डॉक्टर साहब।
2: तो ये मेनली जो है स्लीप एपनिया जो है ये पैथोलॉजिकल बन सकता है और इसका समय पर उपचार, समय पर निदान होना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया हुआ है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है और इन्होंने लिखा है कि आई स्लीप फॉर 14-15 आवर्स, स्टिल आई फील लेथार्जिक एंड एग्जॉस्टेड। बताइए।
0: हाँ सर, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि ऐसे भी पेशेंट हो सकते हैं जिनको नींद बहुत ज्यादा आती है। तो जो भी ये लिसनर हैं, आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे काम करिए, मतलब एक ऐसी डिजीज जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकती है। आप अपने खाने पीने पे, आप अपनी एक्सरसाइज पे अच्छे से ध्यान रखिए और किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को जाकर के तुरंत दिखाइए, ताकि आपका एक शेड्यूल वो नोट कर सके, आपके सिम्टम्स को नोट कर सके। 14 से 15 घंटा नींद आना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो आपको डायबिटीज, आपको हाइपरटेंशन, आपको कार्डियक डिजीज, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आ सकती हैं, लेकिन इसका असेसमेंट जो है वो एक डॉक्टर ही कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर एक होम्योपैथिक फिजिशियन से जाके मिलिए
1: जी। डॉक्टर साहब, एक और मैसेज आया डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीरज जी, ये है नवजोत गुरु जी हैं और इन्होंने जगह का नाम तो नहीं लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि रात को सोने के बाद मेरे दोनों कंधों से लेकर हाथ तक सो जाते, यानी कि शिथिल पड़ जाते हैं, क्या ये भी एक बीमारी हो सकती है?
2: देखिए, ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर ज्यादा लग रहा है, नींद का तो मुझे नहीं संबंध इससे लगता
1: जी।
2: जो आपने बताया नवजोत जी की, सोने के बाद आपके कंधों से नीचे तक आपका जो सुन हो जाता है, शिथिल हो जाते हैं, तो ये समवेयर कोई नसें दब रही हैं
1: जी।
2: ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है या कुछ और कारण हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यही राय दूंगा कि आप जरूर अपने निकटतम किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये क्यों हो रहा है, आपका एज रिलेटेड भी हो सकता है। क्या होता है कि आपकी एज तो हमें नहीं पता लग रही इस मैसेज से, लेकिन अगर आपकी एज 60 या 60 से ऊपर है तो क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक कंडीशन होती है सार्कोपीनिया, जिसमें हमारी मसल्स वीक होती चली जाती हैं, नर्व्स वीक होती चली जाती हैं और प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये चीजें देखने को मिलता है। तो ये आपको रीजन आउट करना है, यू हैव टू कंसल्ट ए फिजिशियन। आप जरूर जाइए और उनसे अपना पूरा इवेल्युएशन कराइए कि क्या ये नस दबने से है या आपका सार्कोपीनिया यानी प्रोटीन लॉस की वजह से हो रहा है। तो उसको टारगेट उस तरीके से किया जाएगा।
1: डॉक्टर दीपक जी, ये हैं मुखर्जी नगर दिल्ली से अर्चना राजपाल जी, ये कहती हैं कि कभी कभी थका हुआ होने के बाद भी नींद नहीं आती है और मेरे साथ ये होता है कि हफ्ते में एक आध बार नींद 1:30 बजे 2 बजे के बाद आती है, ये बताएं कि हम क्या करें?
0: जी देखिए, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो देखिए, जब सबसे पहले हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी डॉक्टर आपको एकदम से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है, वो आपके लिए सबसे बढ़िया डॉक्टर है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप कोई कैफीन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप शाम के टाइम कोई कॉफी या चाय या ऐसी कोई चीज तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ जाती है। आपने कहा कि थोड़ा थकान के बाद, पूरा थकिए, पूरे दिन वर्कआउट करिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो शाम को 4, 5 बजे 6 बजे भी चाय पीते हैं, उनकी भी नींद साइकिल डिस्टर्ब होता है।
1: अच्छा,
0: तो ऐसा कहा जाता है अमूमन तौर पर स्टडी के 2-3 घंटे पहले नहीं पीना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 6-8 घंटे पहले नहीं पीना चाहिए
1: जी।
0: और अगर आपको चाय का बहुत शौक है तो आप सिर्फ मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक चाय लें। आप एक बार अपने रूटीन को सुधार के देखिए, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में ऐसा जा रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोपहर में 2 या 3

0: घंटे सो रहे हो तो भी आपको रात को नींद जो है 12-1 बजे के बाद आएगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दिन में सोना बंद करना पड़ेगा और फिर रात को अपने आप नींद आ जाएगी। रात सोने के लिए बनी है और दिन काम करने के लिए बना है।
1: जी, अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि आपने कि दोपहर 12 बजे से पहले 1 बजे से पहले ही मैंने चाय वगैरह पीना चाहते हैं तो पी लीजिए और उसके बाद चाय पीनी नहीं चाहिए क्योंकि उसके बाद में फिर ये डिसऑर्डर्स में आ सकता है, नींद में आपकी खलल पड़ सकती है। डॉक्टर साहब हमारे पास एक और मैसेज आया है और ये मैसेज लिखा इन्होंने संदीप कुमार शर्मा जी हैं, इन्होंने जगह का नाम तो नहीं लिखा है लेकिन कहते हैं कि सोते समय खर्राटे आने के दुष्परिणाम क्या होता है।
2: देखिए खर्राटे आने का मतलब यही है कि या तो आपकी ओबेसिटी है, आपका वजन ज्यादा है या कोई ऐसा क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपके साथ जुड़ा हुआ है जो आपको खर्राटे के पैदा कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि खर्राटे का लिंक हमारा अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की तरफ जाता है तो हमारा डायबिटीज को भी हमें रूल आउट करना है। तो डायबिटिक्स के अंदर जो ओबीस डायबिटिक्स है, ओबेसिटी भी है और डायबिटीज भी है, क्रॉनिक डायबिटीज, तो उनको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। तो इसका जो दुष्परिणाम है यही है कि आपका सांस रुकेगा, आपको सांस पूरा नहीं जाएगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी और बीच बीच में अपने साथ साथ दूसरों को आप तंग करेंगे, जो आपके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, जो आसपास सो रहे हैं। तो यहां तक देखने को मिलता है कि अगर आप रेलवे से जा रहे हैं, सो मच सो फ्लाइट से जा रहे हैं, तो आपके आजू बाजू कोई खर्राटे मार रहा है तो इट बिकम्स ए रीजन फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये डिस्टर्बेंस का कारण बनता है। तो आप जो व्यक्ति खर्राटे ले रहा है उसको तो पता नहीं है लेकिन जो दूसरा है उसको तकलीफ होती है इसके
1: दूसरे तकलीफ होते हैं लेकिन वो चैन की नींद सोता है डॉक्टर साहब।
2: जो खर्राटे ले रहा है वो चैन के लिए सो रहा है, चैन से सो रहा है, उसको तो पता ही नहीं है सर। तो ये है इसका
0: एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो मुझे आज तक अपनी ओपीडी में मिला, एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हुआ सिर्फ इस स्नोरिंग की वजह से। तो अगर आप दुष्परिणाम फिराएंगे तो ये भी एक वजह से आपने सर कहा कि वो जो साथ वाला है परेशान होता है।
2: इट इज अ मैटर ऑफ लीगल ओपिनियन, इस पे हम नहीं जाएंगे।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब एक हमारे पास कॉल आ रहा है और उनको भी शायद नींद की परेशानी है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उन्हें क्या परेशानी। हेलो
3: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
3: दोनों डॉक्टर साहब को भी नमस्कार
1: जी, जी आपको नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार नमस्कार जी,
3: मेरा नाम संजीव कुमार है सर, हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं, गाँव की सुनिया है, डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी।
1: जी
3: अच्छा सर, मैं जो है ना वर्ष 2002 से दिमाग की दवाई खाता हूँ एलोपैथिक, और कई बार तो मतलब ऐसी हो जाती है कि रात को मैं सोता ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसी निकल जाती है पूरी रात और कई बार नींद बहुत ज्यादा आती है। अब इन्होंने मेरा इलाज चल रहा है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो करनाल में है, और बीपी और शुगर भी है सर, 44 इयर्स में भी एज है सर और 102 किलो वजन है सर
1: जी।
3: अब तो और मेरा भाई है इसको भी सिज़ोफ्रेनिया की दिक्कत बताई उन्होंने डॉक्टर ने, ये भी इसने परसों पूरी रात निकाल दिया, ऐसे सोया नहीं और मैं इतना सो गया कि 7 बजे ही सो गया मैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब इनका कहना है कि इन्होंने एलोपैथी का भी इलाज किया लेकिन इनसे कोई राहत नहीं मिल रही है
2: जी। संजीव जी, जैसे आपने अपनी उम्र बताई 54 शायद है और आपने वजन बताया अपना 102 किलो और साथ में बीपी और शुगर की भी बीमारी आपने बताई है
1: जी।
2: तो ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। उम्र तो जो है वो तो है ही है लेकिन आपका वजन ज्यादा होने से आपके हाइपर ये टेंशन है यानी कि बीपी बढ़ा हुआ है और पीछे साथ में जुड़ी हुई शुगर भी है, तो ये हो सकता है जो कारण, दोनों कारण जो हैं आपके लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। और नींद नहीं आ रही आपने बताया, साइक्लिकल पैटर्न है, कभी ज्यादा आ रही है कभी कम आ रही है। हो सकता है कम आने के लिए आपको कोई ऐसी मेडिसिन दी जा रही है जो सिडेटिव्स हों, और सिडेटिव्स अगर देते हैं कोई रात को जो आप कोई गोली खाते हैं तो उसका असर अगले दिन पड़ता है, आपकी बॉडी एकदम डल हो जाती है और एक समय आने पर के थ्रेशोल्ड जो है हमारा इतना बढ़ जाता है कि एक जैसे 0.25 mg की भी मेडिसिन काम नहीं करेगी और धीरे धीरे वो दवाई का जो मिलीग्राम्स है वो आपकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है और एक लेवल पे आके आपको 5 mg की भी दवाई काम नहीं करेगी। तो ये आपको जरूर आपने किसी भी स्पेशलिस्ट, अगर आप होम्योपैथी में एक इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप करनाल डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप अपने आसपास जरूर एक चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक जो एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो उनके पास जाएं, अपना सारा जो हिस्ट्री है दीजिए और वो आपका असेसमेंट करने के बाद आपको कोई ना कोई ऐसी दवाई देंगे, ना केवल शुगर और बीपी के लिए बल्कि आपकी जो नींद की जो साइक्लिक डिस्टरबेंस है उसके लिए भी आपको जरूर टारगेट करेंगे। तो यहां आपको दवाई तो मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप अपना लाइफस्टाइल जरूर सुधारिए, वजन पे टारगेट करिए, शुगर और बीपी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब ऑटोमेटिकली ये चीजें कंट्रोल होंगी तो आपको नींद भी अच्छी आनी शुरू होगी। तो आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें, उसका परिणाम आपके बीपी के ऊपर भी और शुगर को कंट्रोल करने पर भी रहेगा
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब हमारे पास एक मैसेज आया है, वो भी बहुत दूर से मैसेज आया है और ये है जोया जी हैं और

0: मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया हुआ है।
1: क्या बात है
0: जी। कहते हैं कि डॉक्टर यू मेंशनड कार्टिसोल, इट इज ए पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हाउ डज स्लीपलेसनेस इम्पैक्ट ऑन द कार्टिसोल ऑफ ह्यूमन ब्रेन, डू यू बिलीव दैट स्लीपलेसनेस कैन कॉज ट्यूमर इन पिट्यूटरी ग्लैंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो?
1: जी जोया जी, जैसे इफ यू हैव मेंशनड अबाउट कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इज ए हार्मोन विच गेट्स इंक्रीज्ड व्हेन देर इज एंग्जाइटी, व्हेन देर इज स्ट्रेस, व्हेन एवर देर इज इंक्रीज स्ट्रेस तो कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीजेस, वो बढ़ जाता है। और कॉर्टिसोल जब बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। उसके जो आउटकम्स हैं वो हैं चिड़चिड़ापन का होना, गुस्सा ज्यादा आना, सो मच सो हमारे को नींद पर भी इसका असर पड़ता है। इट इज लाइक दैट कि कॉर्टिसोल बढ़ेगा नींद में डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। तो आप अगर क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड आउट, कोई भी व्यक्ति अगर क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड आउट है तो उसको ये कंडीशन होने की संभावना हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि पिट्यूटरी ट्यूमर जो आप बात कर रही हैं कॉर्टिसोल बढ़ने से डायरेक्ट उसका लिंक है, ऐसा नहीं है। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन टाइप एंड अकॉर्डिंगली वी कैन रिप्लाई।
0: डॉक्टर दीपक जी, एक और मैसेज आया हुआ है, ये है सौरभ जी हैं भोपाल से और ये स्टूडेंट हैं। कहते हैं कि नींद बहुत आती है दोपहर में, ऐसा क्या करूं कि नींद कम आए? और इनका वजन है 75 kg और इनकी जो एज है वो है 25 years।
2: जी देखिए, एक तो सबसे पहले ये जो 25 वाली एज है, यहाँ पे नींद का पैटर्न डिस्टर्ब होना एक बहुत कॉमन सी चीज होती है, क्योंकि सब लोग ज्यादातर स्टडी में होते हैं। जैसा अभी हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि बच्चों में एंजाइटी का ज्यादा फैक्टर है, तो जहां तक जब भी कभी ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं या क्वेश्चन लेके आते हैं, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि आप अपने स्लीप का एक पैटर्न बताइए कि वो क्या है। पूरा जरूरी नहीं कि आप डेली नींद ले रहे हैं दिन में, तो आप रात को भी कोई ना कोई पढ़ाई का काम कर रहे होंगे या ऐसा कोई ना काम कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको दिन में नींद आ रही है। अगर आप दिन में नींद नहीं चाहते तो मेरा एक सिर्फ चैलेंज होता है 90 डेज तक आप एक ही स्लीप पैटर्न में रहिए, 91 डेज पे ऑटोमेटिकली आपको सेम डे टाइम पे नींद आएगी और सेम टाइम पे आप उठ जाइए। तो 90 डेज तक आप सिर्फ इतना करिए कि सिर्फ रात को अच्छी नींद लीजिए और दिन में मत सोइए। 91 डेज में विदाउट एनी मेडिकेशन, बिना किसी चीज के आपको नींद उसी समय पर आने लगेगी।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं एक बार फिर से। हेलो
3: सर।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम उमेश है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा।
1: नमस्कार। नमस्कार उमेश जी,
0: आपकी उम्र क्या है?
3: डॉक्टर साहब मेरी उम्र 44 वर्ष है जी।
0: जी बताएं आपकी समस्या बताएं।
3: डॉक्टर साहब मेरे 4 वर्ष पहले आंखों की रोशनी दोनों की चली गई है और मैं पहले फील्ड का काम करता था।
0: जी
3: अब मैं बिस्तर पर रहता हूँ जी 4 वर्ष से
0: जी,
3: और सोचता रहता हूँ और मुझे नींद नहीं आती। क्या कोई हल है मेरे? कभी कभी मैं एलोपैथिक की गोली ले लेता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, नहीं तो मुझे कभी आ गई 1-2 घंटे को और फिर नहीं आती
0: जी।
3: क्या करना है मुझे आप ये बताइए।
1: हाँ उमेश जी, जैसे आपने बताया कि 44 वर्ष की उम्र आपकी है और आपकी 4 साल पहले विजन चली गई है, रोशनी चली गई है, तो दोनों आंखों की रोशनी चली गई है आपकी?
3: हाँ जी, मेरी जो है दोनों आंखों की रेटिना खत्म हो गई, 0 हो गई है, इसका कोई भी इलाज नहीं आया है इंडिया में इस टाइम।
1: अच्छा, कोई बैकग्राउंड डिजीज रही है आपको इसके अलावा, कोई पहले की कोई बीमारी जो क्रॉनिक चल रही हो?
3: ये मेरे जो है रेटिना जन्म से ही खराब आई थी, और एक और मेरे बीमारी नहीं आई है।
1: अच्छा।
3: और अब आई है एक बीमारी सर्वाइकल की लौटने का।
1: अच्छा, और आपने कहा कि पहले आप फील्ड का काम करते थे और अब आप बिस्तर पे हैं।
3: हाँ जी।
1: और बिस्तर पे क्यों हैं? क्योंकि आपके पास शायद अभी आज की डेट में कोई जॉब नहीं है
0: जी।
3: हाँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता, कुछ कर ही नहीं सकता
1: जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हमारा आउटकम ही नहीं हो पा रहा, हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई बीमारी की वजह से, अब आप 24 घंटे में से मेजर टाइम जो है बिस्तर पर रहते हैं, तो लाजिमी बात है कि नींद का डिस्टरबेंस तो होना ही होना है। और थॉट्स आपको आते होंगे, डेफिनेट है, जो आपने कहा कि आपको विचार आते रहते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा सा जहां पर जा सकें आप आसपास किसी व्यक्ति की सहायता से या खुद भी अगर आप जा सकें तो जरूर निकलिए और जरूर आप प्राणायाम करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और इसमें जो एलोपैथिक का जो आप सेवन कर रहे हैं दवाइयों का, मैं कहूँगा वो ना करें, बजाय उसके कि कोई आप कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम पे आएं जो सेफर है, हमारा होम्योपैथी ट्राई करें, वो अच्छा रहेगा। और आप जरूर अपने को किसी में व्यस्त करने की कोशिश करें, बेशक अगर विजन नहीं है, जो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, बचपन से ब्लाइंड होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी सीख जाते हैं कोई चीजें जो अपने को प्रोफेशनली दे कैन डू समथिंग। तो मैं भी आपको ये राय दूंगा कि कुछ ऐसा कार्य में आप अपने को बिजी करें जो आप कर सकें।
3: तो कोई रास्ता नहीं है।

0: पास, क्या कोई आप बता सकते हैं कि मैं किस लाइन की दर्जन?
1: देखिए ये जो है ना, आप किसी काउंसलर से मिलिए, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होती हैं, वो आपको जरूर बताएंगे कि आपको किस चीज में ट्रेनिंग देने से आप किस फील्ड में जा सकते हैं। तो फोन पे तो ये चीज मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप जरूर मिलें, किसी से परामर्श करें, काउंसलर से मिलें, डॉक्टर से मिलें, वो जरूर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, होप रखें, होपलेसनेस नहीं, ठीक, बिल्कुल आशा रखिए। और अभी तो आपकी और उम्र जानी है, अभी तो 44 वर्ष ही है, भगवान करे आपकी लंबी दीर्घायु रहे। तो आप जरूर अपने को व्यस्त करने की कोशिश करें, जो भी काम आपके एज और स्टेज के हिसाब से हो सकता है, जरूर आप निर्धारित करिए कि क्या कर सकते हैं। तो मैं यही राय दूंगा जी,
2: यानी कि अपने शरीर को शिथिल नहीं होने देना है और एक्टिव, मतलब हर काम के लिए कोशिश करते रहना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं बिजी रहें।
1: बिल्कुल,
2: हो सकता है कि आपको नींद अच्छी आ जाए।
1: जी
2: जी डॉक्टर साहब, वैसे हमारे पास और बहुत कम समय है, लेकिन भी क्योंकि हम काफी देर से बातचीत कर रहे हैं और डिसऑर्डर्स के विषय में, स्लीप एपनिया के विषय में, इंसोम्निया के विषय में और भी बहुत सारी बीमारियों के विषय में बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लौटते हैं अपने श्रोताओं के पास।
1: बिल्कुल।

0: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लौट आए हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और आज हम बातचीत कर रहे हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के विषय में बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं दो दो एक्सपर्ट, होम्योपैथी एक्सपर्ट। और तो हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, आप फोन भी कर रहे हैं। चलिए एक मैसेज लेते हैं और ये मैसेज आया है सपना बी तिवारी जी का और ये कहते हैं कि डॉक्टर जी, मैंने अभी सर्कोपेनिया का जिक्र किया और आई वांटेड टू नो कि अर्ली 50s में भी सर्कोपेनिया हो सकता है। मन को शांत करने के लिए कोई रिलैक्सेशन टेक्निक बता सकते हैं?
1: जी सपना जी, जो आपने बताया कि सर्कोपेनिया एक कंडीशन है जो 50 साल में भी हो सकता है क्या, दिस इज योर क्वेश्चन? तो हाँ, ये देखा जा रहा है कि आजकल जो डिजीज का पैटर्न है थोड़ा चेंज होता जा रहा है। जो पहले हम लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे कि बीमारी उस एज में होती है, वो आज जल्दी उम्र में भी होने लगी है। तो सर्कोपेनिया बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारा मसल जो है लॉस होना शुरू हो जाता है। और कोई अगर मान लीजिए किसी को कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन होने के बाद भी ये मसल लॉस होने की संभावना रहती है। तो इसमें प्रोटीन्स कम होते चले जाते हैं, स्केलेटल इनएक्टिविटी के कारण से भी सार्कोपेनिया होता है। तो अगर हम मूवमेंट नहीं रखते बॉडी की तो उसके कारण से भी मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी अगर 50 साल की उम्र में सार्कोपेनिया डायग्नोज हुआ है या आप सफर कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको चाहिए कि उसके साथ साथ आप प्रोटीन इंक्रीज करें, अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करें, मसल स्ट्रेंथनिंग करें, एक्सरसाइजेस करें। तो ये जरूरी है कि इसको आप टारगेट करें। और आप ये जानना चाह रहे हैं कि मन को शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ओम का उच्चारण, मेडिटेशन, आप अपना ध्यान एक अपने ब्रेथ के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर रखिए। श्वास अंदर बाहर, जैसे हम इंस्पायर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस पर आप फोकस करने की कोशिश करें और मेडिटेशन टेक्निक्स को अपनाएं और वो जरूर है कि आपको जरूर इससे लाभ होगा। सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं अपनी चॉइस का, वो भी आपको एक मेडिटेटिव म्यूजिक की तरफ अगर आप चाहें तो आप उस म्यूजिक को सुनते सुनते आप रिलैक्स कर सकते हैं। और योगा करें, प्राणायाम करें, ये सारी चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी आपको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करने में।
0: डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि जो स्ट्रेस का जो लेवल है खासकर स्टूडेंट्स में बढ़ता चला जा रहा है, वो टेक्निक की वजह से, जो लैपटॉप है, मोबाइल है, इनकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाए डॉक्टर साहब? क्योंकि स्ट्रेस जब बढ़ जाता है, जैसे कि आप अभी जानकारी दे रहे हैं कि जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो नींद की समस्या, स्लीप डिसऑर्डर्स की समस्या हो सकती है डॉक्टर साहब?
1: बिल्कुल। तो स्ट्रेस का जो रीजन है, जैसे हमने आपने बात की है कि आजकल जो हमारे जो ये गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, आज की जो कोविड के टाइम पे हमने देखा कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमारी ऑनलाइन क्लासेस होने लगी थी। तो इसके कारण से बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर चीजें जो हमारी क्लासेस हो रही थी वो ऑनलाइन होने के कारण से बच्चों को दिलवाया गया, लैपटॉप या मोबाइल या जितनी भी ट्रांसमिशंस हो रही थी वो उसके द्वारा हो रही थी। तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे आदत के फॉर्म में बन गई। आज की डेट में मैं भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ, सारी चीजें हमारी व्हाट्सएप पे जाती हैं, चाहे वो सिलेबस है, वो टाइम टेबल है, या टारगेट ओरिएंटेड कुछ भी बच्चों ने काम करना है तो असाइनमेंट्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि बच्चों का टाइम ज्यादा इन चीजों पर

0: टाइम पास हो रहा है एंड दे आर हुक्ड टू इट, नॉट ओनली ऑन एजुकेशनल ग्राउंड्स बट आजकल के टाइम में रील्स ऐसी जैसी चीजें हैं जो एक से एक देखते चले जाते हैं और वो इंटरेस्ट बन जाता है एंड दे लूज ऑन देयर स्लीप. तो रात को अगर मोबाइल में कोई भी बच्चा बैठा हुआ है तो उसके लिए एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है, वो नींद डिस्टर्बेंस हो सकती है. दूसरा, अगर मान लीजिए एग्जाम डेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, वो भी एक एंग्जाइटी का रीजन बनता है. और कुछ कॉर्पोरेट्स में जैसे टारगेट्स होते हैं कि इस दिन तक आपने टारगेट अचीव करना है, वो एक एंग्जाइटी का कारण बनता है, उसके कारण से भी इंसान जो है स्लीप अपनी लूज करता है. तो ये सारी चीजें अपने को, यू हैव टू डिवाइस ए मेथडोलॉजी कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें और मैनेज करें.
1: जी डॉक्टर साहब. जी डॉक्टर साहब. दीपक जी.
2: हाँ सर, देखिए बहुत बढ़िया बात कही कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर का कारण बनते जा रहे हैं और हम इस टेक्निक से दूर भी नहीं हो सकते. मतलब अगर हम चाहें आज की डेट में तब भी हम इससे दूर नहीं हो पा रहे
1: हैं, जीवन का एक हिस्सा
2: बन गया है. लेकिन मैं फिर भी सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको नींद आए उससे आधे घंटे पहले अपने जितने भी मोबाइल्स वाईफाई हैं स्विच ऑफ करिए और जब आप उठें उसके सिर्फ आधे घंटे तक आप किसी भी गैजेट का इस्तेमाल ना करें. देखिए आपके अपने आप ही नींद का पैटर्न जो है वो ठीक होने लग जाएगा सिर्फ आधा घंटा पहले और सिर्फ आधा घंटा बाद में. मैं देखता हूँ बहुत सारे तो लोग इतने पहने के जो रात को भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो उसको भी देखने लगते हैं. तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्लीप डिसऑर्डर में तो जरूर आएंगे.
1: जी डॉक्टर साहब, जो होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है, जैसे कि आपने मॉडेलिटीज की बात की थी, तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है?
0: देखिए मॉडेलिटीज तो एक हिस्सा है हमारे सिम्टम्स को जानने का. अगर कोई केस आता है हमारे पास तो हम पूरा उसको असेसमेंट करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसका माइंड, उसका बिहेवियर, उसका उसके साथ जुड़े हुए उसके फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं, उसका पूरा एक अंडरस्टैंडिंग की जाती है हम लोग उसकी केस टेकिंग के अंदर, जमीन से आसमान तक, मतलब जिसको कहते हैं पूरा थॉरो एक इन्वेस्टिगेट करते हैं. और उसके अंदर कोई भी सिम्टम है, कोई भी लक्षण है, चाहे वो स्लीप डिसऑर्डर का ही है, तो उसके साथ जुड़ी हुई क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या मोडेलिटीज हो सकती हैं. जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ है, अगर नींद नहीं आ रही तो उसका कारण क्या है, अगर लैपटॉप या मोबाइल का कारण है तो नेचुरली वी हैव टू गाइड देम कि भाई आप उसको स्विच ऑफ करिए टाइमली. और अगर कोई कारण पेन का है तो पेन को मैनेजमेंट करना जरूरी है. अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से नींद का डिस्टर्बेंस है तो हमें उनको बताना है कि आप जरूर कंसल्ट करें. बाईपैप या सीपैप लगाया जाता है और एक पीएचडी स्टडी होती है, स्लीप स्टडी जैसे हमने जिक्र किया, पॉलीसोमनोग्राफी स्टडी होती है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस व्यक्ति को कहां दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं. गाइडेंस के साथ साथ ट्रीटमेंट भी दिया जाता है. तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझना कि स्लीप डिसऑर्डर है या कोई भी बीमारी है तो उसका कारण क्या है. और होम्योपैथी में ये चीजें हम माइन्यूटली अंडरस्टैंड करते हैं और उसका टोटलिस्टिक व्यू लेते हुए, सो मच सो उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और हमारा एक कंसेप्ट है मियाजम्स के ऊपर, तो वो भी हम समझते हैं कि भाई क्या कारण है, रूट कॉज क्या है, और वो सारे मद्देनजर रखते हुए हम एक दवा का चयन करते हैं और वो पेशेंट को दी जाती है और उससे सक्सेस होती है.
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है खानपान पे बड़ा महत्व दिया जाता है और देना भी चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: तो ये जो स्लीप डिसऑर्डर है ये किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं खानपान?
2: देखिये जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कैफीन का, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें कैफीन या उससे रिलेटेड, उससे ऐसा नहीं कि सिर्फ कैफीन ही लिखा हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो हमारे खाने में यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से स्लीप डिस्टरबेंस होते हैं. आपका रात का बहुत ज्यादा खाना खाना भी बहुत नींद को डिस्टर्ब कर सकता है. अगर आप हिस्ट्रीज उठाकर देखेंगे या अपने आप को भी देखेंगे तो भूखे पेट नींद अच्छी आती है. जो भूखा पेट होता है वो थोड़ा आराम चाहता है और वो सोना चाहता है. तो जितना ज्यादा खाएंगे उतनी नींद में भी डिस्टरबेंस आपकी हो सकती है.
1: जी, यानी कि सोच समझ करके संतुलित मात्रा में खाना चाहिए. तो डॉक्टर साहब, रात में और दिन में खाने में कुछ फर्क तो होना ही चाहिए?
2: हाँ सर, बिल्कुल होना चाहिए. और इसके लिए फेमस है कि आप ब्रेकफास्ट राजाओं की तरह करो और लंच जो है एक मिडिल मैन की तरह, और रात को जग फुगाना है वो एक
0: फकीर
2: की तरह. तो यही एक रूल होना चाहिए और हमें इंसान बने रहना चाहिए और इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए.
0: जी, कैफीन के साथ साथ सर एक छोटी सी बात और मैं कहूंगा, अल्कोहल, ये चीज रह गई. जो अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति हैं उनका भी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है. शुरू शुरू में तो नींद ज्यादा आती है एक टाइम पर, लेकिन जब एडिक्शन में चला जाता है तो वो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि नींद आना ही बंद हो जाता है. चाहे वो एक पैक पिए, दो पैक पिए, तीन पैक पिए, तो नींद डिस्टर्बेंस होती है. तो इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए.
1: तो श्रोता मित्र, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नींद, अच्छी नींद जो है एक स्वस्थ संतुलित जीवन की वो आधारशिला है. यदि आपको लंबे समय से नींद से जुड़ी कोई भी समस्या है तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं और चिकित्सक के यानी कि डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही दवाई लें, खान पान करें या फिर सोने की जो शैली है या फिर जीवन शैली है उसे रखें. डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और स्लीप डिसऑर्डर्स के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी, श्रोताओं के उत्तर भी आपने दिए, आपने वक्त निकाला. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.

0: नमस्कार सभी श्रोताओं का नमस्कार और आपका भी नमस्कार।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं। लीजिए पेश हैं FM रेनबो मुख्य समाचार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स देशों से लचीली नवाचार आधारित और टिकाऊ शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले एक प्रमुख संगठन ने पाकिस्तान से विदेशी मीडिया सुविधा दिशा निर्देश 2026 वापस लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा को देखते हुए 4 अतिरिक्त डॉपलर मौसम रडार DWR स्थापित करके मौसम चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। और खेलों में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। और अमेरिका के यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स Under-20 चैंपियनशिप में आज भारत के मोहम्मद अशफाक ने Under-20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। TGIF इसका हम इसलिए आपके सामने बात कर रहे हैं क्योंकि आज है शुक्रवार और शुक्रवार की शाम इस समय आपके पास हम लेके आते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसे हम सब प्यार से कहते हैं अल्फा जेन। यहाँ बात होती है जनरेशन अल्फा की। ये कार्यक्रम जो है उनकी जो आज की अल्फा जेनरेशन है उनकी सोच को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश करता है। और हम जानते हैं अगर आपने इस तरह की बातों में आप यकीन नहीं रखते तो भी आप चाहे ना चाहे जनरेशन के गैप्स आते जाते हैं। एक ज़माना था मुख्यतः 1946 से 64 में जो बच्चे पैदा हुए उन्हें बेबी बूमर्स कहा गया। ये वर्ल्ड ओवर मैं आपको बात बता रहा हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद जनरेशन एक्स आई 1965 से 1980, तो आप देख लीजिए आपका जन्म कौन से वर्ष में हुआ है, आप कौन सी जनरेशन से हैं। फिर मिलीनियल्स यानी जेन वाई 1981 से 1996, लगभग 2-4 साल ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जनरेशन जी 1997 से 2012 और उसके बाद 2010 से 2024 एंड रनिंग आप कह सकते हैं जनरेशन अल्फा। तो 2010 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं और बाई चांस हमारी आप आवाज़ सुन रहे हैं तो फिर ये कार्यक्रम स्पेशली आप लोगों के लिए है क्योंकि आप ही तो हैं जनरेशन अल्फा। ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ और इस कार्यक्रम में प्यारे प्यारे गीत तो होंगे ही। मैं हूँ आपके साथ आज की शाम रंजन, लेकिन थोड़ा सा हम विलंब से शुरू करेंगे बाकी बातचीत क्योंकि एग्जैक्ट 4:05 से हमारा एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है थोड़ी ही देर का, तो उसका भी आनंद लीजिएगा। लम्हे कार्यक्रम आपके लिए हम लेके आएंगे इन जस्ट लिल वाइल, कुछ और लम्हों के बाद। अरे ये तो शेर हो गया, लम्हे कार्यक्रम आपके लिए कुछ और लम्हों के बाद। तो फिर सुनिए लम्हे, इसका आनंद लीजिए और मैं लौटता हूँ थोड़ी देर में।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। आंखों के हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, इसके लिए हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए। हेल्दी डाइट में आप हरी सब्जियां, पालक, फल और ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। आजकल फोन के ज्यादा इस्तेमाल और लैपटॉप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करने की वजह से आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इससे नजरों को कमजोर होने की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में कई बार धुंधला दिखने की दिक्कत भी हो जाती है, जिससे राहत पाने के लिए लोग चश्मा लगा लेते हैं। लेकिन चश्मा लगाना कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है, इसके लिए सही इलाज की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ घरेलू उपायों के जरिए भी आप आंखों को कमजोर होने और धुंधला दिखने की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में आपके आरजे चेतन से इस लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। नंगे पांव घास पर टहलना। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि हरी घास पर चलना आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दरअसल सुबह सुबह के समय हरी घास पर ओस की बूंद होती है। ऐसे में यदि ओस से भीगा घास पर चला जाए तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ने में फायदा मिलता है। संतुलित आहार, दैट इज बैलेंस्ड डाइट। आंखों को हेल्थी रखने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। गाजर, कैरेट। आंखों के लिए गाजर का सेवन भी बहुत फायदेमंद होती है। गाजर में विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन जैसी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। गाजर को सब्जी या सैलेड के रूप में खाया जा सकता है। आंवला में विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोरस

ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आंखों के साथ साथ बालों के लिए भी लाभकारी होते हैं। इसके लिए आप आंवले के मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले का पाउडर और जूस का सेवन कर सकते हैं। मुलेती, इम्यूनिटी बढ़ाने में नहीं कई समस्याओं को दूर करने में कारगर मुलेठी। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए काली मिर्च और भूरी मिर्च भी बहुत फायदेमंद होती है। हालांकि इनका सेवन करना आसान नहीं होता, इसके लिए आप मिर्ची का पाउडर बनाकर शहद और घी के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं। आपकी आंखें आपके चेहरे की सबसे आकर्षक विशेषता है। वे केवल एक दृश्य अंग जो आपको दुनिया को देखने में मदद करता है से अधिक है। वे मुस्कुराती है, हंसती है, रोती है। जब शब्द विफल होते हैं तो हमारी आंखें हमारे भावनाओं और विचारों को खूबसूरती से व्यक्त करती है। इसीलिए अपनी दृष्टि की रक्षा करना आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अपनी आंखों के बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना वे अपने चेहरे पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा हमारी जोरदार जीवन शैली, विषाक्त वातावरण और अनुचित आहार से चीजें बदतर होती है। इन सभी चीजों की वजह से झुरिया, अंधेरे घेरे, चेहरे की सूजन आदि आजकल आम समस्या है। इसके अलावा उम्र के साथ दृष्टि हानि का जोखिम भी बढ़ता है। आपकी त्वचा और चेहरे की तरह आपकी आंखों की देखभाल करना यह सुनिश्चित करेगा कि आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखे और महसूस करें। ये उम्र से संबंधित बीमारियों जैसे कि चक्केदार अधापतन, मोतियाबिंद, मधुमेह संबंधी वृजनोपति, मोतियाबिंद आदि से रक्षा में मदद करेगा। आपकी दृष्टि की रक्षा करने का और अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आप इन सरल चरणों का पालन करें जो मैं आपको बोलने वाला हूं इस लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। उपयुक्त आहार, एक अच्छे नेत्र देखभाल सही आहार से शुरू होती है। विटामिन सी और ई, जस्ता, लूटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध आहार आपके आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है और आयु से संबंधी आंखों की समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है। अपने नियमित आहार में गाजर, चुकंदर, संतरे और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे खाद्य पदार्थ को शामिल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में समृद्ध भोजन जैसे कि सैमन और ट्यूना खतरनाक धब्बेदार अधापतन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मोतियाबिंद के जोखिम को कम करते हैं। धूप का चश्मा रेटिना क्षति को रोकता है। वे झुर्रियों और त्वचा के कैंसर को रोकने के लिए पलक की नाजुक त्वचा की रक्षा भी करते हैं। वे आंख से संबंधित समस्याएं जैसे मोतियाबिंद, पिंगिक्यूला और चक्केदार अधापतन के जोखिम को कम करते हैं। धूम्रपान छोड़े, तंबाकू, धूम्रपान सीधे नेत्र समस्याएं सहित कई प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से जुड़ा हुआ है। धूम्रपान करने वाले मोतियाबिंद और धब्बेदार अधापतन के विकास का उच्च जोखिम भी होता है। इससे ऑप्टिक तंत्रिका क्षति हो सकती है जिससे अंधापन भी हो सकता है। आपकी आंखों को भी आपके जैसे आराम की जरूरत है। कंप्यूटर या फोन स्क्रीन पर बहुत लंबे समय तक घूरने जैसे जोरदार गतिविधि से बचे या कम करें। ये आपके आंखों को तनाव पैदा कर सकते हैं और धुंधली दृष्टि, शुष्क आंखें, सर दर्द आदि जैसे समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप घरेलू उपचार जैसे आंखों पर ककड़ी के स्लाइसेस रखना, विश्राम लेना, गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित आंखों की जांच करवाएं। ये सुनिश्चित करने के अलावा कि चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस के लिए आपका दावा का 50 अध्यातन है। नेत्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित रूप से आंखों की जांच आवश्यक करवाएं। मोतियाबिंद और MMD जैसी गंभीर नेत्र परिस्थितियों में से अधिकांश का इलाज आसानी से और सफलतापूर्वक किया जा सकता है अगर निदान और इलाज जल्दी से किया जाता है। यदि बिना इलाज छोड़ा जाता है

इन रोगों से गंभीर दृष्टि हानि और अंधापन हो सकता है। इसके अलावा आंख की पुतली को फैलने सहित एक व्यापक आंखों की परीक्षा, आंखों के रोग जो अक्सर कोई चेतावनी नहीं देते हैं, जैसे ग्लॉकोमा और उम्र से संबंधित धब्बेदार अधापतन का पता लगाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी आई केयर टिप्स फॉर यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अल्फा जेन। इट्स रियली सेंट्रिक जेनरेशन अल्फा। हे यू गॉट द रिज। जी हाँ, यही तो जनरेशन है जिसके पास है चार्म, और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो रेज। इस तरह के स्लैंग्स यूज करती है अल्पचन। यूं ही जुड़ रहे हैं आकाशवाणी के संग ऑन स्टेशन रेनबो।

Yeah, चाहे डांटे डैडी या मम्मी, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आंटी जी भी डांट दें तो एल्फाजन वो नहीं है जो उस चीज को बड़े आराम से ले ले, क्योंकि किसी भी शब्द को पूरा कहना इनकी फितरत में नहीं है, और बहुत से शब्द हैं जिनको स्लैंग में ये लोग यूज करते हैं। ब्रा मतलब रियली सीरियसली, जैसे एक शब्द था ड, यानी जो व्यक्ति आपकी बात सुनता है और समझ नहीं पाता है, या फिर आप दोस्तों में हलचल जब बात होती है, एंड स्पेशली क्योंकि इंटरनेट

से इतना ज्यादा ये लोग घिरे रहते हैं तो पूरा लिखने में भी इन्हें आलस आता है। ऐसे ही दिलचस्प ट्रेट्स के साथ पैदा होते हैं जनरेशन अल्फा।

जी हाँ, गेट अप एंड डांस, आपका मन कर रहा है इस गाने की धुन पे नाचने का, थिरकने का, तो अपने आप को रोकिए मत। और ऑफ कोर्स अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को ठोकिए मत और ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाइए। मतलब डिपेंड करता है आप कहाँ हो, इस तरह घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं रास्ते में हो, तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अल्फा जेन। मैं हूँ आपके साथ रंजन। देखिए, अगर हम मुझे आपसे कहना हो कि विजेता किसे कहते हैं, तो आई वुड से विनर इन इंग्लिश। लेकिन अगर ये बच्चे जब आपस में बात करते हैं, अल्फा जनरेशन स्पेशली, तो वो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू आई डबल एन ई आर, दे जस्ट मोस्टली से डब्ल्यू, मतलब इतने से काम चल जाता है। तो अगर मैं उनकी भाषा में कुछ एक शब्द यूज करके दो चार पंक्तियां आपको सुनाऊं, तो जरा गौर फरमाइएगा। अगर लोग तुम्हें

मिड कहें, यानी एज इन मिडियोकर, यू नो। तो मुस्कुरा कर कहना, रुको अभी मेरी कहानी बाकी है। हर ठोकर एक सबक, हर नाकामी एक नई शुरुआत, जो गिर कर फिर उठ जाए वही बनाता है अपनी पहचान। कोई बोले तू तो कुक्ड है, कुक्ड है के मतलब बस हो गया, आप काम खत्म। आप जो है परेशान हो गए हैं सिचुएशन से, ट्रबल में है, एग्जॉस्टेड हैं। तो कोई कहे कि तू कुक्ड है तो जवाब दो, नो कैप, अभी तो मेरा बेस्ट आना बाकी है। तो इस तरह की कहानी है। अब इस तरह की बातचीत आमतौर पर होती है। तो जनरेशन ऐसी है कि दिन में सो जाए और रात में जागती है और दिन भर सोती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना उनको घेर लिया है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि दिन कब और कब शाम होती है।

ਰਿਹਾ ਕੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। कई दफा जो ये लिरिक्स होते हैं ये कंप्यूटर भी उसके साथ साथ अपना साथ दे हैव टीम्ड अप द लिरिक्स एंड द कंप्यूटर हैव टीम्ड अप। दोनों के दोनों थोड़ा अटक रहे थे गाने में। आई कुड अंडरस्टैंड। मैं कभी क्या हो गया कंप्यूटर महाराज, इसमें अपना कोई फॉल्ट नहीं है। मैं तो दूर से बिल्कुल आपको निहार रहा था। आई हैव स्विच टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। लेट्स सी, दोनों वैसे भाई हैं और दोनों ने काफी इज्जत कमाई है, तो कंप्यूटर महाराज अब आपकी इज्जत आपके हाथ में, अपने को कोई नहीं घाई है, मतलब जल्दबाजी नहीं है। अरे ये शब्द हमने उठा लिया कहीं से। खैर आप ये तो जानते ही हैं, कार्यक्रम बड़ा खास है जिसे कहते हैं अल्फा जन। और ये बात तो है कि ये पूरा अगस्त का महीना ही बड़ा खास है, और ख़ास है दिवस स्वतंत्रता का 15 अगस्त, जो बहुत पास है। बस 7-8 दिन में हम 15 अगस्त का अपना त्यौहार मनाने जा रहे हैं, और अपने सारे वीर सैनिक जवान जिन्होंने भी हमारी स्वतंत्रता को हमें दिलाया है, इसे हमने कमाया है, उनके लिए हम कहते हैं हमारी तरफ से सदैव सदैव सलाम।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
4: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
3: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
4: हैं? इतनी जल्दी?
3: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
7: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
8: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
7: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
8: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
9: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और कार्यक्रम है अल्फा जन और मैं हूं आपके साथ रंजन। और मैं यहां ये कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए जो अल्फा जन है उसको कुछ हद तक इंटरनेट की दुनिया से परिचित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि उसके पीछे एक दो कारण ये भी हैं कि हम जैसे ही छोटे बच्चे होते हैं उन्हें फ़ोन दे देते दे हैं ताकि जब वो खाना ना खाएं, या बहुत ही छोटे बच्चे तो उनकी डे वन से ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो इंटरनेट के बिना या फिर फ़ोन्स के बिना बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अगर आप दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो 9 अगस्त से थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेके चलिएगा 16 अगस्त तक, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे की तैयारियों की वजह से चेकिंग जो है ज्यादा सख्त होगी, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा रश, थोड़ी लाइन का सामना करना पड़े। और हम बात कर रहे हैं अल्फा जेन की, तो अल्फा जेन देखिए जो देश का हमारा भविष्य है वो अल्फा जेन है, आज की जो नवीनतम पीढ़ी है अगर हम कहें। लेकिन इन्हें ऐसी बातें सिखाने में, समझाने में हमारे स्कूल जो हैं वो भी कई दफ़ा कुछ हद पार कर जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स में छोटी बच्ची अल्फा जैन को एक दफ़ा मैंने देखा, मैं उनके घर पे था और उनके गार्डन के अंदर मोगरे की बड़ी प्यारी फूल खिले हुए थे, उसकी कलियां थी। तो मैंने कहा बेटा तोड़ लो, एक बड़ी अच्छी खुशबू होती है, इसे सूंघो। तो कह रही नहीं, टीचर ने मना किया है, एनवायरनमेंट को बचाना है, पेड़ नहीं काटना है, पौधे नहीं काटने। तो मैंने कहा यार ये क्या सिखाया जा रहा है स्कूलों में, मैं फूल तोड़ने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ, जब आपके पौधे पे घर में गमले में अगर फूल आते हैं, तो अगर 10 फूल आए हैं, 5 फूल आए हैं, अगर आप उसको नहीं तोड़ते तो वो मुरझा जाते हैं एक दो दिन में। फिर उसको जो पौधा है वो बीज बनाने की तरफ शक्ति लगाता है और फूल देना कम कर देता है। तो यानी फूल तोड़ने पे वो 10 से 20 फूल आपको देगा, यानी बढ़ जाएगी पैदावार। तो दिस इज फैक्ट, मैंने कही क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आई सेड ये नहीं, आप फूल तोड़ें एंड गिव इट टू समबडी यू लव, अपने पेरेंट्स को दीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए, अर्पित कीजिए। सो जनरेशन गैप्स एंड जनरेशन को क्या सिखाया जाए, किस तरह से बताया जाए, इसमें भी अपनी एक कला है। और ऐसे में कई दफा टीचर्स की जो कला है वो कुछ ज्यादा ठोस नहीं पहुंच रही या नहीं पहुंच पाती है। और अल्फा जेन के साथ स्पेशली ये भी कहा जाता है कि इनका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम रहता है, इन्हें सब कुछ चाहिए फास्ट, सुपर फास्ट, चाहे वो खाना हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो। जी हाँ, दिल्ली शहर में अगर आप क्लब ढूंढने जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्लब्स हैं, बहुत कमी नहीं है, यहाँ बहुत जगह आप पार्टी भी कर सकते हैं, आफ्टर पार्टी भी कर सकते हैं। और वैसे हमारे लिए तो चाय पकौड़ों की पार्टी का मौसम बना हुआ है, बारिश का मौसम है, एंजॉय कीजिए शाम का समय। आप सुन रहे हैं अल्फा जेन आकाशवाणी रेनबो पर।

लगाओ, ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये ये ये कर...

आप सुन रहे हैं, रादर अब कहना पड़ेगा आप सुन रहे थे अल्फा जैन आकाशवाणी रेनबो पर। मैं रहा आपके साथ रंजन। अब मेरे जाने का समय हो गया क्योंकि घड़ी बता रही है कि 5 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी पर समाचार और उसके बाद आपके साथ रहेंगे निखिल वर्मा विद द प्रोग्राम सिटी लाइट्स। हमारे प्यारे शहर दिल्ली की जो भी हलचल है, क्या कुछ हो रहा है खास, दिस एंड लॉट्स मोर, कहां पर लगे हैं आर्ट एग्जीबिशंस और पल्स ऑफ द सिटी आपको बताएंगे। बस यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो के संग। अब आप चाहे किसी भी जनरेशन को करते हो बिलोंग, खाते हो बर्गर पिज्जा या फिर उड़ाते हो पतंग, इस आकाशवाणी की एयरवेव्स पर ध्वनि तरंगों पर मनोरंजन की पतंग हमेशा आसमान में रहती है। ठीक बाय बाय, 15 अगस्त की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगा थोड़े दिनों में। ठीक है, बाय बाय।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। संसद ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स देशों से लचीली, नवाचार आधारित और टिकाऊ शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले एक प्रमुख संगठन ने पाकिस्तान से विदेशी मीडिया सुविधा दिशा निर्देशिका 2026 वापस लेने की मांग की। थाईलैंड में आज एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 8 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। और खेलों में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमरीका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, और बहुत दिल से आपका स्वागत करता हूं। मैं कौन, आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा लेकर आ गया हूं रेनबो की इन सतरंगी पटरियों पर, अपनी अतरंगी दोस्ती, अपनी अतरंगी यारी, और बहुत सारा म्यूजिक, और साथ ही साथ इस शो की स्पेशल बात यानी कि सिटी की अपडेट्स आपको देने आया हूँ, क्योंकि शो का नाम है सिटी लाइट, जिसमें हम करेंगे वेदर की बात, ट्रैफिक की बात, और क्या कुछ हो रहा है दिल्ली NCR में, वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह शो का आगाज एक प्यारे से गाने के साथ।

धीरे धीरे करके मॉनसून भी, सावन भी अपने चरम पर आ गया है। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो आज जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया, और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। और बारिश जो है वो झमाझम बारिश हो रही है दिल्ली के कई इलाकों में जो है, कहीं जगह तेज भी हो रही है, कहीं जगह हल्की भी हो रही है। तो आपको बस इतना ही बताऊंगा कि बारिश किस मौसम में अपना ध्यान रखिएगा, और आपको समय समय पर अपडेट्स हम लोग देते ही रहते हैं, और आप न्यूज़ सुनते रहिए आकाशवाणी पर, हर घंटे आपके लिए भी न्यूज़ लेके आते हैं। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी आपको जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे। बस वेदर जो है अगले आने वाले कुछ दिनों तक भी ऐसा ही बना रहने वाला है, और थोड़े देर पहले ही जो है काफ़ी अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। तो जस्ट कीप अ टैप ऑन द न्यूज़ और अपना ध्यान रखिएगा, घूमने फिरने का प्लान भी टाइम लेकर निकालिएगा, क्योंकि बहुत जगह जो है ना पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आपके जो प्लान्स है ना उसमें जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू आ सकता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस मौसम में सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ कल की, तो कल भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की चांसेस है, और संडे का जो दिन है आपका छुट्टी वाला दिन है, उसमें भी छिटपुट जो गरज है उसके साथ बरसात का जो माहौल है वो बना हुआ है। तो भाई ऐसे में ध्यान रखिए अपना और अपनों का, और सुनते रहिए आकाशवाणी, क्योंकि आपके लिए जो है ना हम समय समय पर प्यारे प्यारे गाने अपडेट्स लेके आते रहेंगे। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: दोस्तों, आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन अनगिनत वीरों के सपनों, त्याग और बलिदान की अमानत है जिनकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो आइए, स्वतंत्रता दिवस सिर्फ तिरंगा फहराए नहीं बल्कि उसके हर रंग का सम्मान भी करे। केसरिया हमें साहस और त्याग की प्रेरणा देता है, सफेद सच्चाई, शांति और ईमानदारी का संदेश देता है, हरा रंग उम्मीद, समृद्धि और विकास का प्रतीक है, और अशोक चक्र हमें याद दिलाता है कि देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। अगर आप इस बार हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बन रहे हैं तो राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ फहराइए और जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का पालन है उसको जरूर पालन कीजिए। ध्यान रहे, तिरंगा कभी जमीन को न छुए, उसका अनादर ना हो, और अभियान के बाद भी अगर आप उसको सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखें तो बहुत अच्छा होगा। तो आइए, इस 15 अगस्त अपने घर, अपनी बालकनी, अपनी दुकान और सबसे बढ़कर अपने दिल में तिरंगे को जरूर फहराइए, क्योंकि जब हर घर तिरंगा लहराता है ना तो सिर्फ वो एक झंडा नहीं रहता, वो पूरे देश का आत्मविश्वास लहराता है। आइए पूरे गर्व से कहें, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
6: वेलकम बैक टू डिलाइट्स में आप है मेरे साथ, मैं कौन, आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। और आपको एक खबर बताना चाहता हूं कि जो सेशन 2027-28 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है वो 7 जुलाई से शुरू हो गई थी और आज यानी कि 7 अगस्त उसका लास्ट डे है। तो अगर आपने अपने बच्चों के लिए इसमें अप्लाई नहीं किया है या आप अप्लाई करना चाहते थे तो आज इसका लास्ट डे है और जल्द से जल्द आप कर सकते हैं क्योंकि अभी भी समय बाकी है। और छात्र की जो इसमें आयु सीमा दी है उसकी डिटेल्स और ऑब्वियसली कक्षा 5 का उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है और छात्र उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहां से वो विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ज़रूरी दस्तावेज इसमें जो चाहिए वो है आधार कार्ड छात्र का, कक्षा 5 की मार्कशीट, माता पिता के हस्ताक्षर, उनकी प्रवास उनके निवास का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी। आपको ये बता दें कि इसमें आवेदन करने की कोई फीस नहीं है। तो आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आज इसका लास्ट डे है, अगर आपसे मिस हो गया है तो भाई हम किस लिए आपके पास, हम दे देना आपको हर अपडेट, तो बस ये अपडेट भी आपको हमने मिस नहीं होने दी। तो बिल्कुल जाइए और आवेदन कर दीजिए। इसकी वेबसाइट है navoday.gov.in, navoday.gov.in पर जाकर इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल

ऑल राइट टी, और मौसम ही ऐसा है कि बस बैठे बिठाए जन्नत दिख रही है, बट लेकिन बाहर जो लोग चल रहे हैं उनके लिए मुसीबतें बड़ी हुई हैं। और आपकी और मुसीबतें ना बड़ी तो इसलिए हम आपको ट्रैफिक का अपडेट भी देते चलते हैं कि इस समय ट्रैफिक का क्या हाल है। वैसे कि मतलब जितनी बारिश हो रही है उस हिसाब से आप सभी को पता ही होगा कि

ट्रैफिक का क्या हाल हो सकता है, ऊपर से जब पीक टाइम है 5 बजे जब सब लोग अपने घरों की तरफ रुक करते हैं, तो उस समय क्या ट्रैफिक होगा। बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि सरदार पटेल मार्ग पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु पर भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, और पंचकुया मार्ग पर ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है। तो अगर आप इन रूट से जा रहे हैं तो अपने प्लान्स के को उसी हिसाब से बनाइए जहाँ आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर घर से निकले। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं, और कांवड़ यात्रा के चलते हुए भी जो ट्रैफिक है वो दिल्ली नोएडा गाज़ियाबाद अक्रॉस दिल्ली NCR जो है वो हैवी है, और एक्सपेक्टेड है कि ये 11 अगस्त या 12 अगस्त तक ऐसे ही रहने वाला है। तो जो है आप डाइवर्जन रूट्स जो हैं, नए नए रूट्स जो बने हैं आपके लिए, ऑल्टरनेट रूट्स जो बने हुए हैं उनके हिसाब से ही कहीं आइएगा और जाइएगा, अपना समय लेकर घर से निकलिएगा।

बहुत सारा जो है जोश खरोश के साथ हम लोग अपनी सेलिब्रेशंस करेंगे, लेकिन सेलिब्रेशंस का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ यू नो घूमना फिरना। आपने उस दिन आप परेड देखिए, उस दिन आप याद कीजिए उनको जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। और उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपनी जो ड्यूटी है उसको ढंग से निभाएं तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। साथ ही साथ ड्यूटी से मुझे याद आया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के चलते हुए 9 अगस्त रविवार से CISF द्वारा सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा जांच और कड़ी कर दी जाएगी। तो इसके कारण जो है 16 अगस्त रविवार तक कुछ मेट्रो स्टेशंस पर विशेष रूप से व्यस्त समय यानी कि पीक आवर्स के दौरान लंबी लंबी कतारें लग सकती है। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वो उसी के अनुसार अपनी यात्रा के प्लान्स बनाए और आगे आने वाले दिनों में कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर अपने घरों से निकले। और ये अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अपना समय और टाइम और एनर्जी बचा सके। फिलहाल आपके लिए एक देशभक्ति का बहुत ही प्यारा गीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक।

बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, जिसमें मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आर्ज निखिल वर्मा, और आपको दे रहा हूँ दिल्ली की अपडेट्स। और उसी अपडेट में एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में और जानकर, वो ये है कि दिल्ली को और भी हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 4 साल की जो मेगा योजना है, एक प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी मिल गई है, और इसके तहत दिल्ली के जो रिज क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ 1 करोड़ से भी अधिक वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और 4 साल की बात है, और इसमें बोला गया है कि भाई 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे, और दिल्ली की जो जान है, दिल्ली के जो लंग्स कहते हैं ना उसे, रिज जो एरिया है उसको कानूनी कवच और सुरक्षा देने की योजना पर भी काम शुरू हो गया। और इससे क्या होगा कि लक्ष्य इसका यही है कि जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है हर साल, उसको कम करना है और पर्यावरण में सुधार करना भी है। और अगर आपको भी मौका मिले ना अपने आसपास पेड़ लगाने का, ये बेस्ट टाइम है, इतनी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा सब कुछ है, तो ज़रूर लगाइए, हरा भरा अपने घर के आसपास भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा ना। और मतलब अगर आपके पास आसपास हरियाली होगी, पौधे होंगे, पेड़ होंगे, मतलब ये तो अपना काम जो है वो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप भी अपने आसपास हरियाली देखना चाहते हैं, दिल को सुकून और अच्छी हवा खाना चाहते हैं, तो चाहे अपनी बालकनी में एक पौधा ज़रूर लगाइए। आजकल जो बहुत ग्रीनरी का टाइम है ना, वो अगले साल जब बारिशें आएंगी, और हो तो वैसे अभी भी जाएगा बड़ा, लेकिन अगले साल आपको लगेगा कि एक मेमोरी भी रहेगी आपकी कि यार दिल्ली का मौसम अच्छा था और उस दौरान मैंने ये पेड़ लगाया था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, सुनते रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट्स दूंगा आपको इस प्यारे से गाने के बाद।

ऑल राइट और अब आपको अपडेट दे देते हैं कि भाई दो न्यू मेट्रो की जो है रूट्स जो हैं वो बनने वाले हैं, और वो नोएडा में बनने वाले हैं, जिससे नोएडा और दिल्ली की कनेक्टिविटी और भी स्ट्रांगर हो जाएगी। एक तो बनेगा आपका बोटानिकल गार्डन से सेक्टर 142, जिसकी कुल लंबाई 11.56 किलोमीटर रहेगी, और जो दूसरा मेट्रो रूट रहेगा वो आपका ग्रेटर नोएडा से बोर्ड की तरफ रहेगा, जो कि 2.5 किलोमीटर का है। लेकिन उससे होगा ये कि और भी कनेक्शंस जुड़ेंगे, और ये भी बता देता हूँ आपको कि ये नोएडा ग्रेनो में जो मेट्रो लाइंस हैं और इनका इसका जो प्रबंधन है वो नोएडा मेट्रो जो है वो सुपरवाइज करेगा, और दोनों रूटों पे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण होगा। सेक्टर 142 से सेक्टर 38A बोटैनिकल गार्डन तक मेट्रो की जो लंबाई है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और उसमें 8 मेट्रो स्टेशन शामिल होने वाले हैं, जिसमें मेट्रो स्टेशनर्स में जो मेन है वो है बोटैनिकल गार्डन, सेक्टर 44 नोएडा मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर 94, सेक्टर 97, सेक्टर 105, सेक्टर 108, सेक्टर 93 और पंचशील बालक इंटर कॉलेज। और वहीं पे अगर मैं दूसरी मेट्रो लाइन की बात करूं, जो हम बात कर रहे थे ग्रेटर नोएडा से बोड़ा के रेलवे स्टेशन के लिए भी नई मेट्रो लाइन बनाई जा रही है, और एक स्टेशन इसमें जनपथ होगा और दूसरा बोड़ा की होगा। और इन दोनों मेट्रो के आने से दिल्ली से जो ब्लू लाइन और मेजेंटा लाइन है उसमें आने वाले जो मुसाफिर हैं वो सीधे सेक्टर 142 लाइन को पकड़कर ग्रेटर नोएडा पहुंच सकते हैं। अभी इसमें जो बताया गया है कि टाइम जो लगने वाला है वो अभी फिलहाल 3 ईयर्स का जो है वो लग सकता है, बट काम शुरू हुआ है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, और बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होने वाली है जिन लोगों को ग्रेटर नोएडा जाना होता है दिल्ली से उनके लिए। प्यारा सा गाना, गाने के बाद और भी करेंगे आपसे बातें। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, मैं कौन, आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा।

0: जी हाँ, वीकेंड है और आप भी ताके झाक कर ही कहीं जाइएगा। अभी ट्रैफिक की अपडेट आपको लेटेस्ट दे देता हूँ। बदरपुर मेहरौली रूट पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और जीरी बिरला मार्ग पर भी ट्रैफिक लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलता हूँ कि जो दिल्ली के कालका जी फ्लाईओवर का काम है, दक्षिण दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर जो कालका जी फ्लाईओवर है, उसकी दूसरी लेन का निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और ओखला मेट्रो स्टेशन के सामने आउटर रिंग रोड पर बैरिकेडिंग की गई है और पिलर के लिए जो है वो वहाँ पर खुदाई की जा रही है। और करीब 30 फीट लंबे और 20 फीट चौड़ाई के जो बैरिकेड लगे हुए हैं, उसके कारण सड़क जो है वो संकरी हो गई है और इसके चलते अब नेहरू प्लेस से मोदी मिलाने जाने वाली जो लेन है उस पर जाम भी लग रहा है। तो आप भी अगर उस रूट से जा रहे हैं तो अपना टाइम से जाइएगा और ऑफिस के टाइम में भी एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाइएगा तो आपको जो है सुविधा होगी। और फिलहाल मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मिलूँगा आपसे। वैसे समय भी हो गया है लेकिन गाने तो है ना आपके लिए बहुत सारे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मिलते हैं आपसे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं कौन आपका अपना म्यूजिकल हम सफर, आरजे निखिल वर्मा।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी नहीं, हम आपको बिल्कुल खोने नहीं देंगे, रहेंगे आपके साथ 365 डेज राउंड द क्लॉक। और वक्त हो गया मुझे आपसे विदा लेने का, लेकिन मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। छोड़े जाऊंगा आपको एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ, और मेरे बाद यानी कि मैसेज मसाला मिक्स में आपके साथ रहेंगी सुनीता, और फिर फ्राइडे फिएस्टा लेके रहेंगे लिपिका। तो आप कहीं मजा आएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के समाचार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। भारत ने विदेश अंशदान विनियम संशोधन विधेयक पर विभिन्न देशों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स देशों से लचीली, नवाचार आधारित और टिकाऊ शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। आज मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। थाईलैंड में आज एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 8 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। केरलम के 4 उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और खेलों में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और बिल्ड्स का खिताब जीत लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, 6:03 और 24 सेकंड हुए, हमारा शो शुरू हो गया। मैसेज मसाला मिक्स विद मी, माय नेम इज सुनीता शाहबादी और ये है स्टेशन ऑफ द नेशन, दिल से दिल तक 102.6 FM। सो वेलकम टू द शो। ऑब्वियसली आज हम सवाल तो पूछेंगे ही, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा भी हो रहा है और थोड़ा सा आपको सावधान भी रहना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ी बहुत बुखार वायरल ये सब तो होता ही रहता है। और दूसरा, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप वो जब बहुत ज़रूरी काम हो तो तभी जाइएगा। सुबह तो सबको काम पे जाना ही होता है ना, कभी घर के कामों के लिए, कभी ऑफिस के कामों के लिए, कभी स्कूल, कभी कॉलेज, कभी कहीं जाना होता है, तो सुबह सब उठते हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोग अलार्म क्लॉक तो ज़रूर रखते होंगे, है ना, अलार्म रखते हैं ना। अगर आपकी अलार्म बोल पाती,

तो वो आपको हर सुबह क्या बोलती? अगर आपकी अलार्म क्लॉक आपसे बात करती और सुबह जब वो आपको उठाती है तो वो आपसे क्या बोलती, जरा बताइए हमें। 9868107070 पर नंबर है, 9868107070। प्रश्न आपको समझ में आ गया ना? आपको ये बताना है कि जो अलार्म क्लॉक आप रोज सुबह जो आपको जगाती है, अगर वो बोल पाती तो वो आपको हर सुबह क्या बोलती, बताइए हमें जल्दी से। 9868107070 पर मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहवादी।

ऑलराइट जी, हमारे पास मैसेजेस आने लगी हैं एंड आई एम जस्ट वंडरिंग कि आप रोज़ अलार्म क्लॉक चलाते हैं और क्या आप उसे पहले ही जगते हैं या आपको उठाती है अलार्म? क्योंकि मैं जब भी रखती हूँ तो मैं उससे बहुत पहले ही जाग जाती हूँ, सीरियसली।

ओके, गुड इवनिंग. मैं मोहम्मद इम्तियाज़ हूँ. अच्छा, आपने अभी हमारा मैसेज का उत्तर नहीं दिया है. आपने कहा है गुड इवनिंग आरजी जी. ओके, एंड नमस्ते सिस्टर जी सुनीता. शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका. आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. और मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया अभी तक, तो बताइए क्या आपको अलार्म क्लॉक बोलती है कुछ? तो अगर मेरी अलार्म क्लॉक बोलती तो कहती उठ जाइए जनाब, वरना आपकी स्वीट वाइफ बेगम खालिदा जिया अभी आवाज़ लगाने वाली है, फिर मेरा काम ही क्या रहेगा. और मैं कहता, अरे भाई तुम तो सिर्फ अलार्म हो, मेरी असली टॉकिंग अलार्म क्लॉक तो पहले से ही मेरी स्वीट वाइफ बेगम खालिदा है. उनकी एक प्यारी सी आवाज़ पर मेरी नींद फौरन उड़ जाती है. हाँ जी वाह, मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हरदर्शना बताया. आप वाकई में अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करते हैं या बस यहाँ लिखने के लिए कुछ भी कह देते हैं? जस्ट किडिंग. हमें तो यही बोलते अलार्म क्लॉक हमारी कि उठ जाओ कुंभकर्ण भाई, रोज रोज अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें उठा रही हूँ, उठो. ओके, नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से कहते गुड इवनिंग, शुभ संध्या सुनीता जी. हमें हमारा अलार्म क्लॉक एक ही बात बोलता, उठ जा कुंभकर्ण के चाचा अर्चाओ, कोई औलाद कोई चाचा. अरे बाप रे. अच्छा, सूर्यकांत वैशाली गाजियाबाद से कहते हैं, वो कहती कि अरे महाशय मैं घड़ी हूँ, आपकी शत्रु नहीं. प्रतिदिन प्राणपण से चिल्लाती हूँ, परंतु आप मुझे थप्पड़ मारकर, ओश हाँ वाह वाह, आप मुझे थप्पड़ मारकर पुनः निद्रा देवी की गोद में समा जाते हैं. मेरे कांटे तो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं कि तो आपका संकल्प प्रतिदिन 5 मिनट और पर ही अटक जाता है. हाँ, ये बहुत लोगों की आदत होती है, 5 मिनट और 5 मिनट. आई डोंट नो, आप जब अलार्म बजता है तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती, उसके बाद 5 मिनट सोने से क्या ही होगा? यदि समय पर उठना भी ओलंपिक खेल होता तो आप निश्चय ही सर्वाधिक स्नूज का स्वर्ण पदक जीत जाते. अब कृपा करके उठ भी जाइए, अन्यथा आज भी कार्यक्रम में आपका वही अमर वाक्य गूंजेगा, रास्ते में हूँ. वाह, दिस इज अ लवली मैसेज सूर्यकांत जी, बहुत अच्छा मैसेज है. ऐसा रोज होता है आपके साथ, आप नहीं उठते हैं और स्नूज पर रखते हैं 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और. ये बहुत लोगों के, मेरे घर में भी मेरी सिस्टर हमेशा 5 मिनट और 5 मिनट और मुझे समझ में नहीं आता, हाउ कैन यू स्लीप? वंस एक बार अलार्म बज गया तो उसके बाद तो आपका मन ही नहीं करेगा ना, और उसके बाद तो डिस्टर्ब हो जाती है नींद, तो उसके बाद कैसे सो सकता है कोई. बट देन लवली मैसेज आपकी, बहुत सारे पुनः निद्रा निद्रा देवी की गोद में समा जाते हैं. मेरे कांटे तो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, किंतु आपका संकल्प प्रतिदिन 5 मिनट और पर ही अटक जाता है. ओके, और रास्ते में हुआ, ये तो बहुत खूब. ओके, दीपा बिजनौर, हमारा अलार्म अगर हमसे बोलता तो यही कहता कि रोज रोज सताना अच्छी बात नहीं है, कभी वक्त की कदर कर लिया करो. हाँ ये भी है. और शुभ संध्या प्रिया जी, सुनीता शाहवादी जी, मैसेज मसाला मिक्स में, यदि मेरा अलार्म मुझसे बोल पाती तो बात करती तो यही कहती, उठ जाओ ना, सुबह हो गई और कितना देर तक सोना है. हीरामणि वर्मा दत्त रिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से. ओके, एंड देयर इज अनदर वन सेइंग गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले से के बिड़ावन गांव से, अगर हमारी अलार्म क्लॉक बोल सकती तो बोलती नहीं, डायरेक्ट उठकर हमें कूट देती. अच्छा, हमसे बोलती नहीं, हमें डायरेक्ट उठकर कूट देती, क्योंकि हम उसको बार बार बंद कर देते हैं. हम इस थप्पड़ तो हम बहुत मारते हैं, ठाक ठाक. लेकिन आजकल तो बहुत लोग मोबाइल पर भी रखते हैं, बट आई डोंट कीप माई मोबाइल इन माई बेडरूम, सो नेवर, आई डोंट नो. मेरा अलार्म क्लॉक ही बजता है, उठ जाग मुसाफ, फिर भोर भई ये सुबह तुझे बुलाती है, नई नवेली किरण है ये तुझ पर आशीष बरसाती है. मधु किरण दिल्ली से. इकबाल सिंह कहते हैं छावड़ा छत्तीसगढ़ राजनंद गांव से कि अगर मेरे मोबाइल का अलार्म बोल पाता तो मुझसे यही कहता कि भाई मेरे को इस्तेमाल ही क्यों करता है, जब भी अलार्म लगाता है उसके पहले ही उठ जाता है. मेरी तरह, और अलार्म को बंद कर देता और फिर मेरे को इस्तेमाल ही क्यों करता है. ये भी सही है अगर आप उससे पहले, लेकिन ये है ना कि आपको एक तसल्ली रहती है कि अगर बाय चांस आपकी नींद नहीं खुली तो अलार्म तो है ना, आपको उठा देगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो यू विल, अगर आप पहले भी उठ गए तो उसकी कोई चिंता नहीं, बट देर से नहीं उठना है. ओके, दिस वन इज रेशम कुमारी छापरा बिहार से. तो जवाब कहाँ है रेशम,
आंसर जवाब, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। मैसेज मसाला मिक्स में सुनीता शाहवादी को नमस्कार। और आज टॉपिक का टॉनिक का ज़माना है और कुछ अलार्म ऐसे भी चल रहा है जो आवाज़ देकर उठाता है, उठ जाइए आपकी ड्यूटी का टाइम हो गया। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली। नहीं, मैं वो वाली बात नहीं कर रही हूँ, अलेक्सा उठ जाइए, अलेक्सा ये करिए। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल टॉकिंग, जैसे हम और आप बात करते हैं वैसे अगर आपकी अलार्म आपसे बात करती है तो क्या बोलती है आपको, कि जैसे कई लोगों को डांटती भी और कहती कि मुझे थप्पड़ क्यों मारते हो, और बहुत कुछ कहती, बहुत कुछ सुनाती है, उसको भी तो मौका मिलेगा ना। हर रोज़ आप उसको थप्पड़ मार मार के बेचारे को चुप करा देते हैं, बट उसको भी तो मौका मिले कि जब वो बोल पाते तो वो क्या कहती आपसे। 9868107070 है नंबर। ये गाना आपके लिए, भेजिए ढेर सारे मैसेजेस।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
4: पता का चाय गजब का स्वाद।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: राइट जी, टाइम हुआ है 6:26 और हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी और हमने आज आपसे पूछा कि अगर आपकी अलार्म क्लॉक बात करे आपसे तो आपको सुबह सुबह उठते हुए क्या बोलेगी, और बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिए हैं। एंड लेट्स सी, सच बताऊँ तो मैं अलार्म नहीं सेट करती हूँ कभी भी जब तक कुछ अर्जेंट ना हो। हालांकि ऑफिस जाना होता है पर सुबह समय से 6 बजे तक नींद खुल जाती है, और नहीं खुलती है तो सासू माँ नॉक करके उठा देती है कि ऑफिस नहीं जाना है क्या। और अगर मेरी अलार्म क्लॉक बोलने लगती है तो यही बोलती है कि उठो, एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। और कहीं एक कोटेशन पढ़ा था, वेक अप एवरी डे स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे, वाइप योर टीयर्स एंड फेस योर फियर्स। एंड ये लिखा है निधि ने प्रयागराज से, थैंक यू सो मच, दैट्स अ लवली मैसेज। एंड अगर मेरी अलार्म क्लॉक बोलती तो उठ जाइए जनाब वरना आपकी ओके, ये तो मैंने पढ़ लिया था। एंड दिस इज़ सुखलाल बाला फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कहते हैं मैं तो अलार्म क्लॉक में से पहले ही उठ जाता हूँ। हाँ, ये बहुत लोगों की आदत होती है जैसे मेरी है। अनूप कुमार झारखंड से कहते हैं आई वेक अप अर्ली, हाँ तो आपको अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती, वंडरफुल। नमस्ते, मेरी अलार्म क्लॉक मुझे कहती कि प्रेम भाई जल्दी उठ जाइएगा, आपकी बुजुर्ग क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी दोस्त टेनिस बॉल एवं बल्ला लिए अपने घर से आपके घर की ओर निकल पड़े हैं, आज संडे में आपकी टीम का मैच है, जल्दी मैदान में पहुंचेगा। प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से, रोज मैच खेलते हैं आप सुबह सुबह, वाह क्या बात है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज और एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट। हाँ गुड इवनिंग मैम, मैं किरण हरिद्वार से, मैं तो अलार्म से पहले ही उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे अलार्म पर विश्वास नहीं होता कि मुझे लगता है कि कहीं ना बजे और मैं सोती रहूँ तो फिर क्या होगा। हाँ ये भी कई लोगों को लगता है। ओके दिस वन इज, नमस्कार, मेरी मामी की तरह अलार्म क्लॉक मुझसे कहती ओ गॉड आई कांट से दिस, अब उठ जा सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं ऑफिस पहुँचने को, पिछले 1 घंटे से तुझे उठा रही हूँ, आई एम सॉरी आई कांट यूज दैट वर्ड बट मुझे हंसी बहुत आ रही है। ओके आपकी मामी आपको रोज ही बोलती है, ऑल द बेस्ट। ओके एंड दिस इज, हाई मैम, हमारा अलार्म तो आजकल हमें बोलता है कि भाई उठ जा कामर

उठना होता है तो मैं 6 बजे के अलार्म लगाती हूँ ताकि मैं अपने दिमाग को सिग्नल दे सकूँ कि अभी उठना नहीं है। नेहा हैदराबाद से, सीरियसली मतलब अभी 1 घंटा है तो दिमाग में ये बड़ा मज़ा आता है सोच के कि अभी तो 1 घंटा है, क्या बात है। फिर अलार्म कर रख के आपको नींद डिस्टर्ब नहीं होती आपकी, मतलब सब ऐसे एक से बढ़कर एक है। मेरा नाम काजल है, उत्तराखंड से हूँ मैं, मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाह वाह, सब तो यहाँ सुबह सुबह उठते हैं। हमें तो अलार्म बड़े प्यार से उठाता है, जब तक उठ नहीं जाते, उठाने में आलस करते हैं और बोलता है जागो मोहन प्यारे जागो। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निघत, परवीन शाहनवाज, सरफराज फदीन, सुहान अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। ओके, एंड दिस इज़ मेरी अलार्म क्लॉक कहती है कि जल्दी उठ, 3 दिन से लेट पहुंच रहा है, अगर आज भी टाइम पर नहीं पहुंचा तो बॉस जॉब से निकाल देगा। प्रकाश गोगिया जागृति एनक्लेव दिल्ली से, ओके दिस इज अ नाइस वन। ओके, बसंत कुमार ठाकुर कहते हैं कि मेरी घड़ी का अलार्म बजने पर हमें तुरंत उठ जाना चाहिए और नए दिन की शुरुआत और भगवान का नाम लेकर करनी चाहिए। हाँ वो तो है, पर अगर आपसे वो बोल पाती तो क्या बोलती। नमस्कार जी, मीरापुर गांव भूमामा से आयरनजीत मनजीत अंजलि, हमारे घर से हमारे घर में अलार्म घड़ी बस यही कहती, उठो जी मेरी जान, गुड मॉर्निंग कहते हैं। मेरी जान, आप उसको तंग करो और वो कहेंगे मेरी जान। ईश्वर नियत से खुश होते हैं, इंसान दिखावे से खुश होता है, आप पर निर्भर रहता है किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी बुलंदशहर से। ओके, एंड दिस वन इज़ मैम नमस्ते, मैं क्या बोलूं अलार्म के लिए, मेरा अलार्म तो घर की जिम्मेदारी और सारे ऑर्डर पूरे करने के लिए टेंशन होती है, तो मैं अपने आप ही उठ जाता हूं। जावेद आलम मोहम्मद जयपुर से। हाँ वो तो हम सभी उठते हैं क्योंकि सुबह का दिमाग में होता है कि हमें उठना है, जाना है, ये करना है, वो करना है, तो हम वैसे तो अलार्म क्लॉक से पहले ही उठ जाते हैं। बट बहुत लोगों की नींद ऐसी होती है कि अगर वो अलार्म बजता भी है उस पर स्नूज पे भी रखते हैं या फिर ये कहते हैं कि 5 मिनट तो वो 5 मिनट में गहरी नींद उनको आ जाती है। आई डोंट नो हाउ, पर ये गाना आपके लिए, आप भेजिए मैसेजेस 9868107070। आपका अलार्म क्लॉक अगर आपसे बात करता तो आपको क्या बोलता सुबह, बताइए हमें।

लवली सॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम. नहीं अच्छा, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कहते हैं, गुड इवनिंग आरजे सुनीता मैम. अगर मेरी अलार्म क्लॉक मुझसे बोलती तो वो कहती, उठ जाओ, सुबह होने वाली है, जल्दी से बिस्तर के बाहर आके देखो सुबह की पहली किरण और नींद को दूर भगाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ अपना काम करने के लिए. वाह, बहुत सुलझी हुई है आपकी अलार्म क्लॉक. हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार डेली. हाई, हाउ आर यू टुडे? I'm good. On today's topic, I would like to say that my alarm clock cannot speak to me anything because I do not use any alarm clock. Only I wake up myself in the morning. Okay, that's wonderful. And this one is, मैं अपनी sweet wife को बोलता कि हाँ, मुझे रोज 5 मिनट का snooze जो झेलते झेलते थक गया हूँ, वो बोलती alarm clock, ऐसे ही बोलती ना. तो आपने ये बोला था पहले भी. Okay, this one is, मैं निशा हूँ. नो, दिस इज़ मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से. डियर सुनीता जी, गुड इवनिंग. मैंने अलार्म तो 5:30 and 5:50 का लगा रखा है डेली उठने के लिए. फिर भी ये कहता, बट कभी कभी दोनों टाइम के अलार्म बंद करके देखती हूँ और 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ. ओके, तो अलार्म आगे से कहेगा कि मेरा कहना कब मानोगे. ओके, दिस इज राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से. गुड इवनिंग आरजे, वेलकम. आप जी वैसे कैसे हो? गीत संगीत, आपकी बातचीत भी सब कुछ अच्छा है. मैं जी बढ़िया हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं आप? आप अलार्म नहीं रखते कभी? डोंट स्टॉप मी अगैन एंड अगैन सेज माई अलार्म. शैलजा फ्रॉम नीबराना, ऑफकोर्स. और मेरा अलार्म कहता, अब जग जा, यदि अभी लेट हुआ तो आगे सब काम में तू लेट हो जाएगा. रंजीत कुमार मंडल, 60 आरिया बिहार से. ओके, एक तो जो अलार्म क्लॉक को बहुत थप्पड़ मारते ना सुबह, दैट्स नॉट सीरियसली फेयर. गुड इवनिंग जी. मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्ति नगर से कहते हैं कि वैसे तो मैंने कभी अलार्म का उपयोग नहीं किया क्योंकि मुझे जब ज़्यादा देर तक सोना हो तो कोई अलार्म नहीं उठा सकता, मगर जब अलार्म बोलता तो कहता, जनाब नाश्ता लगा दूं क्या? सुबह हो गया. अच्छा, आपका अलार्म क्लॉक आपको नाश्ता भी देता है या फिर आप अपनी बेगम की बात करें? नमस्कार, आपको कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं एकदम अच्छा हूँ. रोज़ मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आते हैं. प्रोग्राम से अच्छी आपकी आवाज़ है, थैंक यू सो मच. जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह. आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्यों? नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्र है और मैं दिल्ली में रहता हूं. और आज के विषय पर मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी आंख तो बिना अलार्म के ही सुबह 4 बजे खुल जाती है. वाओ, लेकिन अगर अलार्म घड़ी मुझसे कुछ बोल पाती तो वो यही कहती कि उठो मोहन प्यारे और अपने जीवन की एक नई सुबह का आनंद लो. वाह, क्या बात है. एंड हाई प्रोफेसर, हाई राहुल, हाउ आर यू? इफ माई वॉच एंड माई अलार्म हैड, मतलब इट कुड स्पीक, इट वुड बी येलिंग एट मी ऑफ कोर्स एंड से इट्स फाइन, स्लीप, बी लेट, आई एम श्योर योर बॉस लव्स सरप्राइजेस. तो मतलब वो गुस्सा करती है आप पर. ओके, दैट्स ओके. गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो. अगर हमारा अलार्म हमसे बात करता तो सुबह पहले ही बोलता कि जल्दी से उठ जाइए वरना ऑफिस पे एब्सेंट लग जाएगी. नाइस प्लेलिस्ट एंड लवली सॉन्ग्स. किशन मंजानी, नीलम, स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से. हमारा तो सब ठीक है पर

मैडम करुणा तिवारी रोज ऑफिस लेट होती है और रोज का वही बहाना कि अलार्म नहीं सुनाई दिया कुलदीप उपाध्याय अलार्म नहीं सुनाई दिया तो फिर आप नहीं उठाते उनको, आप भी तो लेट होते होंगे। चलिए आप भी हमें मैसेज करिए और 9868107070 पर रोज सुबह आपका अलार्म अगर आपसे बात कर पाता तो क्या बोलता बताइए हमें जल्दी से। और एक और मैसेज आया है, ये लिखते हैं, हाय गुड इवनिंग, अंजलि हस्तिनापुर से। जो हमारी घड़ी सुबह हमें उठाती है, हमारे से अगर वो बोल पाती तो वो यही बोलती कि बेशर्मो कभी अपने आप भी उठ जाया करो, हमेशा मैं ही उठाती हूँ। एब्सोल्युटली ओके, नाउ आई एम प्लेइंग अ नाइस नंबर, आप प्लीज जल्दी से मैसेज कीजिए। और टाइम हुआ है 6:40, अभी भी समय है आपके पास, ढेर सारे मैसेजेस भेजो और 9868107070।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: राइट जी, हमारे पास मैसेज आए हैं। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। मैं नवलू वर्क, गांव मलपन, जिला उत्तर गोवा से। अलार्म क्लॉक की आवाज़ पर मैं जाग तो जाता हूँ लेकिन फिर से सो जाता हूँ और मजबूरी से फिर उठना पड़ता है क्योंकि सुबह 8 बजे ऑफिस से निकलना होता है। गोवा में इन दिनों बारिश थोड़ी कम है। ओके, एंड दिस इज मेरा मैसेज, तो पढ़ लीजिए। पढ़ तो लिया। काजल उत्तराखंड से, आपको आपने कहा था कि अलार्म की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सुन नहीं रहे थे क्या? ओके, दिस इज़, अगर मैंने मेरे अलार्म बोलती तो ये कहती कि उठ जा, उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, मुंह को धो लो। जावेद आलम मोहम्मद रुखसार जयपुर से। ओके, दिस इज़, हेलो मैम, दिस इज़ अमन प्रतीक फ्रॉम नोएडा। एंड अलार्म कहेगा कि रात में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि टाइम से उठूंगा, अब जब उठा रहा हूँ तो स्नूज कर ले करके टाल रहे हो, क्या बात है। ओके, दिस इज़ दानिश फ्रॉम खतौली। सुनीता मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सो नाइस वॉइस एंड प्रेजेंटेशन, और अच्छे गाने चल रहे हैं, पुराने नए सब। और मैसेज आपको पढ़ लिया लेकिन आपने वो उत्तर नहीं दिया। और आपने कहा है सुनीता शाबादी जी, क्यों मैसेज स्किप कर दिए? पूरे मैसेज धैर्यपूर्वक पढ़िए, बहुत फनी है। ओके जी, आपका मैसेज मैंने पहले भी पढ़ा था। मैं अपनी स्वीट वाइफ बेगम खालिदा जिया से बहुत प्यार करता हूँ, वो अभी मायके में है इसीलिए फ़िलहाल अलार्म क्लॉक से ही काम चला रहा हूँ। ओके, लेकिन बेचारा अलार्म क्लॉक भी रोज़ शिकायत करता है। भाई साहब, भाभी को जल्दी बुला लीजिए, मैं रोज़ रोज़ आपकी 5-5 स्नूज झेलते झेलते थक गया हूँ। और कहता है बस थोड़ा सब्र कर दोस्त, बेगम आते ही मेरी तेरी नौकरी पक्की, छुट्टी पर चली जाएगी। ओके मोहम्मद सरफराज आलम जी, अब मैंने मैसेज पूरा पढ़ा, थैंक यू एंड हैप्पी नाउ। ओके मैम, प्लीज़ अरिजीत का सॉन्ग चला दीजिए। आई विल प्ले नाइस नंबर्स, डोंट वरी। एंड वृक्ष मौन खड़े ये मित्र हमारे, भू पर शोभित चित्र हमारे, पेड़ समझकर मत काटो तुम, ये सब तो है पितृ हमारे, पितृ हमारे। ओके वंडरफुल। एंड दिस वन इज, स्मार्ट अलार्म या फ़ोन बोले तो आप बंद करने के लिए वॉइस कमांड दे सकते हैं या उठकर सीधे काम पे लग सकते हैं। न्यायपारा भी रही, वसंत कुमार ठाकुर। ओके, एंड दिस वन इज, अलार्म क्लॉक कहता है देख भाई मैं बज बज के थक गया हूँ, उठ जाओ महाराज, तेरी फेसबुक पर नोटिफिकेशन आए, अगर अब नहीं उठा तो तेरे फ़ोन से खुद की रिप्लाई कर दूंगा और बैटरी ख़त्म कर दूंगा। प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश खरगोन से। ओके दैट्स फनी। शुभ संध्या देवी जी। ओके सनी बिमला पोहाल अंबाला कैंट से, यदि मेरा अलार्म भूल पाता तो यही बोलता, सोया भी जल्दी करो, जल्दी उठना है तो। बाकी मैं आपसे बात कर पाता हूँ तो मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि सावन माह के पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और नमस्ते मैम, मैं हाँ जी, आपने मुझे बताया था कि गोवा से आप, गोवा में आजकल बारिश नहीं हो रही लेकिन यहाँ तो बारिश हो रही है। अगर अब भी आप मैसेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 9868107070 पर। और अभी टाइम हुआ है 6:52। कुछ मिनट्स आपको दिए देते हैं जहां पर मैं कुछ मैसेजेस पढ़ सकती हूं। सवाल है कि अगर सुबह सुबह आपका अलार्म क्लॉक आपसे बात कर पाता तो वो क्या बोलता? डांटता, प्यार से बोलता, जैसा आप उसके साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही तो बोलता। ये गाना आपके लिए, जल्दी करिए मैसेजेस।

और आज जी जाते जाते मैसेजेस पढ़ूंगी. मुझसे पूछा है गोवा से इन्होंने कि नवलू ने कि मैम आप अलार्म यूज़ करती हैं क्या उठने के लिए? हाँ, जब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उठना है और मैं हमेशा उससे पहले ही उठ जाती हूँ. सीरियसली, ट्रस्ट मी. एंड गुड इवनिंग नीता अमरावती से कहते, कैसे हैं आप? आपका यहाँ बारिश, आपके यहाँ बारिश होगी तो थोड़ी हमारे इधर भेज दीजिए. मुझे अलार्म जिस ना लाते उस दिन मुझे अलार्म जगा देता है. अभी नल आ गया या अभी जल्दी नहीं उठेगी तो 8 बजे नल चला जाएगा, तुझे पानी नहीं मिलेगा. बाकी दिन तो मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, पर कभी हमें बाहर जाना होता है, एयरपोर्ट के टाइम में के हिसाब से पहुंचना होता है, तो मुझे अलार्म लगाना ही पड़ता है. मतलब आप ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं. नमस्ते मैम, मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं तो घर में सबकी अलार्म हूँ. सब सुबह बच्चों को स्कूल के लिए उठाना पड़ता है और हस्बैंड को भी. ऑफकोर्स एवरी वूमन इज़ फॉर दैट मैटर. सुनीता शाहवादी जी, बेहतरीन लाजवाब प्रोग्राम अलार्म पर आधारित. आदिल कंवर गुन्नौर, थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. आप हमेशा अपना ख्याल रखें और टाइम से उठ जाएं और अलार्म क्लॉक की ज़रूरत ना पड़े. और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे प्यार से पेश आइए, उसे बोलने की ज़रूरत ना पड़े. सोचिए कि वो आपको रोज़ उठाती है और आपको टाइम से पहुंचाने की कोशिश करती है. मैं आपसे मिलूंगी 8 बजे, क्योंकि आज है वीकेंड और हम मजाएंगे मस्ती. सो टिल देन यू टेक वेरी गुड केयर एंड दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू. बाय बाय.

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: Welcome back, dear music lovers. You're tuned to FM Rainbow 102.6 megahertz is the frequency, and you are checking out new international releases in the program Friday Fiesta with me, Lupika. The track that I've lined up next is the title track of the much talked about Ariana Grande's album Petal. Last Tuesday, while I was hosting the request program, I remember receiving a lot of requests for this song, and I hope all of you are tuned in this evening. So here is the song you asked for last Tuesday.

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली पर्यटन को नई दिशा देने के लिए 4 विशेष इको फ्रेंडली पर्यटन सर्किट तैयार किए गए हैं। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स देशों से लचीली नवाचार आधारित और टिकाऊ शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। आज मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। भारत की व्यापारिक और उद्यमशील क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया जाएगा। थाईलैंड में आज एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 8 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 15 अन्य घायल हो गए। केरलम के 4 उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और खेलों में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और बिल्ड्स का खिताब जीत लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग वंस अगेन एंड दिस इज म्यूजिक मस्ती। मैं हूं आपके साथ फिर से सुनीता शाहबादी। वेलकम टू द शो। दिस इज शो 102.6 एफएम पर दिल से दिल तक आप सभी का स्वागत है। आज है फ्राइडे, वीकेंड शुरू हो रहा है, सो वी नीड टू डांस एंड रिलैक्स एंड अनवाइंड
2: अपने

0: एपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
4: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
3: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
4: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बोनस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, फिलहाल वक्त हुआ है रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने पर केंद्र के हल

हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी। 9वें इंडियन मेडिकल डिवाइस का शुभारंभ आज नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनाना है। तो ये थे रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी हाँ, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बरसात के मौसम का लुफ्त उठा रहे होंगे। अब आपको मुझसे कुछ शिकायत तो होंगी ही, जानती हूँ, वो भी सुनी जाएंगी आपकी सभी शिकायतें। आपकी याद आती रही, प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस सफर में मैं हूँ आपके साथ, वही आपकी पुरानी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी। तो चलिए, देरी क्यों करनी, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत मौसम है और प्लेलिस्ट में बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल और ये खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, जानती हूँ आपका दिल बहुत कुछ सोच रहा होगा और दिमाग भी बहुत कुछ कह रहा होगा और कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या क्या मैसेज किया जाए इतने दिनों के बाद जो मिले हो। तो भाई, आप सबकी शिकायतें तो मैं ज़रूर सुनूंगी। और मेरे पास जो सबसे पहले मैसेज आया वो आया है सौरा बनेजा का गाज़ियाबाद से। वो कहते हैं, वेलकम बैक दोस्त, तो थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग आरजे जी। लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो देखिए फिर से मैं कह रही हूँ और हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप अपना मैसेज भेजा करें तब अपने नाम के साथ साथ वो जगह का नाम भी भेजें जिस जगह से आप भेज रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वैसे तो आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रखा है और इस खूबसूरत मौसम में जी हाँ, चाहे वो शिकायतें हों या फिर लड़ाई झगड़े हों आपस में, वो प्यार वाले लड़ाई झगड़े तो सब अच्छे लगते हैं। और जब ये जब यादों का पिटारा ले लेते हैं ना दोस्तों, तो वो यादें और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, क्योंकि जब भी आपको वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, तो इन यादों के पिटारों को जब आप खोलते हैं तो वो सारी यादें ना, जो खूबसूरत यादें होती हैं, उनको सोच सोच के बहुत ही अच्छा लगता है और अंदर से दिल खुश हो जाता है। तो भाई, अब आपको क्या कहूँ कि जी हाँ, जो यादें होती हैं ना, वो असल में हमारे जीने की एक वजह भी होती हैं, क्योंकि यादों के बिना कैसा जीवन है ना। सोच कर देखिए, थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये यादें जिंदगी में कितनी कितनी ज़रूरी होती हैं। फिलहाल मौसम बहुत खूबसूरत है कल से, तो चलिए एक बरसात का सॉन्ग तो बनता ही है ना। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपकी याद आती रही, और आपकी याद आती रही के सफ़र में आप हैं इस वक्त अपनी दोस्त रेखा के साथ।

जी हाँ दोस्तों, यूं तो बरसात का मौसम ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और जिनको पसंद होता है वो लोग पहले से ही प्लान बना लेते हैं कि वो बरसात में कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, क्या खाएंगे या किन किन दोस्तों के साथ मिलकर शाम के पकौड़े और चाय एंजॉय करेंगे। सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना, पर सारी प्लानिंग का कचरा भी हो जाता है कई बार। क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो रखिए। और इस सब्र के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए एक और सॉन्ग सुनते हैं। वैसे आप सभी के मैसेजेस बिंदास आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं मेरे पास। पढ़ती हूँ, सुनाती हूँ आपको, ऑन एयर ज़रूर करूँगी, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: हिमालय की गोद से लेकर
5: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
4: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
5: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
4: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक।

0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक दोस्तों। वैसे तो मैं हमेशा हमेशा जब ब्रेक लेती हूँ ना आपको बता कर लेती हूँ लेकिन आज मन किया थोड़ी सी शरारत करने का। तो भाई दोस्तों में शरारत तो बनती ही है ना, अब आपस में हम शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो चलिए आपके मैसेजेस ले लेते हैं क्योंकि आपके मैसेजेस आ चुके हैं। तेरी याद का मौसम कभी नहीं ढलता, बिछड़ने का जख्म आज तक भरता नहीं, मुलाकात की उम्मीद लिए बैठे हैं हम मगर तेरे इंतज़ार कभी खत्म होता नहीं। मोहम्मद सरफराज आलम जोकीहाट दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से लिखते हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है मोहम्मद फुरकान अंसारी का, उन्होंने भी मैसेज दिया है, उनको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। तो थैंक यू सो मच मोहम्मद फुरकान। एक और मेरे पास मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, उनको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज ले लेते हैं और मैं यही कहूंगी सबसे कि लंबी मैसेजेस ना भेजें, शॉर्ट में भेजें ताकि सबके मैसेजेस लिए जा सकें। गुड इवनिंग RC जी मैम, बहुत दिनों के बाद आवाज़ सुनी, अच्छा लग रहा है, नाइस सॉन्ग सेलेक्शन। शालू लिखती हैं शादीपुर से। तो चलिए आपका मैसेज भी हो गया है। एक और मेरे पास मैसेज है लेकिन किंतु परंतु अगर हम मैसेजेस ही पढ़ते रहेंगे तो हमारे प्रोग्राम का क्या होगा, प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ेगा और इतना खूबसूरत मौसम है, प्रोग्राम आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं बात कर रही थी कि अगर अगर बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, जैसे खूबसूरत मौसम में आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में है क्या नहीं करना है, किसके साथ कहाँ जाना है और कैसे आपको अपने आप को फ्रेश फील कराना है, वो सारी प्लानिंग आप कर लेते हैं मौसम के हिसाब से। अब अगर जहाँ मौसम इतना खूबसूरत हो रखा था, इतनी बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और आपको इस मौसम से बेहद बेहद प्यार है और अचानक से जोरदार बारिश जब हो रही थी तो आपने अपनी गाड़ी निकाली या दोस्तों के साथ बाहर निकले और अचानक से बारिश बंद हो गई और 10 मिनट में खिली खिली धूप आपको नजर आने लगी तो फिर हो जाएगा ना आपका दिल दिमाग एक दम खराब। तो भाई अचानक से मौसम जब करवट लेता है ना तो कभी कभी गुस्सा भी आता है और कभी कभी किसी के लिए ये मौसम का बदलना बहुत ही खूबसूरत, जी हाँ, चीज बन जाता है क्योंकि हो सकता है वो मौसम जो आपको पसंद है वो अगले इंसान को पसंद ना हो और जब जब ऐसा कुछ होता है तो दिल बहुत कुछ कहता है और चेहरे पे बहुत कुछ नजर आता है। भले ही हमारे पड़ोसी समझे ना समझे लेकिन हमारे जो दोस्त यार होते हैं ना वो समझ लेते हैं कि हमारे चेहरे पर क्या नजर आ रहा है।

जी हाँ दोस्तों, दोस्ती हो या प्यार, जब हम उनसे मिलें तब चाहे आपकी कितनी भी नाराजगी हो, कितना भी मूड खराब हो, बस आप सब भूल जाएं और उनकी बातों में खो जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी दिल इतना ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि खुद को पता नहीं होता कि आखिर दिल दिमाग कह क्या रहा है और हम चाहते क्या हैं। उस वक्त ये जो टेक्निक है ना, ये काम आती है। जो आपका सबसे प्यारा दोस्त हो, दिल के करीब हो, आप जाकर उसके साथ बैठ जाइए, कुछ वक्त गुजारिए, फिर देखिए आपका मूड कैसे चेंज होता है। और कुछ नहीं तो हंसी मजाक वाली पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एक और मेरे पास मैसेज आया है। जी हाँ, उन्होंने एक गाने की डिमांड की है। दोस्त, वैसे तो ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। आगे लिखते हैं कि हेलो जी, कैसी हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी जो प्लेलिस्ट के गाने चल रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। ये लिखते हैं कंचन सोनिया विहार दिल्ली से। एक और मैसेज मेरे पास आया है मोहम्मद कोनियान बिहार बेसुराय से वो भी एक गाने की फरमाइश कर बैठे हैं। तो दोस्त, आपको बता दूं कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। एक और मैसेज ले लेते हैं। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम बलराम

0: फ्रॉम कोसी मथुरा से हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली आपका प्रोग्राम सुन रही है, उनमें मेरी पत्नी श्रीमती रंजना और वंशु यूवी भी सुन रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा शो लग रहा है आपका, तो थैंक यू सो मच। अब देखिए फैमिली में तो सभी आ जाते हैं, ठीक है, आपने अगर आगे कुछ और मेंशन कर दिया है तो। कासगंज से मास्टर राधे श्याम जी लिखते हैं, गुड इवनिंग रेखा जी, और आप कैसी हो, बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम में आए हो, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, सॉन्ग सेलेक्शन बहुत शानदार है, नाइस प्रेजेंटेशन, तो थैंक यू सो मच। ये तो मुझे पता था कि कुछ कुछ हमारे लिसनर्स है ना, वो बात बातों में ये ताना तो मारने वाले ही हैं कि भाई आप बहुत दिनों के बाद आए हो। तो दोस्त ये बताइए, बहुत दिनों के बाद सुनकर मिलकर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना भाई? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जब मेरे सभी लिसनर्स मुझे सुनते हैं और अपने मैसेजेस, अपने दिल की बात यहां तक पहुंचाते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास, बने रहिए हमारे साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आपके सभी मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु कुछ हमारे लिसनर्स हैं इतने सीरियस हो गए हैं। तो भाई आपको इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं बोलती हूँ जो भी आपकी यादों की किताब में आपके वो जो पन्ने हैं ना, जिनको देखकर पढ़कर आपको गुस्सा आता है या आंखें नम हो जाती हैं, उन पन्नों को तो आपको पढ़ना ही नहीं है। और अगर हो सके, जानती हूँ कहना आसान है करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना दोस्तों। तो फिर अपने उन पन्नों को अपनी किताब से या तो हटा दीजिए, और या फिर जैसे ही आपके सामने आए उनको पलटना शुरू कर दीजिए। और जब कोई प्यारा सा पन्ना आपके सामने आए यादों का, तो बस उसे पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। तो दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि हमारे कोई भी लिसनर्स जो हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, उनमें से कोई भी लिसनर इस तरह की बेरुखी या इतना दिल तोड़ने वाली बात करे। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने भी मुझे ये मैसेज किया है। जहीदा ने मैसेज किया है, वो भी मैं उनको कहूंगी कि अच्छा अच्छा सोचिए, इतना प्यारा मौसम है, अगर आपका मूड खराब है तो फिर आप बाहर निकल कर कहीं घूम के आ सकती हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो मैं तो यही कहूंगी कि दोस्तों कि आप अपने नाम के साथ साथ जगह का नाम लिखो। ये तो मैं काफ़ी टाइम से ही बोल रही हूँ, लेकिन आपने तो अपना नाम ही नहीं लिखा, तो नाम ज़रूर लिखिए। एक और मेरे पास मैसेज आया है, हाय, मैं मेरी वाइफ के साथ आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और भाई क्यों वो स्ट्रेस में है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, और अगर वो स्ट्रेस में है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप किस लिए हैं जनाब, उनके स्ट्रेस को

साथ आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। और भाई क्यों वो स्ट्रेस में है मुझे ये तो ये समझ में नहीं आ रहा है, और अगर वो स्ट्रेस में है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप किस लिए हैं जनाब? उनके स्ट्रेस को दूर कीजिए, उनको कहीं घुमाकर लाइए, जो उन्हें पसंद हो वो बातें कीजिए, और इस मौसम में बढ़िया बढ़िया पकौड़े और चाय तो खिला ही सकते हैं, है ना। एक और मैसेज अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग आरजे रेखा मैडम जी, आपकी याद आती रहे, गीत सावन का महीना आया है, बरसात वाला गाना बहुत अच्छा लगा, और इस फिल्म का उन्होंने नाम लिख दिया, गायक का नाम लिख दिया। भाई सच में आपको तो बहुत कुछ पता है म्यूजिक के बारे में। तो चलिए मैं यही कहूंगी कि खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से रेनबो इंडिया सुनते रहिए। AIR FM रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस वक्त अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी के साथ दिल्ली और NCR में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और अब ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी, यानी कि देश हो या विदेश आप हमें सुन सकते हैं ऐप के जरिए। तो चलिए एक और प्यारा सा सॉन्ग बेताब है आपके कानों के जरिए दिल में उतरने के लिए।

एक मेरे पास मैसेज आया है मुंबई से। जेपी जी का उनका बर्थडे है कल, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, मेरी तरफ से और हमारी पूरी रेनबो इंडिया टीम की तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवांस। तो एक और मैसेज ले लेते हैं। जी हाँ, ये लिखते हैं, नमस्कार रेखा मैम, प्रोग्राम इज़ वेरी गुड, प्लीज़ कन्वे माई विश टू आकाश, थैंकफुल फॉर एवर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रेनी डे बट आई मिस यू टू मच, सो मच ग्रेटफुल टू यू डियर आकाश। थैंक्स, ये लिखती हैं तुम्पा पॉल। भाई आप लोगों का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हमेशा आपका मैसेज देखती हूँ, या तो आप एक दूसरे से नाराज़ हैं या एक दूसरे के करीब होकर भी दूर है, यानी कि नाराज़गी में आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरा एक और मुझे जो समझ में आता है वो ये कि आप एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं और आपस में बात बहुत कम हो पाती है, तो आप मैसेजेस के ज़रिए उनको अपने दिल का हाल बता रही हैं। तो चलिए, आपके दिल का हाल उन्हें पता चल ही गया होगा। हेलो, गुड इवनिंग रेखा जी। सुरेश जी लिखते हैं राजस्थान से, गाने मस्त चल रहे हैं और उनको ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। हेलो रेखा मैम, कैसी हैं आप? तो मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ दोस्त। नाइस कलेक्शन ऑफ योर सॉन्ग्स, बहुत टाइम के बाद सुनकर अच्छा लग रहा है आपको। और ये लिखा है अफशा ने धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, उत्तर प्रदेश से, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आपका दिल ना लगे तो फिर या तो पुरानी यादों को आप कुरेदना शुरू कर दीजिए जो अच्छी अच्छी यादें हों, या फिर अपने किसी करीबी दोस्त का दिमाग ख़राब करने की कोशिश कीजिए इस हद तक भी नहीं कि वो आपसे नाराज़ हो जाए। बस अब देखिए ना कितना सुंदर मौसम हो रहा है कि पूरे में बारिश बारिश बारिश बारिश का मौसम ही दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, चाहे वो आप न्यूज़ में सुने या फिर अपनी आंखों से देखें। अब अगर ऐसे में आप अपने दोस्त से कहें कि भाई मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, यादों के पन्ने पलटते पलटते मुझे आपका चेहरा नज़र आने लगा है अपनी आंखों के सामने, और इस चेहरे को मैं चांद में सितारों में देख रही हूँ या देख रहा हूँ, और छत पर बस चांद सितारों में तुम्हारा ही चेहरा नज़र आ रहा है बस फिर क्या है, अब आपका दोस्त बस थोड़ा सा नाराज़ होगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा और फिर आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करेगा। तो चलिए सुनते रहिए रेनबो इंडिया, दिल से दिल तक एक और खूबसूरत सॉन्ग आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, जिनके मैसेजेस नहीं ले पाई हूँ तो आप जानते ही हैं, रंगे महफिल ठीक 11 बजे हम मिलेंगे रंगे महफिल प्रोग्राम में। एक मैसेज अमित अंचल का आया है, ससराम बिहार से गुड इवनिंग लिख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज है, दोस्त मैंने आपका मैसेज पढ़ा तो था लेकिन शायद आपने सुना नहीं, वो लिखते हैं आदाब अर्ज है मैम, प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, सलीम अख्तर रेशमा बेगम, और ये लिखते हैं अलीगढ़ से। तो चलिए फिर मुलाकात होगी ठीक 11 बजे, सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। इस खूबसूरत गाने के साथ छोड़ी जा रही हूँ आप सबको।

नमस्कार, फिलहाल वक्त हुआ है रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का, तो सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित किया। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। भारत और भूटान के बीच सीमा पार नदियों में सहयोग को लेकर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर एकीकृत समन्वय समूह बनाने का निर्देश दिया। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरल और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। तो ये थे रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचार। सुनते रहिए रेनबो इंडिया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जानती हूँ आप के मैसेजेस पहले ही आने लगे हैं एकदम स्मूथली, और वादा किया था आना तो था ही। तो एक बार फिर हाजिर है आपकी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम, जी हाँ, गजलों का प्रोग्राम रंगे महफिल। और रंगे महफिल में आप जानते ही हैं कि गीतों और गजलों का दौर बहुत बहुत अच्छा चलता है, और जब ये गीत और गजलों का दौर दिल को छूता है तो सच में कुछ कुछ तो आहट करता ही है। और ये आहट जब दिल को इस कद्र छूती है कि आप अपनी जुबान से कुछ कह ना पाएं, बस सोचते रहें क्या कहना है, क्या सुनना है, क्यों क्यों कहना है और क्यों सुनना है, तो समझ लीजिए कि आपको कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। और जब जब ये दिल जोरों से धड़कने लगे तो बस अपने दिल की धड़कनों को बहुत ही सुकून वाली जगह पर जाके सुने, यकीन मानिए बहुत बहुत बहुत सुकून मिलेगा और आपके दिल की धड़कनें आपको साफ साफ सुनाई देंगी। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी हाँ दोस्तों, अल्फाजों का हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत बहुत एक ये कहें कि अल्फाजों की बहुत बड़ी जगह है तो गलत नहीं होगा, और अल्फाजों का बहुत बड़ा महत्व है ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अल्फाज ही तो हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं या अलग करते हैं, या फिर एक दूसरे को दुश्मन या दोस्त बना देते हैं। अब देखिए ना, अपने अल्फाजों को अगर आप प्यार भरी चाशनी में डुबोकर किसी के सामने पेश करते हैं तो वो शख्स आपका हो जाता है, और अगर वही शब्द अपनी ईगो को लेकर या फिर अकड़ दिखाकर वही शब्द आप अकड़ कर बोलते हैं तो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। शब्द वही है, बोलने का तरीका, जी हाँ, बस वो थोड़ा सा अलग है। जो इंसान दिल की भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कला जानता है तो समझ लेना चाहिए कि वो शायर के साथ साथ एक अच्छा वक्ता भी है क्योंकि शायर होना और शायरी के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि भावनाओं को या किसी भी बात को दूसरे तक पहुंचाना ये भी अलग बात है, और शब्दों को चाशनी रूपी समंदर में डुबोकर किसी के सामने पेश करना ये अपनी ही एक अलग अदा है, अपनी ही एक अलग कला भी है। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे हैं तो वो भी अच्छी बात है वो अच्छी बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि मैं हूं ना समझाने के लिए। अगर कुछ समझ ना आए तो समझ सकते हैं, लेकिन एक शब्द, एक लाइन, एक गजल, एक गीत प्यार का, वो

कभी कभी कुछ शब्द, कुछ गीत, गजलें दिल को इस कद्र छू जाती हैं कि दिल ही नहीं करता कि इनको स्टॉप किया जाए, या फिर ये इस तरीके के गीत गजलें कभी ख़त्म हो। बस दिल तो यही चाहता है आराम से, सुकून से ऐसे ही गीत गजलें सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। लेकिन ऐसे कैसे कैसे हो सकता है दोस्तों? हाँ, कई लोगों की सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन कुछ लोगों की नहीं भी होती है, ऑफिस जाना होता है। तो इतना इतना सुकून भी किस बात का कि आप बस पूरी रात ऐसे ही खोए रहें? तो खोने की ज़रूरत नहीं है, लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। मेरे पास एक मैसेज आया है जर्मनी से, नमस्कार, प्लीज़ प्ले। उन्होंने भी एक सॉन्ग की फरमाइश कर दी है और ये लिखा है सौरभ ने। तो सौरभ, कोशिश कर सकती हूँ कि ये गज़ल सुनवाई जाए। वैसे ये फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन किंतु परंतु कोशिश की जा सकती है। राजकुमार के संताने अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग जी, आप कैसी हो? सुस्वागतम जी, सेकंड प्रोग्राम में एफएम रेनबो पर जी, कार्यक्रम गीत संगीत गज़ल में और आपकी बातों में भी मधुरता आएगी जी। अब हम मज़े से कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपकी बातचीत में सवाल और जवाब भी सुन रहे हैं। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आगे आपने कुछ छोड़ दिया है, लेकिन जो आप बाद में जी जी जी करते हैं ना, तो ये पढ़कर सुनकर अच्छा लगता है जी। और कह रहे हैं कि कार्यक्रम और बातचीत में आपकी चार चांद लग रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। एक और मैसेज ले लेते हैं, ये लिखा है शुभ संध्या निखिल। तो शुभ संध्या, शुभ रात्रि मैडम जी, राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़ खेड़ा से। तो देखिए दोस्तों, जब आप कोई भी वीडियो या कोई फ़ोटो भेजते हैं, हमें ये तो पता चलता है कि कोई फ़ोटो या वीडियो भेजिए, लेकिन हम उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ना ही ये पता लगा सकते हैं कि आपने हमें भेजा क्या है। इसलिए इतनी जहमत मत उठाइए कि कोई भी वीडियो या फ़ोटो भेजें आप, तो वो हम डाउनलोड या उसे खोल नहीं सकते हैं। तो मैसेज के जरिए बात कीजिए, थोड़ा सा कष्ट उठाइए, अपनी नरम मुलायम उंगलियों को थोड़ा तो कष्ट दीजिए। देखिए, ये भी एक्सरसाइज ही है। गुड इवनिंग रेखा जी, वेलकम। जयंत पटना से लिखते हैं, तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये कह रही थी कि तू साथ है तो हर गम आसान हो जाता है, तू साथ है तो हर गम आसान हो जाता है, तेरे बिन अब सब वीरान हो जाता है। तू तो लगता है जन्नत मेरी, तुझ बिन सावन भी पतझड़ समान हो जाता है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल और एक और खूबसूरत गजल आप सबकी नजर।

वेलकम बैक दोस्तों. मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं हमारे जो कह रहे हैं कि हमारा जो मैसेज है वो आपने शामिल नहीं किया आपने प्रोग्राम में. तो दोस्त ऐसी बात तो नहीं है, मैंने आपका जो मैसेज है मुझे अच्छी तरह से याद है, अपने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा था, आपको याद नहीं होगा. और एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं गुड इवनिंग रेखा जी, वेलकम बैक. जयंत लिखते हैं पटना से. एक और मैसेज शर्मा जी का, राजेश शर्मा जी लिखते हैं इतने दिनों तक गायब हो जाती हो, क्यों हो जाते हो? तो इसका जवाब दोस्तों यही है कि इतने दिन के लिए गायब मैं इसलिए हो जाती हूं, मैं ये सोचती हूं और ये देखना चाहती हूं कि जिस तरह से मैं आप सबको मिस करती हूं, आप लोग भी मुझे मिस करते हैं या नहीं, आपको मेरी याद आती है या नहीं. एक और मैसेज ले लेते हैं. आपका प्रोग्राम बहुत लाजवाब लगता है, कभी मेरा भी मैसेज पढ़ लिया कीजिए. सौरभ लिखते हैं महाराष्ट्र से. तो भाई लगता है सौरभ नाम के बहुत सारे लिसनर्स हो गए हमारे पास, है ना. चलिए अब आपकी नाराज़गी दूर हो ही गई होगी क्योंकि आपका मैसेज मैं ले चुकी हूँ. राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा से, उन्हें भी हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है. तो क्या कहूँ, यही कहूँगी कि जब भी आपका दिल करे तो मनपसंद गीत संगीत सुन लेना चाहिए. और अगर आप को किसी की याद सता रही है, आपको कोई या फिर परेशान कर रहा है या फिर आपकी तबीयत खराब है, सबसे सबसे इजी तरीका है, जी हाँ, म्यूजिक.

चाहे वो गीत हो गजल हो, बस शब्द ऐसे होने चाहिए कि आपके दिल पर खास दस्तक दें, और जब दस्तक दें तो आप ये भूल जाएं कि आप कितनी देर से म्यूजिक सुन रहे हैं, कितना वक्त गुजर गया और आप इस वक्त कहाँ हैं।

0: अजय, तो समझ में आता है कि एक एक शब्द में कितनी गहराई है। अब देखिए ना, कहा गया धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर निकलो। कितने प्यारे शब्द हैं, है ना? और हकीकत बात है कि हम जिंदगी की हर पढ़ाई किताबों से नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही सीख सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली जिंदगी में ना उतरें, और जब प्रैक्टिकली जिंदगी के सफर में आप अकेले उतरते हैं, तब आपको समझ में आता है, पता चलता है कि आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही जुड़े हुए थे। असली जिंदगी, असली सफर तो अब तय करना है। और ये सफर जब आप तय करने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर भी कुछ अधूरापन सा लगता है, तो समझ लीजिए कि आपका सफर, जी हाँ, आपकी मेहनत के अनुसार आसान हो रहा है। क्योंकि हर चीज़ मुकम्मल नहीं की जा सकती। इसी तरह से जिंदगी में आप किताबों से सीखिए, प्रैक्टिकली जिंदगी के सफर में कितना भी देखिए, सुनिए और अपनी जिंदगी को उन सब चीजों के साथ मिलाकर चलिए, कभी भी चीजें पूरी नहीं होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं, और शायद कुछ चीजें अधूरी होना अच्छी बात होती है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल, एफएम रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और एनसीआर में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर, और पूरे भारत में। जी हाँ, आप हमें सुन सकते हैं कभी भी, कहीं भी, और भारत के बाहर भी आप हमें सुन सकते हैं ऐप के जरिए, कभी भी, कहीं भी। तो चलिए फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे एफएम रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी के मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं आप सभी से। जी हां, जिस तरह से आप अपने दिल की बात अपने दिल में नहीं रखते हैं, आप जानते ही हैं कि मैं भी आप ही की दोस्त हूं, इसलिए अपने दिल की बात अपने दिल में नहीं रखती हूं। यूं तो अक्सर लोगों को कहते सुना होगा आपने, इश्क प्यार मोहब्बत में हारे हुए हैं हम, इसलिए दिल पत्थर का और जज्बात

भूर हो चुके हैं। और अगले ही पल जब खामोशियों के मेले में वो लोग दिल पर दस्तक देते, गीत गजलें सुनते हैं, तो आंखों से झरझर आंसू की धारा बहने लगती है। इसलिए किसी ने सच कहा है कि संगीत एक बहुत बहुत बड़ा जादू है, जो चीज़ें दवाई नहीं कर सकती वो काम कभी कभी संगीत पूरा कर देता है। और जब आप दिल पर देते दस्तक गीत या गजलें सुनते हैं, तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि आंसू सिर्फ और सिर्फ दुख के होते हैं, कभी कभी खुशियों से भी आंसू छलक जाते हैं। और इनको कुछ नाम देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें अल्फाजों के ज़रिए बयां नहीं की जा सकती, उनको सिर्फ सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, बस।

जी हाँ दोस्तों, कहा था ना मैंने कि अल्फाजों को आप किस तरह से दूसरे के सामने पेश कर रहे हैं या कह रहे हैं अपनी बात को, उसका बहुत बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अब देखिए ना, कभी कभी दिल की बात हम दूसरे को कहने जाते हैं, अपने ही अंदाज में कह देते हैं लेकिन इस बात को ध्यान में कभी रखते ही नहीं कि हमारा अंदाज कैसा है। क्या ये हमारा अंदाज या अल्फाज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे इंसान को पसंद आएंगे या नहीं? जी हाँ, कभी कभी बातों को बोलने से पहले तोलना भी पड़ता है। और जब हम दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा होगा या उसको क्या अच्छा लगता होगा या किस तरह से उसको हमारी बात समझ में आएगी, जब हम ये सब चीज़ें समझ जाएंगे, जान लेंगे, तब शायद आपकी दोस्ती, आपका प्यार बहुत बहुत बहुत आसान हो जाएगा आपको मिलना। और देखिए ना, अगर आप किसी के लिए कोई जज्बात रखते हैं तो उसको भी पता होना चाहिए कि आपके दिल में क्या है, तभी तो बात बनेगी, है ना? तो चलिए एक और मैसेज ले लेते हैं। आपका प्रोग्राम बहुत लाजवाब लगता है, मेरा भी मैसेज पढ़ लिया कीजिए। सौरभ महाराष्ट्र से लिखते हैं। देखिए ये तो बहुत गलत बात है भाई। देखिए मैं आपका मैसेज पढ़ चुकी हूँ, ऐसे ही एक और मेरे पास मैसेज आया था। आप क्या चाहते हैं कि आपकी दोस्त आप सबसे नाराज हो जाए? नहीं चाहेंगे ना। तो फिर लगता है जब मैं आपके मैसेजेस लेती हूँ आप कहीं पानी पीने चले जाते हैं या फिर कुछ खाना खाने के लिए। लेकिन किंतु परंतु आप एक बात समझ लीजिए कि मैं कभी भी किसी को नाराज नहीं करना चाहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सभी के मैसेजेस लिए जाएं, सभी के मैसेजेस ऑन एयर किए जाएं। इसीलिए तो कहती हूँ कि आप जब भी मैसेज करें तो कोशिश किया करिए कि कम शब्दों में आप मैसेज करें। अब कब आएंगी आप भाई, ये तो आपके लिए एक सरप्राइज होना चाहिए। और राजेश शर्मा जी पूछ रहे हैं, बहुत ये बात तो सही है, मैंने यही कोशिश करती हूँ कि आप सभी को थोड़ा सा गैप दिया जाए ताकि पता चले कि जितना मैं आप सबको मिस करती हूँ आप करते हैं या नहीं करते हैं। आपके मैसेजेस के ज़रिए सब जाहिर हो रहा है, सब जाहिर हो रहा है कि आप लोग भी मुझे बहुत मिस करते हैं। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग कह लीजिए या गज़ल बहुत ही प्यारा सा जहन में आ रहा है, तो चलिए आप सबको सुनवा देती हूँ, क्योंकि ये आवाज़ भी वही आवाज़ है जिसको अभी आप सुन रहे थे।

ओहो, कुछ चीज़ें होती हैं कि अधूरी रह ही जाती हैं, है ना। कोई बात नहीं। एक मैसेज है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है मैडम। महेश जानू मंडवा झुंझुनू राजस्थान से लिखते हैं। और एक और मेरे पास मैसेज है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है तो सॉरी, मैं आपका मैसेज नहीं लूंगी, लेकिन फिर मुलाकात ज़रूर होगी किसी ना किसी मोड़ पर, इसी वाले प्रोग्राम में या इससे पहले वाले प्रोग्राम

में जब भी मुलाकात होगी आप सबके लिए सरप्राइज होगा। और आप सबकी शिकायत रहती है कि हमेशा ये वाली गजल अधूरी रह जाती है, तो चलिए आज इसको पूरा कर लेते हैं, ये गजल आप सबके लिए। फिलहाल अपनी दोस्त रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और FM रेनबो इंडिया सुनते रहिए।

बहुत ही खूबसूरत शो के बाद अब हम आ चुके हैं कैलेंडर के अगले दिन, और इस वक्त घड़ी की सुइयां हमें 00:00 दिखा रही हैं और इस तरह इंगित ही कर रही हैं कि अब वक्त हो चला है अब तक के मुख्य समाचारों का। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बहते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार को 1 हफ्ते के भीतर एकीकृत समन्वय समूह बनाने का निर्देश भी दिया गया। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक कल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6, साथ ही साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। समय हो चुका है 12:02 और कुछ ही पलों में हाजिर होंगे हम कार्यक्रम जीरो और शो लेकर इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर मेरे यानी रजत के साथ, बस कुछ ही देर में।

0: प्रदेश के इस खूबसूरत गाने के साथ आगाज हम कर चुके हैं जीरो और शो का आज की तारीख में, आज 8 अगस्त सन 2026। और इस खूबसूरत बेला में, खूबसूरत बेला मैंने इसलिए कहा कि अगर चांद कहीं निकले हैं तो उन्हें झांकने का मौका नहीं दिया गया, बादलों ने ही नहीं बल्कि पूरी तरह से मानसून की जो परछाया है वो देखने को मिल रही है दिल्ली एनसीआर में, और झमाझम भी हो रहा है, कहीं छमछम भी है तो कहीं गरज बरस के साथ भी है। तो इस खूबसूरत बेला में, क्योंकि दिल्ली वालों को बहुत समय से एक इसी तरह की बारिश का इंतज़ार था, उमस की तपेश और कहीं गर्मी ने बीच बीच में, लू तो खैर बहुत दिन से नहीं देखी हमने, लेकिन शुरू में जब लू थी 7-8-10 दिन गर्मी की शुरुआत के दिनों में, उन दिनों लोग मान के चल रहे थे कि क्या ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन मानसून ने बता दिया कि भाई हम भी हैं और बड़े दमखम के साथ हैं। आज मतलब कल पूरा दिन बारिश हुई और अभी संभावना है कि आने वाले और 24 से 48 घंटे इस झमाझम के हो सकते हैं और होने जा रहे हैं। दिल्ली समेत तमाम एनसीआर और तमाम उत्तर भारत, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम भारत में भी इसकी छटा देखने को मिल रही है और काफ़ी जगहों पर तो यह है, कमोवेश पूरा देश इस वक्त मानसून की गोद में है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि हम इस बारिश का लुत्फ उठाएं और कहीं से भी जान या माल किसी प्रकार की क्षति ना हो, यह प्रार्थना करनी चाहिए। तो मानसून जिस सुखद एहसास के लिए लोग इंतज़ार करते हैं, जाना जाता है, वैसे ही यादें छोड़कर जाए और फिलहाल का जो है चौमासा है ये सुखद ही रहे सभी के लिए। हम बढ़ चले हैं अब इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीरो आवर शो, मेरे यानी रजत के साथ आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सभी का तहे दिल स्वागत इस प्रोग्राम में।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार, सुनिए

0: सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
6: ठीक है।
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।

अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, रात्रि के 1 बजे हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो से प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही की मांग दोहराई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकता है। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। राज्य सरकार को 1 हफ्ते के भीतर एकीकृत समन्वय समूह बनाने का निर्देश दिया। भारत और रूस के बीच आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर कार्य समूह की 12वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटोमी ओपन इंटरनेशनल वुशू टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। वहीं आदिनाथुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो में आपका स्वागत है। करते हैं कुछ मोहब्बत भरे गीतों की बात इन द प्रोग्राम सुहानी रात।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी।

0: सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

नमस्कार, रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के दौरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाएंगे। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य त्वरित

भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही की मांग दोहराई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। राज्य सरकार को एक हफ्ते के भीतर एकीकृत समन्वय समूह बनाने के निर्देश दिए। भारत और भूटान ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशू टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। वहीं आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: जिसका आपको इंतज़ार था वो तो घड़ी आ ही चुकी है, 2:09 के करीब हो चुके हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम भुलाए ना बनेगा आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एयर की हमारी ऐप पर भी, जिसके ज़रिए आप जुड़ सकते हैं हमारे हर प्रोग्राम के साथ और इस शो के साथ भी देश और दुनिया के अलग अलग कोनों और हिस्सों से। तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर चुके हैं भुलाए ना बने कार्यक्रम में, और आप जुड़े हमारे साथ और जुड़े रहिए, आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। और इंतज़ार मैंने इसलिए कहा क्योंकि गानों की छटाएं जो है एक कार्यक्रम से दूसरे शो तक आते आते थोड़ा रद्दोबदल वाली स्थिति में होती है, लेकिन उसमें हमें इंतज़ार रहता है कि जो यहाँ नहीं हुआ शायद वहाँ हो जाए। तो आपकी पसंद के गाने इससे पिछले शो में भी बड़ा खूबसूरत शो था, मैंने खुद सुना और इसमें भी आपको कुछ अलग देखने को सुनने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ, इस अपेक्षा के साथ आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2:00 रेनबो पर।

0: उम्मीद से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक

0: सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

नमस्कार, रात्रि के 3 बजे हैं। आकाशवाणी रेनबो से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन के दौरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाएंगे। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही की मांग दोहराई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त

बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आईआईटी जम्मू के में जम्मू कश्मीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एआई आधारित डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट फीनिक्स का शुभारंभ किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा कि सरकार कर्नाटक में कावेरी नदी के पानी के उचित हिस्से की अपनी मांग नहीं छोड़ेगी। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने जॉर्जिया में आयोजित बटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। आदि नातुंग ने कांस्य पदक हासिल किया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सुबह के 4 बज चुके हैं और समय हो चला है इस वक्त आपको देश और विदेश की जानकारी देने का, न्यूज़ हेडलाइंस के जरिए, समाचारों की सुर्खियों के जरिए। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली में 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यात्रा पर रहेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही की मांग दोहराई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी आंदोलन के बीच राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कल देर शाम पहली औपचारिक वार्ता हुई। मिजोरम में छात्र संगठन मिजो जिरलाई पॉल एम जेड पी ने मिजोरम लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। सोमवार को आयोग के कार्यालय के बाहर

धरना प्रस्तावित है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े 114 प्रकाशनों और प्रचार सामग्री पर रोक लगाई। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आपके अपने आकाशवाणी रेनबो चैनल पर। सुबह के 4:02 हो चुके हैं, अब से कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे हमारे दैनिक कार्यक्रम सारेगामा में मेरे यानी रजत के साथ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर

भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

सुप्रभात, आकाशवाणी रेनबो से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए आगे भी मुफ्त बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यात्रा पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी आंदोलन के बीच राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कल देर शाम पहली औपचारिक वार्ता हुई। बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग दोहराई और कहा कि जब तक लिखित में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के जहाजों की आवाजाही की मांग दोहराई है। यूटा राज्य में जंगल की आग बुझाने के अभियान में लगा अमरीका का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञा नंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।